0: வந்தே மாதரம்.
1: வந்தே மாதரம் சுஜலாம் சுஃபலாம் மலய ஜ சீதலாம்

ये आकाशवाणी है का अयोध्या केंद्र है। 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आज है शुक्रवार। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 5 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है इस मंगल धुन के साथ।

0: ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
2: The discussions also
3: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येविट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर

0: सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी समाचार। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 एफएम बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को।

वंदनवार से पहले चिंतन। आज का चिंतन है, जिंदगी का सबसे बेहतरीन उसूल है हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान कई परेशानियों की सबसे अच्छी दवा है। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 6:30 का समय हुआ है।

लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी झरोखा में। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:35 पर श्री रामचरित मानस का भाग 210 आप सुनेंगे। 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता के अंतर्गत सुनिएगा श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर। इस श्रृंखला का भाग 5 प्रसारित होगा। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनीस। ये कार्यक्रम आप पुनः शाम 6:45 पर भी सुन सकते हैं। सात बजे सुनिएगा भूले बिसरे गीत। हम हैं राही प्यार की ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर। 8:15 पर और पुनः दोपहर 2 बजे सुनिएगा वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनिस। इसका भाग 31 आज प्रसारित होगा। सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेत्री सोनम कपूर पर। इस कार्यक्रम को पुनः आप सुन पाएंगे रात पुनः 9:30 पर। पिटारा के अंतर्गत आज सुबह 10 बजे हेलो फरमाइश। ग्यारह बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग। 12:05 पर सजाई जाएगी यादों की महफिल। सुरीला सफर आप तय करेंगे दोपहर 1 बजे। 2:30 पर आनंद लीजिएगा सदाबहार नगमे कार्यक्रम का। दिन में 3 बजे सुनिएगा हेलो सहेली। पिटारा के अंतर्गत शाम 4 बजे आपको सुनवाई जाएगी गीतों भरी कहानी। कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का है। शाम 5 बजे सुनिएगा छाया गीत। 5:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। छह बजकर 35 पर शाम को वक्त होता है कार्यक्रम संध्या रंजन का। शाम 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जय माला। सात बजकर 45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा गजलों से सजा गुलदस्ता। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे हवा महल के अंतर्गत झलकी जरा सी आंख लग गई, लेखन और निर्देशन गिरिंद्र प्रसाद का है।

आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9 बजे। रात्रि 10 बजे सुनिएगा छाया गीत, आलेख एवं स्वर राजुल अशोक का है। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर और रात्रि 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थी आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आप सुन रहे थे झरोखा में।

भरत के साथ आए अयोध्यावासी मंदाकिनी तट पर ठहरे हुए हैं। माताओं, गुरु तथा मंत्री से आज्ञा लेकर भरत निषाद राज और शत्रुघ्न के साथ श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचते हैं। माता कैकेयी की करनी का ध्यान आते ही उनके मन में संकोच उत्पन्न होता है, किंतु श्री राम की सदाशयता और उदारता के प्रति वो उतने ही आश्वस्त हैं। आश्रम और प्रकृति की शोभा देख भरत के मन में वैसे ही आनंद का संचार होता है जैसे भूखे व्यक्ति को श्रेष्ठ भोजन प्राप्त करने पर होता है। रमणीय वन, सुहावनी पर्वत श्रृंखला, मुनियों के मनोरम निवास स्थान, वन प्रांतर के पशु पक्षी मन में एक सुखद साम्राज्य की कल्पना जगाते हैं। एक ऐसा परिवेश जहां केवल आनंद और मंगल की सृष्टि हो रही है। निषाद राज एक ऊंचे भूखंड पर चढ़कर भरत को श्री राम का आश्रम दिखाते हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे खास मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। आज सुनिए इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: रविंद्र जी, तबले के दौर की बात हो रही है तो तीन ताल की हमने पिछले कड़ियों में बात की। हाँ। तीन ताल के अलावा फिल्म संगीत में और कौन से ताल है जिनका उपयोग किया गया है?
2: जी, तीन ताल के अलावा शास्त्रीय संगीत के ख्याल गायन में जो ताल हम लोग संगत के लिए लेते हैं
1: जी,
2: उसमें भी एक है कि तीन ताल की जैसी खूबसूरती है तो वैसी ही खूबसूरती है रूपक ताल की। ये सात मात्रा का ताल है, ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना। तो ये रूपक ताल जो है इसकी विशेषता ये रही है कि रूपक ताल में कई सारे गीत फिल्मों में आए हैं और ज़्यादातर गीत जो रूपक ताल में बने हैं वो सारे के सारे गाने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। वो जो है सात मात्रा का चक्र जो है
1: जी,
2: वो इतनी खूबसूरती से आता है कि वो बड़ा लुभावना बन जाता है। तो ऐसे कई सारे गाने हैं रूपक ताल के
1: जी। और जहां तक मेरा ख्याल है ये एक ही ताल है जिसकी शुरुआत खाली से होती है।
2: हाँ, खाली से होती है, ती पर खाली है, ती ती ना धी ना धी ना
1: जी।
2: तो वो खाली से शुरू होने वाला ये,
1: और ये निरालापन ही इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है।
2: बिल्कुल,
1: और इसी वजह से वो सारे गीत जिसमें निबद्ध होते हैं रूपक में,
2: हाँ हाँ,
1: तो बड़े सुनने को
2: बहुत
1: प्रिय होते हैं। तो इस ताल में निबद्ध कौन सा गीत हम सुनने वाले हैं?
2: आपकी नजरों ने समझा।
1: क्या बात है, अनपढ़ फिल्म का बहुत ही सुंदर गाना है लता जी के स्वर में, मदन मोहन साहब की संगीत रचना।
2: जी
1: आइए सुनते हैं।

0: व्यापक ताल में निबद्ध ये गीत हम सुन रहे थे अनपढ़ फिल्म से। रविंद्र जी, रूपक के बाद अब किस ताल की चर्चा करेंगे?
1: रूपक से ही बहुत करीबी रिश्ता रखता है, जैसे

0: की 7 मात्रा है
1: जी जी,
0: तो उसकी दुगनी 14 मात्रा, 14 मात्रा का दीपचंदी ताल है। अभी ये जो है रूपक जो है वो ती ती ना धी ना धी ना ती, ये रूपक है। और दीपचंदी जो है वो धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा, तो ये जो है ये रूपक के साथ में ही दीपचंदी है, जो दीपचंदी 14 मात्रा का ताल है। तो दीपचंदी के भी कई सारी रचनाएं हुई है, और इसमें यह है कि ऐसा नहीं है कि रूपक का जो गीत है वो हम दीपचंदी में भी गा ले या दीपचंदी का जो गीत है वो हम रूपक में भी गा ले,
1: ऐसा नहीं होता।
0: ऐसा नहीं होता क्योंकि वो दोनों ताल की अपनी अपनी खूबसूरती है और अपना अपना उनका एक लहजा है, तो उसी लहजे में वो आता है। इसलिए दीपचंदी के गीतों का भी एक अपना सौंदर्य है, बहुत अच्छा लगता है।
1: मिसाल के तौर पे कौन सा गाना
0: दीपचंदी में? अजीर उठकर अब कहाँ जाइए,
1: आरजू फिल्म की बात आप कर रहे हैं?
0: जी जी
1: जी जी जी, बहुत ही सुंदर गीत है जो राग देश पर आधारित है। और दीपचंदी में निबद्ध इस गीत को पहले अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, फिर आगे।

0: श्रोताओं, शंकर जयकिशन का स्वरबद्ध किया हुआ गीत आप सुन रहे थे फिल्म आरजू से, लता मंगेशकर का स्वर। ऐसा ही एक और गीत है रविंद्र जी,
1: जी
0: कश्मीर की कली फिल्म से।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: ये भी ताल दीप चंदी में निबद्ध है।
1: हाँ,
0: इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: इशारों इशारों में दिल लेने वाले,
0: इसकी भी झलक सुनते चले
1: बिल्कुल।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये थी झलक कश्मीर की कली फिल्म के इस गीत की, जो ताल दीप चंदी में निबद्ध है और राग पहाड़ी पर आधारित है। संगीतकार ओपी नैयर। रविंद्र जी, रूपक 7 मात्रा का ताल है और दीप चंदी 14 मात्रा का।
1: हाँ।
0: फिर इन दोनों तालों का एक साथ प्रयोग किसी गीत में कभी हुआ है?
1: बिल्कुल हुआ है, और वो जो गीत है वो मेरे ख्याल से सभी का बड़ा प्रिय गीत है, वो पिया तो से नैना लागे रे। बहुत ही खूबसूरत गाना है और कई सारी विशेषताएं इसमें है। एसडी बर्मन साहब का मतलब बहुत ही अच्छा प्रयोग हम कह सकते हैं। ये इसमें जो है ना वो है तालवाद्य कचेरी।
0: जी,
1: तालवाद्य कचेरी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे तालवाद्य है और उन तालवाद्यों का सोलो परफॉर्मेंस। तो तालवाद्य कचेरी के तो अपने स्वतंत्र कार्यक्रम होते हैं, लेकिन उसको ये फिल्म गीतों में लाना एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है, और जो एसडी बर्मन साहब ने किया है। तो पिया तो से नैना लागे में ये जो गीत है तो इसमें वो तालवाद्य कचेरी अंत में बजती है, लेकिन ये जो गाना है इसमें रूपक भी है और उसके साथ साथ दीपचंदी भी है। तो दीपचंदी और रूपक दोनों को सुनने का मजा इसमें है, इस गाने में। मतलब जो उसका वजन एक बार रूपक का है एक बार दीपचंदी का है, दोनों बहुत ही अच्छा लगते हैं। और एक इसमें बहुत अच्छा प्रयोग है जो है कि तबले का उपयोग फिलर की तौर पर, मतलब इंटरलूड।
0: अच्छा।
1: जो गाने के बीच में जैसे वो शब्द आता है पिया तो से धगने धिन्ना धना ना ना ना ना, तो ये जो छोटा सा पीस है जिसको हम इंटरलूड कहते हैं, तो अक्सर वो किसी इंस्ट्रूमेंट पे बजाते हैं। ये इस गाने में वो तबले पे बजा है इंटरलूड, और वो बहुत ही खूबसूरत है।

0: दीपक ताल और दीपचंदी ताल का साथ साथ प्रयोग जिस गीत में किया गया, गाइड फिल्म का वही गाना आप सुन रहे थे श्रोताओं, लता जी के स्वर में, संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। आज हमने आपको सुनवाई इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार और आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ जिसे गाया है मुकेश ने। भरत व्यास के बोल हैं सतीश भाटिया का संगीत। फिल्म का नाम बूंद जो बन गई मोती।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती से इस वक्त कार्यक्रम भूलिए बिसरे गीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म पतंगा से शमशाद बेगम का गाया गीत। इस गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने, सी रामचंद्र का संगीत है।

अभी आपने शमशाद बेगम का गाया गीत सुना। अब आपको सुनवा रहे हैं तुलसीदास फिल्म से आशा भोसले और साथियों के स्वरों में जीएस नेपाली का लिखा गीत। धुन बनाई है चित्रगुप्त ने।

0: अभी आपने सुना आशा भोसले और साथियों के स्वरों में ये गीत, और आइए अब सुनते हैं ये संदेश, और संदेश के बाद लेते हैं एक अंतराल।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के आप न्यूज ऑन AIR पर प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही पलों में यानी कि 7:20 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिसका अनुप्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। 7:30 से होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश और 8 बजे से आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 8:15 से होगा कार्यक्रम सूर संगम और 8:30 से आप सुनेंगे विविध रंगों से भरा हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, जिसमें आज बातचीत का विषय होगा विश्व पर्यावरण दिवस। सुनेंगे प्रवक्ता वनस्पति विज्ञान विभाग साकेत महाविद्यालय अयोध्या के डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव। विषय होगा पर्यावरण के ज्वलंत मुद्दे और समाधान। साथ ही होगा प्यारा सा गीत और स्थानीय खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से इसी कार्यक्रम के अंतर्गत। 9:00 से होगा आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत और 9:30 से आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। 10:00 से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT और 10:30 से 11:55 तक आप जुड़े रहेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों के साथ। 11:55 से आप जुड़ जाएंगे आकाशवाणी अयोध्या से और आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल। 12:30 पर आप सुनेंगे अवधि लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग और 1:00 से होगा कुछ कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। दोपहर 2:00 से सुगम संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि होगा और 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार। 2:30 से होगा बहनों का कार्यक्रम अंगना और जिसमें बातचीत तो होगी विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। सुनेंगे आकाशवाणी के 90 साल पर आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत ग्राम मुमताज नगर की महिला श्रोताओं से उष्मा वर्मा की बातचीत। सुनेंगे पर्यावरण पर विशेष कवित्री अंकिता तिवारी का काव्य पाठ। जानेंगे सौंदर्य के अंतर्गत सनटैन से बचने के सुझाव के बारे में इसी कार्यक्रम के अंतर्गत। 3:00 से 5:00 तक आप जुड़े रहेंगे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों के साथ। शाम 5:00 से एक बार फिर आप जुड़ जाएंगे आकाशवाणी अयोध्या के कार्यक्रमों के साथ और होगा कार्यक्रम युवाणी, जिसमें चर्चा होगी विश्व पर्यावरण दिवस के साथ ही बात करेंगे अवैध अनाधिकृत और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। सुनिए कृष्ण कुमार त्रिपाठी की वार्ता। विषय होगा धरती का आवरण पर्यावरण। स्थान विशेष में जानेंगे जापान के टोक्यो शहर के बारे में। साथ ही सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पर युवा साथियों से शिवानी श्रीवास्तव की बातचीत। होगी शब्दावली, जानेंगे अग्निकांड से बचने की सावधानियां और साथ ही होंगे कुछ प्यारे से गीत इसी कार्यक्रम के अंतर्गत। 5:30 से आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत और 6:00 से होंगे समाचार पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में। 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी और 6:20 से होंगे संस्कृत समाचार। 6:30 से होगा कार्यक्रम गुंजे स्वर गांव के। किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत का समय होगा शाम 6:45 से, जिसमें चर्चा का विषय होगा विश्व पर्यावरण दिवस। सुनेंगे आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज से सेवानिवृत्त डॉक्टर राजकुमार की वार्ता। बढ़ते तापमान में जायद फसलों का प्रबंधन। सुनेंगे प्यारा सा लोग, जानेंगे बाजार भाव और लेंगे मौसम की जानकारी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत। शाम 7:20 से होंगे प्रादेशिक समाचार और 7:30 आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को। 8:15 पर आप जुड़ जाएंगे आकाशवाणी अयोध्या से होगा कार्यक्रम गीत गुंजन और 8:45 से आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9:00 से News@9 और 9:15 से होगा कार्यक्रम महफिल गजल। 9:30 पर आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या और 10:30 से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को। रात 11:00 होंगे समाचार पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में। ये तो थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसका अनुप्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।
1: उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएसी, एसडीआरएफ और यूपीएसएसएफ के साथ आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार और भावी कार्य योजनाओं सहित कई बिंदुओं को लेकर की समीक्षा बैठक। सुरक्षा बलों

0: सहित 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएसी, एसडीआरएफ और यूपीएसएसएफ के साथ आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार और भावी कार्य योजनाओं सहित कई बिंदुओं को लेकर की समीक्षा बैठक। सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक व्यावहारिक व तकनीक आधारित बनाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में करेंगे वायु युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली। अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की शुरुआत हो गई। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है।
1: बैठक में जो मेन मुद्दे है कि कहाँ पे जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज है वो कैसे सहयोग कर सकते हैं, जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जो हमारे आर्टिसंस हैं, आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उनको कैसे हम आपस में कोलैबोरेट करा के जो हमारे मेंबर कंट्रीज की अर्थव्यवस्था है उसमें उनका योगदान बढ़ा सकते हैं। तो नए चैलेंजेस हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है, उसको कैसे हम सबको मिलके उस पर काम करना है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्रांतीय आर्म्ड कांस्टेबुलरी पीएसी, एसडीआरएफ और उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ के आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार, प्रशिक्षण और संरचना विकास एवं भावी कार्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पीएसी, एसडीआरएफ और यूपीएसएसएफ को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार किया जाए और सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक व तकनीक आधारित बनाया जाए। श्री योगी ने महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से पीएसी की महिला बटालियनों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर स्थित महिला पीएसी बटालियन परिसरों में क्रमशः वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी, वीरांगना उदा देवी और वीरांगना झलकारी बाई की अश्वरोही प्रतिमा स्थापित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आगामी मानसून के दृष्टिगत बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही एसडीआरएफ को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से खोज एवं बचाव कार्यों के लिए ह्यूमन लिफ्टिंग ड्रोन की उपयोगिता पर विचार करने को कहा। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में पर्यटन विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की।
3: समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा और ज्ञान विरासत का प्रदेश है। बैठक में भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण से जुड़े ज्ञान भारतम मिशन की भी समीक्षा की गई। श्री योगी ने कहा कि भारत की प्राचीन पांडुलिपियां हमारी सभ्यता, दर्शन, विज्ञान और सांस्कृतिक चेतना की अमूल्य धरोहर है। पर्यटन नीति 2022 में प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को निवेश, नवाचार और अनुभव आधारित पर्यटन का अग्रणी केंद्र बनाया जाए। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में पौधारोपण कर प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश के 17 नगर निगमों, 825 विकास खंडों, 762 नगर निकायों समेत सभी ग्राम पंचायतों में यह अभियान पूरे दिन चलेगा। वन विभाग के साथ ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, उद्यान आदि विभागों के सहयोग से अमृत सरोवरों, तालाबों, सड़कों, एक्सप्रेसवे, नदियों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। इसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों की भी सहभागिता होगी। पौधरोपण अभियान के तहत लखनऊ मंडल में 62 लाख, वहीं बरेली और प्रयागराज में करीब 32 लाख पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गुरु

0: गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। दौरे के पहले दिन वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज लखनऊ में बायो युग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ करेंगे। यह पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है।
1: रक्षा मंत्री आज पूर्वाहन 11:05 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अपराहन 12:15 विश्व पर्यावरण दिवस पर कैंट स्थित कस्तूरबा पार्क में एक पेड़ मां के नाम रोपित करेंगे। अपराहन 12:40 पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के आवास पहुंचकर उनके पति के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। शाम को 4:00 दिलकुशा लॉन में आयोजित बायो युग ग्रीन कमांड कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रतिभाग करेंगे। 6 और 7 जून को भी श्री सिंह लखनऊ में विभिन्न लोगों से मुलाकात करेंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद करने के साथ प्रबुद्ध नागरिकों से भी मिलेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित तथा पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। इस प्रणाली के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय जिस उम्मीदवार की फोटो अपलोड की गई थी वही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा देने आया हो। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
2: 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिससे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें ऐसी छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PSC, SDRF और UPSSF के साथ आधुनिकीकरण, क्षमता विस्तार और भावी कार्ययोजनाओं सहित कई बिंदुओं को लेकर की समीक्षा बैठक। सुरक्षा बलों की प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक व्यवहारिक व तकनीक आधारित बनाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए शुरू की फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8:00 प्रसारित।

0: प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 एफएम बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश।
4: सखी सुनते हो कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास?
5: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुनते है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
4: हाँ जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
5: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
6: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
7: ये है आपकी अपनी आकाशवाणी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जन जन की सेवा में, शिक्षा और मनोरंजन के लिए, सनसनी नहीं तथ्य के लिए, लोकप्रियता और सत्य के लिए, प्रसारण के गौरवपूर्ण इतिहास के 90 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है आकाशवाणी। क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गड़ेया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
8: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
9: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
8: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
9: जी हाँ, और वो है योग।
8: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
9: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
8: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
9: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
8: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
9: योग करिए, निरोग रहिए।
10: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267989889।

0: यूनिक।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

कार्यक्रम अमृत कलश सुनने वाले सभी श्रोताओं को नेहा तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। आज की मंगलमय प्रभात समर्पित है माता रानी जगदम्बा जगत जननी आदिशक्ति के चरणों में। वो माँ जो सृष्टि की रचयिता है, वो माँ जो हर दुख हरने वाली है, वो माँ जिनकी कृपा से जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है, उन्हीं जगत जननी के चरणों में मेरा प्रणाम है और उन्हीं जगत जननी सभी का कल्याण करने वाली।

0: इतने छोटे से अंतराल के लिए कहीं मत जाइएगा, वापस आते हैं बस कुछ ही पलों में।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: संगीत की स्वर लहरियां गूंज रही हैं आपके घर आपके आंगन आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। तो लीजिए कार्यक्रम में अगली भक्ति रचना सुनिए नरेंद्र चंचल की आवाज में।

0: और इसी भजन के साथ कार्यक्रम अमृत कलश यही संपन्न होता है।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश, आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है, 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार प्रभात। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार आकाश।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड़ में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
2: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
2: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: होगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रा स्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
6: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाए।

0: व्यक्ति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिग्याहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
2: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा न हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।
4: अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
5: कार्यक्रम सुर संगम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नेहा तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

अदनान साहबी के गाये इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम सुर संगम यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है। आइए सुनते हैं विविध रंगों से भरा हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
2: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
1: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
2: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
1: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियावा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
3: आपके संदेश,
4: संदेश से आते हैं
3: आपके गीत। आपके संदेश, आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911।
5: बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की।
8: नहीं अछूता हो जिस
7: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात
9: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
10: अपने वाहन को भीड़भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
11: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
10: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
11: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
10: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, ये आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
11: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।

कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या सुनने वाले सभी श्रोताओं को नेहा तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। लोग कहते हैं खुद को साबित करो, पर सच ये है कि खुद को साबित करना नहीं, खुद को समझना सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि जिस दिन आप ये जान जाते हैं कि आप कौन हैं और क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं, उस दिन दुनिया की राय मायने रखना बंद कर देती है। हर कोई आपकी कहानी नहीं समझेगा क्योंकि वो आपकी जगह नहीं चला है। तो आज जो दूसरों की तालियों के लिए नहीं, अपने सुकून के लिए काम करना शुरू करिए। यकीन मानिए, जब इंसान खुद से जीत जाता है तो उसे किसी और से जीतने की जरूरत नहीं पड़ती। और शायद खुद को समझने का सबसे खूबसूरत तरीका यह भी है कि हम उस दुनिया को समझें जिसमें हम जी रहे हैं। वो हवा जो हमें जिंदा रखती है, वो पेड़ जो बिना कुछ कहे हमें जीवन देते हैं, वो प्रकृति जो हर दिन हमें सहारा देती है।

0: दोस्तों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो आइए सिर्फ सोचे नहीं बल्कि छोटा सा कदम भी उठाएं, क्योंकि जब हम प्रकृति का ख्याल रखते हैं तभी हम सच में अपने अस्तित्व का सम्मान करते हैं। और इसी खूबसूरत सी सोच के साथ कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या आरंभ करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। आज है विश्व पर्यावरण दिवस और आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हूँ, पर्यावरण। पर्यावरण केवल हमारे चारों ओर फैले पेड़ पौधे, नदियों, पर्वतों और वायु का नाम नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का आधार है। स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, उपजाऊ भूमि और जैव विविधता, ये सभी हमें प्रकृति का अमूल्य उपहार है। किंतु आधुनिक जीवन शैली, बढ़ता प्रदूषण, अंधाधुंध वृक्षों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन ने पर्यावरण के संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। आज हम जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जल संकट और प्रदूषण जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा, सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं हमें ये संकेत दे रही हैं कि यदि हमें समय रहते पर्यावरण की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आज का दिन हमें ये अवसर प्रदान करता है कि हम प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें और संकल्प लें। पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े प्रयासों के साथ साथ छोटे छोटे व्यक्तिगत कदम भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जैसे अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, जल और बिजली की बचत करना, स्वच्छता बनाए रखना तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना। याद रखिए, एक पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देता बल्कि वो जीवन, छाया, वर्षा और संतुलित पर्यावरण का आधार भी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति वर्ष में केवल एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करने का संकल्प ले ले तो धरती को फिर से हरा भरा बनाया जा सकता है। श्रोताओं, पर्यावरण की रक्षा केवल सरकारों या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हम सभी का कर्तव्य है। जब हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तभी प्रकृति भी हमारा संरक्षण करेगी। तो आइए इस पर्यावरण दिवस पर हम सभी मिलकर ये संकल्प लें कि अपनी धरती, अपने जल, अपनी हवा और अपने प्राकृतिक संसाधनों की हम रक्षा करेंगे तथा आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित पर्यावरण सौंपेंगे। संदेश बस इतना है कि पेड़ लगाएं, प्रकृति बचाएं, धरती को फिर से स्वर्ग बनाएं। और दोस्तों, आइए अब सुनते हैं ये वार्ता। विषय है पर्यावरण के ज्वलंत मुद्दे और समाधान। वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव।
1: पर्यावरण में हो रहे नित नए नकारात्मक बदलावों के प्रति आम जनमानस को सचेत करने के लिए, उनमें जागरूकता फैलाने के लिए सरकारों की पर्यावरणीय चिंताओं को शामिल करते हुए पर्यावरण संबंधी नीतियों के निर्माण, कार्ययोजना तैयार करने व उनके कार्यान्वयन के लिए स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सन 1972 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन से प्रतिवर्ष 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। वर्तमान में पर्यावरण के अनेक ज्वलंत मुद्दे हैं। इन मुद्दों में वातावरणीय प्रदूषण सबसे प्रमुख है। वातावरणीय प्रदूषण में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भू या मृदा प्रदूषण, विकिरण संबंधी प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण और ठोस अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान सम्मिलित है। वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण वाहनों और उद्योगों से हानिकारक गैसों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड का उत्सर्जन है। ये ऑक्साइड वातावरण में मौजूद वर्षा के जल से मिलकर अम्लीय वर्षा करने में सक्षम है। वायु प्रदूषण के अन्य कारणों में वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, सीसा, पारा, बेंजीन और डाइऑक्सिन है। ये सभी मनुष्य सहित अन्य जंतुओं में सांस और आंख व त्वचा में गंभीर संक्रमण पैदा कर सकते हैं

और कैंसर व दूसरी व्याधियां उत्पन्न कर सकते हैं। PM10 व PM2.5 हवा में मौजूद ऐसे कण हैं जिनका व्यास क्रमशः 10 व 2.5 माइक्रोमीटर होते हैं। ये द्वितीयक प्रदूषक होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कई प्राथमिक प्रदूषकों के साथ मिल जाने से बनते हैं। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु गुणवत्ता मानकों के अनुसार PM10 व PM2.5 की वातावरण में सुरक्षित व अनुमन्य सीमा क्रमशः 100 और 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर बतलाई है, जबकि भारत के ज्यादातर महानगरों जिनकी शहरी आबादी 10 लाख से ज्यादा है में इस सीमा से कहीं ज्यादा PM10 व PM2.5 का स्तर होता है। दिल्ली जैसे महानगरों में यह स्तर नवंबर दिसंबर में इतना भयावह हो जाता है कि सरकार को पर्यावरणीय आपातकाल तक घोषित कर देना पड़ता है। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस बंद हो जाते हैं। ऑक्सीजन के साथ पार्टिकुलेट मैटर विशेषकर PM2.5 मिले होने से फेफड़ों और पूरे रक्त प्रसंचरण तंत्र को गंभीर खतरा होता है। इसके अतिरिक्त ये आंखों में जलन और त्वचा को भी प्रभावित करते हैं। विश्व में विकसित राष्ट्र होने का एक मापदंड यह भी है कि देश में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितनी है। ऊर्जा सुरक्षा आज पूरे विश्व की चिंता है। ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ हैं। इनसे ऊर्जा प्राप्ति के दौरान अनिवार्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि कोई प्रदूषक नहीं है, परंतु ऊष्मा को धारण किए रखने की क्षमता के कारण इसकी बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी के तापमान को लगातार बढ़ा रही है। औद्योगिक क्रांति के पहले हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड 280 से 300 ppm तक थी, जो वर्तमान में 350 ppm की सुरक्षित सीमा को पार करके 412 ppm तक पहुंच गई है। कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से धरती का तापमान बढ़ रहा है। धरती के इस तरह से बढ़े हुए तापमान को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अमेरिका स्थित नासा के गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी के अनुसार सन 1880 से अब तक धरती का औसत तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और यह 1975 के बाद से और अधिक तेजी से बढ़ रहा है। सन 2050 तक विश्व के तापमान में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस और सन 2100 तक 2-4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि का अनुमान है। यदि हम पूरे धरती का सामान्य औसत तापमान 14 डिग्री सेल्सियस मान लें तो यह 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि भी बहुत ही खतरनाक है। धरती के औसत तापमान में 1 या 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि यह वृद्धि पृथ्वी पर सभी जगह एक समान होगी, बल्कि इसका यह तात्पर्य है कि धरती के कुछ भागों में 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है, जबकि कुछ अन्य भागों में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर भी सकता है। परंतु समूचा प्रभाव तापमान में वृद्धि वाला ही होगा। सामान्यतः समुद्रों की अपेक्षा स्थल के तापमान में अधिक वृद्धि देखी जाती है। स्थलों के इस प्रकार गर्म होने से पुनः वनों की सघनता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जबकि समुद्र की गर्मी में कमी या वृद्धि और इनके प्रारूप में गड़बड़ी होने से पृथ्वी पर चलने वाली पवनों में व्यापक बदलाव आ जाता है, जिससे वर्षा के पैटर्न और मौसम के पैटर्न में बदलाव हो सकता है। इन सबसे पृथ्वी पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि तूफान, चक्रवात और बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। मौसम के पैटर्न में बहुत व्यापक पैमाने पर बदलाव आने से जब पृथ्वी पर उपस्थित लगभग सभी वनस्पतियों और जंतुओं के कार्य व्यवहार और प्रजनन प्रवसन पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़े तो उस स्थिति को ही जलवायु परिवर्तन कहते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमारे स्वयं का अनुभव है कि जिन महीनों में वर्षा नहीं होनी चाहिए उन महीनों में वर्षा होती है, जबकि बारिश वाले महीने अपेक्षाकृत शुष्क रहने लगे हैं। पिछले कई वर्षों से उत्तर भारत के मैदानों में ग्रीष्म काल में लू नहीं चलती बल्कि उमस वाली तेज गर्मी पड़ने लगी है, जो इस क्षेत्र की विशेषता नहीं थी। पृथ्वी पर हरे पेड़ पौधे वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करके जंतुओं को बायोमास प्रदान करते हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन मुक्त करके वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। 1952 के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी भागों का 33% और पर्वतीय इलाकों का 60% भूभाग वनों से ढका हुआ होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए हमें इससे भी अधिक क्षेत्रफल पर वनों की आवश्यकता है। इसके बावजूद

हम पेड़ों को बड़े स्तर पर काट रहे हैं। पिछले कुछ समय से हमें देश के विभिन्न भागों जैसे मध्य प्रदेश के सिंगरौली, छत्तीसगढ़ के हसदेव और अंडमान द्वीप से बड़े स्तर पर जंगलों के काटे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। यह बात सच है कि जंगलों के कम होने से धरती का तापमान बढ़ रहा है और इसका विपरीत भी सच है, यानी धरती के तापमान में वृद्धि से जंगलों में कमी आ रही है। ये दोनों ही बातें अंतर संबंधित हैं तथा एक दूसरे को बढ़ा रही हैं। जंगलों के काटे जाने से भूजल स्तर में बड़े पैमाने पर कमी हो जाती है। शहरों में बहुत बड़ी मात्रा में मानवीय बसावट, जिससे बड़े पैमाने पर भूगर्भ जल के दोहन और वर्षा जल संचयन न होने के कारण वर्षा का जल वापस धरती में न जाने और व्यर्थ रूप से बह जाने के कारण भी भूजल स्तर में कमी हो जाती है। हाल के दिनों में बेंगलुरु और इंदौर जैसे आधुनिक शहरों में पानी की कमी की सूचना राष्ट्रीय समाचार पत्रों की सुर्खियों में रही है। पर्यावरण का अन्य ज्वलंत मुद्दा जल प्रदूषण, विशेषकर नदी जल प्रदूषण है। मनुष्यों ने पहले बड़े बड़े बांध बनाकर नदियों के प्रवाह को रोक लिया, फिर उद्योगों, सीवर और घर के गंदे पानी को बिना उपचारित किए नदियों में उड़ेल दिया। इससे जलीय जीव जंतु, वनस्पतियों और जैव विविधता पर बड़े स्तर पर खतरा बन गया है। नदियां जो पहले जीवन दायिनी मानी जाती थीं, अब गंदे नाले में परिवर्तित होकर रह गई हैं। यदि सिंचाई के लिए इनके पानी का प्रयोग किया जाता है तो उगाई गई ऐसी फल सब्जियों से मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ना अवश्यंभावी है। उद्योगों से निकले भारी धातु के मलबे नदियों और जल स्रोतों से मिल जाते हैं, जो बाद में सिंचाई में प्रयुक्त होने पर फल सब्जियों अनाजों के रास्ते मनुष्य के शरीर में पहुंचकर अनेक बीमारियां उत्पन्न करते हैं। आज पूरे विश्व की जनसंख्या 8 अरब को पार कर गई है। इतनी बड़ी जनसंख्या को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना एक चुनौती है। अब हम कृषि भूमि का उपयोग गैर कृषि कार्यों जैसे सड़क, राजमार्गों और भवन निर्माण में कर रहे हैं। अतः कम होती कृषि भूमि से अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने की चाहत में अधिकाधिक कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक डालकर भी हम मिट्टी और अपनी फसलों को प्रदूषित कर रहे हैं। ऊर्जा का सतत प्रवाह बनाए रखने में परमाणु ऊर्जा का बहुत महत्व है। यह ऊर्जा प्राप्ति का गैर पारंपरिक परंतु बहुत दक्ष स्रोत है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग भले ही बिजली के उत्पादन और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए किया जाता है, लेकिन इससे जुड़े खतरे अत्यंत गंभीर और दूरगामी हैं। परमाणु संयंत्रों में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम हजारों वर्षों तक रेडियोधर्मी और अत्यंत घातक बना रहता है। इस कचरे को सुरक्षित रूप से निपटाना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके रिसाव से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को पीढ़ियों तक नुकसान पहुंच सकता है। परमाणु संयंत्रों को ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। यह संयंत्र पास के जल स्रोतों से पानी खींचते हैं और गर्म पानी वापस छोड़ते हैं, जिससे जलीय जीवों और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान पहुंचता है। परमाणु संयंत्र में तकनीकी खराबी, मानवीय भूल या प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या सुनामी के कारण विस्फोट होता है तो इसके परिणाम बेहद भयावह होते हैं। सन 1986 में चेर्नोबिल और सन 2011 में फुकुशिमा जैसे त्रासदियों ने साबित किया है कि ऐसी दुर्घटनाओं में भारी मात्रा में विकिरण फैलता है, जिससे आसपास के क्षेत्र दशकों तक निर्जन हो जाते हैं और लोगों में कैंसर व आनुवंशिक बीमारियां होती हैं। मनुष्यों की कुछ गतिविधियों से धरती के ऊपर तकरीबन 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच उपस्थित ओजोन परत को भी क्षति हो रही है, जिससे जीवों पर हानिकारक पराबैंगनी किरणों का भी खतरा बढ़ा है। ठोस अपशिष्ट निपटान भी बहुत बड़ी समस्या का रूप ले चुका है। आजकल पैकिंग और दूसरी चीजों को रखने के लिए पॉलीथीन के प्रयोग ने जहां नालियों और जल प्रवाह को अवरुद्ध किया है, वहीं मिट्टी को भी प्रदूषित किया है। पॉलीथीन को सड़ने में 1000 से भी अधिक साल लगते हैं। शहरों में इधर उधर बेसहारा घूमते पशु जब इन्हें खा लेते हैं तो उन्हें भयंकर पीड़ा होती है। समुद्रों में प्लास्टिक कचरा समुद्री पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। प्लास्टिक कचरे की वजह से समुद्री जीव जंतुओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। एक अध्ययन के अनुसार हमारे देश में रोजाना 170,000 टन से भी अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसके 98% से अधिक मात्रा को इकट्ठा कर लिया जाता है। इकट्ठे किए गए कूड़े के 35% भाग का ही उपचार किया जाता है। 33% भाग लैंडफिल में फेंक दिया जाता है और शेष 1/3 भाग यूं ही खुले में रखकर वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। इससे वायु और भूमिगत जल प्रदूषित हो जाता है। कहा जाता है कि बढ़ते माइक्रो

0: प्लास्टिक के जमाने में एक आम इंसान अपने शरीर में एक एटीएम कार्ड के बराबर माइक्रो प्लास्टिक लेकर घूम रहा है। किसी क्षेत्र विशेष में जंतुओं और वनस्पतियों के कुल कितने प्रकार पाए जाते हैं, यह उस क्षेत्र की जैव विविधता कहलाती है। आज भी हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जंतुओं और वनस्पतियों को ठीक ठीक पहचान भी नहीं पाए हैं। उन्हें पहचाने जाने से पूर्व ही धरती पर से उनका अस्तित्व समाप्त हो जा रहा है। एक अध्ययन से पता चलता है कि पिछले 50 वर्षों में स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों, सरीसृपों और उभयचरों की 5,000 से अधिक प्रजातियों की औसत जनसंख्या में 73% की चिंताजनक गिरावट आई है। यह वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के गंभीर पतन को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। प्रदूषण जंतुओं के स्वाभाविक आवासों का विनाश, की स्टोन जातियों का विनाश, वनों की कटाई, मृदा प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन जैसे कारणों से विभिन्न पौधों और जंतुओं की संकटग्रस्त जातियों या तो विलुप्त हो गई हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पर हैं। जैव विविधता पर प्रभाव पूरी धरती के जनजीवन को प्रभावित करता है। विकास मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, परंतु ऐसा विकास जिससे मनुष्यता ही संकट में आ जाए तो विकास विनाश ही कहा जाएगा। इन्हीं सबको देखकर पर्यावरणविदों के बीच संवहनीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा ने जन्म लिया है। संवहनीय विकास इस तरह का विकास होता है जहां हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों को क्षति पहुंचाए बिना हम यह सुनिश्चित करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन मानव की आने वाली पीढ़ी को भी लगातार उपलब्ध रहे। महात्मा गांधी का कहना था कि प्रकृति मनुष्य की आवश्यकता को तो पूरी कर सकती है, किंतु उसके लालच को नहीं। इसी संबंध में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का विचार था कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में ही शहरों जैसी सुविधाएं दी जाएं, तो गांवों से लोगों का पलायन रुकेगा। इससे जहां एक तरफ गांवों के खेत खलिहान, बाग बगीचों की देखभाल हो सकेगी, तो दूसरी तरफ शहरों में आबादी का बोझ भी नहीं बढ़ेगा। नदियां और जल स्रोत प्रदूषित नहीं होंगे और हवा जहरीली नहीं होगी। इसके लिए गांवों को आत्मनिर्भर बनाना होगा, गांवों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना होगा, गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी की सुविधाएं शहरों जैसी करने से इन तमाम दुष्परिणामों से बचा जा सकेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण के ज्वलंत मुद्दे और समाधान। वार्ताकार थे डॉक्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव। और श्रोतो, अब समय हो चला है कि छोटे से अंतराल का वापस आते हैं बस खुशी पलों में।
2: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियावा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में। और आइए अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म रिफ्यूजी से।

0: और इसी प्यारे से गीत के साथ आइए एक नजर डालते हैं स्थानीय खबरों पर समाचार पत्रों के माध्यम से। जहां पड़े श्री राम के चरण वहां स्थापित होंगे स्तंभ, अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर भव्य समारोह के बीच 1 अक्टूबर को होगी पहले स्तंभ की स्थापना। चार भाषाओं में मिलेगी स्थलों की जानकारी, इन स्थलों पर स्थापित होगा स्तंभ। श्री राम स्तंभ की खासियत, ऊंचाई 15 फीट, चौड़ाई 2.5 फीट, वजन 12 टन, सूर्य धनुष व शिखर के चिन्ह, सैकड़ों साल तक नहीं जमेगी इकाई। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर आज से विशेष अभियान, पौधारोपण, स्वास्थ्य मेले, विकास प्रदर्शनी, कार्यशालाएं सहित होंगे विभिन्न आयोजन। और इन्हीं खबरों के साथ कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या यहीं संपन्न होता है।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: प्रणाम अयोध्या।
0: अभी आप सुन रहे थे विविध रंगों से भरा हमारा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आइए सुनते हैं आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम, आपके संदेश आपके गीत।

0: Hello.
1: Hello. No. Telephone number.
2: My number is
3: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
7: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
8: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
9: बिना सुन, बिना दर्द, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी।
8: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
9: फोन नंबर 9186877347।
10: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
11: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
12: स्वागत है आप सबका आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में, और आपके ढेर सारे संदेशों के साथ हाजिर हूँ मैं आपके दोस्त नेहा। तो आइए शुरू करते हैं आपके संदेशों को पढ़ने का सिलसिला जो कि आपने भेजा है आकाशवाणी के नंबर पर। पहला संदेश आया है हमारे पास पलारी छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोता है नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म साजन से कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम चल रहा है आपके संदेश आपके गीत, और अगला जो संदेश हमारे पास आया है वो ग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से आया है। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भगवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर, राज आर्यन, बेबी आरोही, ऐशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है कोई भी प्यारा सा फिल्मी गीत, तो आइए सुनते हैं फिल्म मरजावा से जुबिन नौटियाल के स्वर में ये प्यारा सा गीत।

0: नशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में, और आपके संदेश है मेरे हाथों में। और अगला जो संदेश है वो आया है हमारे पास ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंद शहर से। लिखने वाले हमारे श्रोता है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है कोई भी गीत किसी भी फिल्म से, तो आइए आपको सुनाते हैं फिल्म टाइगर जिंदा है से

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम चल रहा है आपके संदेश आपके गीत और आपके साथ है आपकी दोस्त नेहा। अगला जो संदेश है वो फाजिल का पंजाब से हमारे पास तक आया है। भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडली खेड़ा, शालिनी, टिवांशी, सभी ने मिलकर ये खत हमारे पास तक भेजा।

है और सुनना चाहा है अंकित तिवारी की आवाज में फिल्म विलन से ये प्यारा सा गीत। तो लीजिए आपके पसंद के गीत आपके रेडियो सेट पर।

कार्यक्रम चल रहा है, आपके संदेश आपके गीत, और कार्यक्रम में जो अगला संदेश आया है वो आया है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से का। सुना चाहा है यासिर देसाई की आवाज में ये प्यारा सा गीत।

और इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत यहीं संपन्न होता है, पर कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी कुछ ही पलों में हम लेकर हाजिर होंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आइए सुनते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
1: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
0: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
1: और साथ में अपना नाम, पता
0: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
1: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
2: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
2: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
1: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
3: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
4: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने?

0: और ले जाएं वहाँ से सामान।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं,
0: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
2: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
3: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
4: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
5: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
6: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
5: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
6: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
5: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006। आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियामा, फैजाबाद, अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट, नियामा, फैजाबाद, अयोध्या। फोन करें 9838100840।
7: नमस्कार, आदाब, सास स्नेह प्रणाम। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त नेहा और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अयोध्या का बेहद खास और दिलों को जोड़ने वाला कार्यक्रम हेलो अयोध्या, जहां बातें होती हैं दिल से और गीत बजते हैं आपकी पसंद के। तो तैयार हो जाइए अपने दिल की बात कहने के लिए, अपनों को याद करने के लिए और अपने पसंद के गीत सुनने के लिए। डायल करिए 7376 8040 90 और जुड़ जाइए कार्यक्रम से। और आज के इस खास कार्यक्रम में हमें तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहे हैं अश्वनी शुक्ला। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, तो उठाइए फोन और जुड़ जाइए हमसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह खूबसूरत सिलसिला और लेते हैं पहला कॉल। हेलो।
8: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं?
8: मेरा नाम अनु है, मैसिया से बोल रहे हैं, मैसिया नवादा, बस्ती से।
7: अच्छा, बस्ती से बोल रहे हैं अनु जी। तो अनु जी,
8: जी
7: सबसे पहले तो हमें बता दीजिए कि आज के इस प्यारे से कार्यक्रम में आप कौन सा प्यारा सा गीत सुनना चाहेंगे?
8: जी, अर्जुन पंडित का और गाना रहेगा हर कदम पे कांटे।
7: हर कदम पर कांटे। क्या करते हैं अनु जी?
8: जी हम ब्लाइंड है आंखों से, दिखता नहीं क्योंकि एक्सीडेंट हो गया तो उसे दिख नहीं रहा।
7: अच्छा, एक्सीडेंट हो गया था आपका
8: कोरोना काल में।
7: अच्छा, तो इससे इसके अलावा और आप घर पे रहते हैं तो क्या क्या करते हैं? आकाशवाणी सुनते हैं, आकाशवाणी अयोध्या सुनते हैं और क्या क्या चीजें करते हैं?
8: हम तो ये FM सुनते रहते हैं।
7: अच्छा, FM सुनते रहते हैं
8: जी।
7: कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं?
8: जी हम सारे सुनते हैं, टाइम मिलता है, नहीं तो फिर इधर उधर चले गए तो फिर नहीं सुनते हैं।
7: अच्छा, सारे कार्यक्रम सुनते हैं। कौन सा कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है?
8: जी हम तो गाने सुनते रहते हैं, हेलो फरमाइश ज्यादा अच्छा लगता है।
7: अच्छा, हेलो फरमाइश आपको ज्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए कितना अच्छा दिन है कि आज आपकी कॉल भी लग गई है, बात भी हो गई है और अभी मैं आपको आपकी पसंद का गीत भी सुनाने जा रही हूँ।
8: जी
7: अच्छा लग रहा है ना?
8: जी बढ़िया है, मैं तो कई बार लगाया हूँ।
7: चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप कॉल लगाते हैं और मिल भी जाता है कॉल, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं की ये भी शिकायत होती है कि हम कॉल लगाते रहते हैं और कॉल मिलती नहीं है।
8: नहीं मिलता है क्योंकि हमने 1.5 महीने बाद लगाई कॉल।
7: जी जी अनु जी, तो ठीक है, आपने कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए सुनिए अपनी पसंद का गीत, कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो अयोध्या, जहां हर आवाज एक एहसास बन जाती है। 73-76-80-40-90 ये वो नंबर है जिसे डायल करके आप भी जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम से, क्योंकि रिश्ते दूरियों से नहीं एहसासों से जुड़े होते हैं। अगर आप भी किसी अपने को याद करना चाहते हैं या बस दिल की बात कहना चाहते हैं तो कॉल करिए हमें 73-76-80-40-90 पर, और हमारे कोई श्रोता हमसे जुड़ भी चुके हैं। हेलो हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। आपका नाम अभी तक हमें क्लियर नहीं हो पाया है। चांदनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कैसी हैं? चांदनी जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए, और बहुत कट कट के आपकी आवाज आ रही है। चांदनी जी, आपसे हमारी बात बिल्कुल सुचारू रूप से नहीं हो पा रही, आप नेटवर्क में आ जाइए फिर आप बात करिए, क्योंकि आपकी आवाज कट आ रही है। हाँ, आप सुनाई दे रहा है।
1: हम कह रहे हैं आज आपने मतलब जानकारी दी पर्यावरण दिवस पर, वो बहुत अच्छी लगी।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा तो कार्यक्रम सफल हो गया, आपको पसंद आया। कौन सा गीत सुनना चाहेंगी चांदी जी?
1: जो भी प्रोग्राम लेकर आती है वो बहुत अच्छा लगता है सुनने, आज की बात भी लेकर आती है वो भी अच्छा लगता है
0: जी। एक्चुअली पूरी आकाशवाणी अयोध्या टीम का ये मोटो होता है, ये उनका प्रयास होता है कि हमारे जो भी कार्यक्रम है वो हमारे श्रोताओं को जरूर पसंद आए, और हर अनाउंसर यही कोशिश करता है अपनी तरफ से 100% देने की। जी चांदनी जी, तो कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में आप सुनना चाहेंगे?
1: आज मैं मतलब अनाड़ी मूवी का गाना सुनना चाहेंगे, क्या मौसम आएगा।
0: अनाड़ी मूवी का? तो नाश्ता कर चुकी है? हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी चांदनी जी, नाश्ता हो गया है आपका? लगता है चांदनी जी से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। ठीक है, आप चांदनी जी कार्यक्रम सुन रही हैं, तो आपकी पसंद का गीत जो है वो हमने क्यों कर लिया है, आइए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये।

0: कार्यक्रम चल रहा है हेलो अयोध्या और 7376 40 90 इस नंबर को डायल करके आप भी जुड़ सकते हैं कार्यक्रम से और बन सकते हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा। दोस्तों, बातें छोटी हो या बड़ी, दिल से कही जाएं तो असर जरूर छोड़ती हैं। कुछ लोग जिंदगी में आवाज नहीं सुकून बरकर आते हैं, तो आप भी जुड़िए हमसे और अपने उन खास इंसान के बारे में जो भी आपका मैसेज हो आप ये कह सकते हैं कि आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं और हमसे हमारे कोई श्रोता जुड़ भी चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, फोन लग चुका है आपका। हेलो, लगता है हमारे श्रोता तक हमारी आवाज जो है वो नहीं जा पा रही है, तो प्रयास करते रहिए। हेलो।
1: हाँ मैडम, नमस्ते।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं अर्जुन कुमार सोनकर, मोहल्ला छोटा रमना, त्योकारी रोड, अयोध्या। मैडम आज 10 दिन बाद कॉल लगी मेरी।
0: चलिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि 10 दिन के बाद आपकी कॉल लगी है।
1: हाँ जी मैडम, 10 दिन बाद, पूरे 10 दिन बाद लगी कॉल।
0: जी तो अर्जुन जी, क्या करते हैं आप?
1: जी मेरी वही दुकान है मैडम, बताए हम आपको।
0: अच्छा अच्छा, दुकान है आपकी।
1: दुकान पे बैठे हैं, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ मैडम।
0: चलिए, यानी कि आपका काम भी हो जाता है और आप आकाशवाणी अयोध्या को समय भी दे लेते हैं।
1: अरे रेडियो बहुत बड़ा सहारा है मैडम हमारा।
0: चलिए, कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे?
1: पिक्चर है मैडम इंग्लिश बाबू देश की मेन, उसमें एक गीत है कैसे मुखड़े से नजरे हटाऊं।
0: कैसे मुखड़े से नजरे हटाऊं?
1: नजरे हटाऊं,
0: तो ये गाना आपको बहुत पसंद है?
1: जी मैडम, बहुत अच्छा गाना है, बहुत पॉपुलर है।
0: तो अभी इस टाइम पे नाश्ता वाश्ता करके आप,
1: मेरी पत्नी भी कह रही थी अगर काल लगेगी तो बताना कि यही गाना मुझे सुनना है, देवी सुनकर।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, आपकी और आपकी पत्नी दोनों की पसंद का गीत जो है वो हमने क्यों कर लिया है और आपने कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का प्यारा सा गीत।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, धन्यवाद।

0: और कार्यक्रम चल रहा है हेलो अयोध्या 73-76-80-40-90 ये है आकाशवाणी का नंबर जिसे आप डायल करिए और जुड़ जाइए इस कार्यक्रम से। कभी कभी एक छोटी सी बातचीत भी किसी के पूरे दिन को खूबसूरत बना देती है और उसी तरीके से बन जाएगा हमारा भी दिन खूबसूरत अगर आपकी कॉल यहाँ तक आती है। और हमारे कोई श्रोता जुड़ चुके हैं हमसे। हेलो हेलो हेलो, कॉल लग चुकी है आपकी। हेलो क्या नाम है आपका? हेलो, किसी नन्हे मेहमान ने हमें कॉल लगाई है। जी हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। जी क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है आपका?
1: रामकरण बोल रहा हूँ, रायपति से।
0: जी जी रामकरण जी, तो बताइए आज के कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज मुझे सुनना है फिल्म खेल, फिल्म का नाम है खेल
0: खेल
1: खेल खेल का टाइटल सॉन्ग अनिल कपूर की है।
0: अच्छा, खेल का टाइटल सॉन्ग आपको सुनना है?
1: जी जी।
0: क्या करते हैं रामकरण जी?
1: मैं तो फिलहाल अभी घर में हूँ, सूरत में मॉडलिंग का काम करता हूँ, उधर ही आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। अभी तो घर में हूँ, रेडियो पे मेरा, मैं यहाँ पे मतलब मेरे रेडियो चलता रहता है आपका प्रोग्राम।
0: जी कौन सा कार्यक्रम आपको सबसे अच्छा लगता है आकाशवाणी अयोध्या का?
1: गाँव में तो फिलहाल उतना नहीं सुन पाता हूँ, सूरत में मैं रहता हूँ तो उधर तो बिजी रहेंगे, सब सुनता रहता हूँ प्रोग्राम आपका।
0: जी
1: दो तीन प्रोग्राम मुझे थोड़ा ज्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे आपका ये 9:30 वाला प्रोग्राम है और 9 बजे जो आता है।
0: जी हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे श्रोताओं को हमारे कार्यक्रम अच्छे लगे और आप इतनी दूर रहकर भी आकाशवाणी अयोध्या से जुड़े हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बड़ा अच्छा लगता होगा ना कि बाहर प्रदेश में भी अपने जो शहर की आवाज है, अपने शहर की खुशबू है, वो मिलती रहती है।
1: जी जी, यो मैं मलेशिया में पिछले 4 साल पहले रहता था।
0: हाँ,
1: तो आज अभी मैंने एक बार दो बार मैसेज किया था, जो व्हाट्सएप पे जो मैसेज हुआ था नहीं, व्हाट्सएप
0: जी, जी, जी आपके संदेश गाने,
1: उस पे भी मैंने मैसेज किया था एक दो बार।
0: हाँ, हाँ, तो शामिल हुए थे आपके मैसेज?
1: जी जी शामिल हुआ था।
0: अच्छा, तो ठीक है, आपके पसंदीदा गाने को मैंने क्यों कर लिया है, और चलिए आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं। कार्यक्रम में कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके थैंक यू।

0: कार्यक्रम चल रहा है हेलो अयोध्या, जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद है। और अगर कार्यक्रम आपको पसंद है तो मिलाइए नंबर 7376-8040-90 और जुड़ जाइए इस प्यारे से कार्यक्रम के साथ। और हमारे कोई श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैम नमस्ते, मैं राकेश बोल रहा हूँ, सरयाव चौराहा राजगीर रोड जिला अयोध्या से।
0: जी राकेश जी, आज सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आज के इस खास कार्यक्रम में आप कौन सा खास गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैम कुछ सिर्फ तुम फिल्म का गाना सुनना है, वो पंछी सुर में गाते हैं उदित नारायण की आवाज में।
0: अच्छा, उदित नारायण की आवाज में पंछी सुर में गाते हैं, क्या करते हैं आप?
1: मैम हम तो मिलिट्री छावनी में काम करते हैं।
0: अच्छा, मिलिट्री छावनी में काम करते हैं, क्या काम करते हैं?
1: मैम यही लेबर गिरी वाला काम।
0: अच्छा, तो अभी आप कहाँ पर हैं, ऑफिस में हैं कि घर पे हैं? मतलब आप?
1: नहीं अभी तो मैम हम काम कर रहे हैं ऊपर, कम से कम 20 फुट ऊपर चद्दर पे बैठे हुए हैं।
0: ओहो, और आकाशवाणी अयोध्या भी साथ ही साथ सुन रहे हैं और आपकी कॉल भी लग गई है।
1: हम बहुत देर ट्राई कर रहे थे पर लग नहीं रहा था, मैंने कहा लगाओ फिर से लगाते हैं, लास्ट कॉल हो सकती है हमारी।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी पसंद का गीत।
1: मैम एक चीज और मैं कहना चाहूंगा
0: जी,
1: कि जो पहले हमारे आकाशवाणी अयोध्या से मन भावन का प्रोग्राम चलता था
0: जी,
1: लेटर वाला, तो हम चाहते हैं जैसे मैम किसी लोग की कॉल नहीं लग पाती है तो जैसे लेटर वाला भी अगर प्रोग्राम शुरू हो जाए तो ज्यादा बेटर होगा।
0: आप हमें अपने संदेश भेजिए, हम उसे लेटर्स में भी शामिल करेंगे। आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम के लिए आप लेटर्स भी लिख सकते हैं, आप लेटर भेजिए और हम आपके संदेशों को अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और आप अपनी ये जो इच्छा है वो आप कार्यक्रम आपकी बात में भी लिखकर भेज सकते हैं, हमारे जो अधिकारी हैं वो इस पर जरूर ध्यान देंगे।
1: ओके मैम
0: जी, तो राजेश जी आइए आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत सुनते हैं। कार्यक्रम में आपने कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: कार्यक्रम चल रहा है हेलो अयोध्या और हमारे कोई श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, क्या नाम है और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैम अयोध्या से बोल रही हूँ।
0: नाम आपका?
1: मंजरी मिश्रा।
0: जी मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। सबसे पहले तो बता दीजिए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज के कार्यक्रम में?
1: जी?
0: कौन सा गीत आज के कार्यक्रम में आप सुनना चाह रही हैं?
1: मैम मुझे आरजू के गाने सुनवाइए।
0: आरजू फिल्म के?
1: फूलों की रानी बहारों की मलिका।
0: तेरा मुस्कुराना गजब हो गया।
1: जी
0: तो बहुत पसंद है आपको ये गाना?
1: मैम बहुत पसंद है।
0: क्या करती हैं आप मंजरी जी?
1: मैम मैं कुछ नहीं करती हूँ।
0: कुछ नहीं करती हैं? ऐसे कैसे कुछ नहीं करती हैं, कुछ ना कुछ तो करती होंगी।
1: हाँ मैम घर की जिम्मेदारियाँ हैं।
0: तो बताइए सबसे बड़ा काम तो आप कर रही हैं, पूरा घर आपने संभाल के रखा है और कह रही हैं आप कुछ नहीं करती हैं। मंजरी जी लीजिए आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत मैंने निकाल लिया है और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर ये गीत। आपने कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: थैंक

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। FM बैंड 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। बच्चे सुने NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबनंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार।

0: अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
1: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
1: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
0: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
1: ऊपरकोट मोहल्ला चकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
0: और डोंडी दोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
1: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
1: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
0: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेत ही हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
1: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शैडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
0: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
1: जी,
0: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
1: जी,
0: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
1: जी,
0: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
1: श्रोताओं, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
0: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाश गंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
1: क्या बात है!
0: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
1: क्या बात है! श्रोताओं, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
0: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
1: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
0: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता है। यहाँ आज भी लोग पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं।
1: जी,
0: इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
1: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है। यहाँ के

0: डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
1: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है। नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: खास ऐलान।
3: शांत शांत, आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
4: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए।
3: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर।
4: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
3: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
5: जी महाराज, पूछिए। क्या प्रश्न है आपका?
3: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
6: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।

0: मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
1: महाराज ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
0: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
1: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।
0: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
1: धन्यवाद महाराज। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
2: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
3: हो सकता है?
2: सबको नकली मिला, तुम भी नकली,
0: ये लो आपका इनाम, हीरा।
1: धन्यवाद महाराज। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
2: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
0: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
1: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ लें महाराज।
0: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
1: धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरो की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली है महाराज।
0: क्या? और कोई शंका?
1: जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
0: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
4: महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय!
0: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली ही।

0: कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
2: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलारू मैं चल चलू।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्ता पूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है।

तमिलनाडु का ये प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों

दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं, उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे CIET और NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM बैंड 101.9 MHz और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आइए आपको लिए चलते हैं अपने मुंबई केंद्र, जहां आपसे लेकर 11:55 तक आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: अच्छा बताइए कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: अनिल नाइक बोडोली मुंबई से बात कर रहा हूँ।
0: जी बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ।
0: क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: पैसा धन में गाना सुनना चाहते। पैसा
0: गाने के बोल बताइए। क्या बात है, साहिर लुधियानवी के बोल, शानदार गाना, एस डी बर्मन का संगीत। जी कुछ कहना चाहते हैं इस गाने के बारे में?
1: बहुत बढ़िया गाना है
0: जी।
1: कितना भी सुने तो मन भरता नहीं है।
0: बिल्कुल, कितना भी सुने इस गाने को मन नहीं भरता।
1: और मोहम्मद रफी की आवाज में तो क्या दर्द था
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने की फरमाइश के लिए। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: जी सर, मैं दुल गोविंद मिश्रा उड़ीसा से, डिस्ट्रिक्ट झारसुगड़ा। हमारा गांव का नाम सुल्हाई है।
1: अच्छा, बताइए कैसे हैं आप?
0: जी सर, बहुत बढ़िया है। एक साल के बाद आपसे बात हो रहा है। मैंने दिल्ली हर सोमवार को हम फोन लगाता है, लेकिन आपका नंबर नहीं लगता है सर।
1: जी
0: बताता है,
1: देश भर के श्रोता फोन कर रहे होते हैं तो इस वजह से मुश्किल होती है फोन लगने में।
0: आप बोलते हैं कि महीना में एक बार लगाने के लिए, मैं तो हर सोमवार को लगाता हूँ, लेकिन मेरा नंबर एक साल हो गया, कभी नहीं लगा सर।
1: तो आज लगा ही, ये बहुत खुशी की बात है।
0: बहुत खुशी बात है, मेरे को बहुत खुश लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा था कि उड़ीसा का नंबर नहीं लगता है, क्या सोच रहा था मैं?
1: नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देश के कोने कोने से लोगों के फोन आते हैं और सबके नंबर बारी बारी से लगते हैं। इतने लोग लगा रहे होते हैं कि फोन लाइन की भी अपनी सीमाएं हैं।
0: जी
1: बताइए, क्या हालचाल है आपके इलाके के, उड़ीसा के?
0: जी हालचाल तो सिर्फ गर्मी के लिए तो बहुत, हर आदमी परेशान है, बहुत गर्मी हो रहा है। ये तीन दिन से थोड़ा सा मैंने बारिश हो रहा था, थोड़ा सा राहत मिला है।
1: जी जी, बारिश होने से वाकई राहत मिल गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से बारिश की खबरें हमें मिल रही हैं।
0: जी जी,
1: कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं विविध भारती के आपको?
0: जी हमको तो ज्यादा हेलो फरमाइश, और जो आप जो सुनाते हैं, जो मैंने संदेश टू सोल्जर, वो वाला फनकार जो सुनाते हैं वो वाला, और अभी जो नया एक्ट जो शुरुआत किए हैं, एक बजे जो सुनता हूँ वो अच्छा लगता है।
1: अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया इन कार्यक्रमों को पसंद करने के लिए। बताइए कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
0: जी दोस्ती फिल्म का राही मनवा, दुख क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।
1: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना है, सुनते हैं ये गाना।
2: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना कोई।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश यूनिस साहब, कैसे हैं आप?
0: जी मैं अच्छा हूँ।
1: मैं तो आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि पूछे में नहीं आप, तो मैं कितने आपके इंटरव्यू सुने, कितने आपके शब्दों में बोले तो मजा आ गया, क्या बात है।
0: मजा आ गया, क्या बात है। कौन बोल रही हैं आप?
1: मैं आशा बोल रही हूँ बेंगलुरु से, और मैं आपकी बड़ी फैन हूँ, आपके बड़े मतलब सारे प्रोग्राम मैं सुनती हूँ, और मैं 3 हफ्ते 5 हफ्ते से ट्राई कर रही हूँ आपका, जब सुनती हूँ लोग बात कर रहे बड़ी जलन होती थी।
0: अरे बाप रे,
1: मैं भी बात कर रही हूँ। ये
0: क्या बात है, देखिए कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना।
1: पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि आपके पुराने प्रोग्राम में आपने एक राइटर से बात की थी, तब वो राइटर ने आपसे कहा था, आपसे या किसी और से, यूनिस खान से बात करने से ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अपने देवर से बात।
0: ओहो क्या बात है।
1: वो राइटर ने ऐसे बोला था कि मेरे मतलब जहन में है, वैसे ही मैं आप भी मेरे जहन में हो
0: जी।
1: आप लोगों से तो मेरा ऐसा रिश्ता है कि पूछो मत, सारा दिन मैं सुनती रहती हूँ, सारे प्रोग्राम सुनती रहती हूँ, लोग मेरे से तंग आ गए कितना बजाओगी करके।
0: अच्छा विविध भारती का साथ इसी तरह से बना रहे हैं आपके साथ है ना?
1: मैं बस जिंदगी भर अंत तक सुनती रहूं, उनका यही लक्ष्य है बस।
0: क्या बात है जी। तो बताइए कौन कौन से कार्यक्रमों का जिक्र करना चाहेंगी जो आपके दिल के करीब रहे हैं?
1: सभी कार्यक्रम, ज्यादातर पिटारा के सारे प्रोग्राम
0: जी,
1: वो बहुत अच्छे रहते हैं
0: जी,
1: और हेलो फरमाइश, हेलो सहेली, और सब आप अभी तो एकदम से मैं एक्साइट हो गई हूँ, प्रोग्राम के नाम ही याद नहीं रहे आपसे बात करते हैं।
0: जी, जी, जी।
1: सबसे ज्यादा तो आज के फनकार मैं सुबह जरूर सुनती हूँ
0: जी,
1: सुबह 8 बजे से लेके मेरा विविध भारती शुरू हो जाता है न्यूज से लेके, और जब तक हो सके तब, और रात को भी जब भी टाइम मिले तब।
0: अच्छा क्या बात है, क्या बात है। तो आज कौन सा गाना चुन रखा है आपने?
1: मैंने राम तेरी गंगा मैली का, सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, तुम्हारे पथ पर जो भी आए, उन्होंने ऐसे नियम बनाए के प्राण जाए पर वचन न जाए।
0: क्या बात है भाई, इतने सारे बोल भी याद है आपको?
1: अरे अरे मेरे को तो कुछ कुछ गानों के पूरे पूरे बोले आते, पूरा गाना सुना सकती हूँ।
0: वाह वाह वाह, ये जानकर बहुत अच्छा लगा, मतलब वो जो आप कहती है ना कि मैं हमेशा कहता हूँ, क्या बात है,
1: क्या बात है। थैंक यू
0: जी, शुक्रिया।
1: बचपन से आप बिलीव नहीं करो, आई एम 57 नाउ, और मैं कम से कम 5-6 साल से विविध भारती सुन रही हूँ।
0: ये लंबा सफर थे कि आपने विविध भारती सुनते हुए,
1: बस सब सब आप लोग पुराने गाने सब, मतलब जो चीजें कहीं नहीं बचती वो विविध भारती पे बस।
0: क्या बात है जी, शुक्रिया, ये जान के बहुत अच्छा लगा।
1: मैं आपसे बात करके गदगद हो गई हूँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया मेरा आपके बात। थैंक यू
0: शुक्रिया। हम ये दुआ करेंगे कि आगे भी आपका फोन लगे और बातें हों। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर बातों का सिलसिला यहीं करते हैं खत्म, और आपको सुनवाते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ भैया जी, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार
1: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी जी बताइए।
1: एकदम बढ़िया है भैया।
0: क्या करते हैं आप?
1: हमारा मूल काम खेतीबाड़ी का है भैया।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, और अभी तो फिलहाल गर्मी में आराम करना ज्यादा होता है और बरसात

0: आज जैसे लगेगा धान की बुआई करेंगे।
1: और छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अच्छा मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के इलाके में गर्मियों के मौसम में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत लुभाती हैं, जैसे कि आम।
0: आम और अमरूद तो इधर बहुत मिलता है भैया, मतलब आम तो बाहर से ही आते हैं।
1: जी जी जी बिल्कुल।
0: लेकिन जो अमरूद वगैरह होते हैं वो प्रायः घर में अमरूद है, पपीता हो गया, बेर का पेड़ हो गया, ये मतलब बहुत आयत सबके घर में मिल जाते हैं।
1: सही है सही है। अच्छा बताइए कि इस साल क्या गर्मियां बीते कई सालों की तुलना में ज्यादा पड़ी?
0: बिल्कुल ज्यादा पड़ा है भैया, 44 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुँच गया है। और कई इसके कारण होंगे भैया, सबसे ज्यादा तो यही अपन जो देखते हैं पर्यावरण में हस्तक्षेप करना, और हम मानव समाज के लिए बेहद जरूरी है कि हम प्रकृति से निकटतम प्रेम करें और वो सामंजस्य बना के रखें।
1: बहुत प्यारी बात कही आपने। अब मुझे ये बताइए कौन से गाने की फरमाइश है?
0: फिल्म है राजा और रंग के गीत के बोल है, ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, ये प्यारा सा गीत सुनना है।
1: बहुत ही बढ़िया, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: के टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 2867-0288, दूसरा है 400-24662। अंग्रेजी में बता दें 2867-0288 और 4002-4662। मुंबई का एसटीडी कोड 022 है। रिकॉर्डिंग सोमवार को दिन में 11 बजे से होती है। जिन श्रोताओं के कॉल्स आज शामिल हो गए वो कृपया 2 महीने तक हमें फोन ना करें ताकि नए श्रोताओं को हम मौका दे सकें। और हाँ, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए जब आप बातें करें तो अपने इलाके के बारे में कुछ बताएं, कुछ दिलचस्प बातें करें, कुछ गाने सुनाएं तो इस कार्यक्रम को हम अच्छी तरह से सजा सकते हैं। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले और इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए पिटारा।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन हैं।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राजकुमार रिजवी की आवाज से। कलाम है बशीर बद्र का।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे ये गजल। कलाम था जिगर मुरादाबादी का। विविध भारती से यह है कार्यक्रम रंग तरंग।

0: भीड़ फिल्म का ये सोहर आप सुन रहे थे। रोमी के स्वर में शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं गीत, गजलें, कव्वालियां और नॉन फिल्म एल्बम के कुछ गीत।

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मिताली सिंह की आवाज थी, एल्बम का नाम था नशे मन। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। राजेश रेड्डी की गजल पंकज उधास की आवाज में, एल्बम का नाम नबील।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को हमारे मुंबई केंद्र से FM एंड 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल की चौथी कड़ी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants are Dr. V.K. Paul, former member, Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, President, AIIMS Bilaspur. Moderator is Priyanka Arora.
3: स्वस्थ नागरिक किसी भी सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत ने पिछले 12 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गरीबों के लिए उपचार की बेहतर व्यवस्था, आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों का विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा, इन सभी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी है। यही परिवर्तन आज करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति विषय पर आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रही हैं। हमारे साथ हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
4: तो
3: जी, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पॉल, आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े

0: बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं?
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विजनरी लीडरशिप में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड जो कभी नहीं हुए वो रिफॉर्म्स हुए और वो बदलाव आया है। इसके बहुत सारे डायमेंशन है लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशन को देखूं तो जो एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ी है
0: जी,
1: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता नागरिक पे, खासकर जो गरीब परिवार है, इन दोनों में सुधार लाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था उनमें जो कमी आई है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नजर से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और सिटीजन जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये जो हुआ है वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं
0: जी,
1: जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, मैं समझता हूं कि इन दोनों को जोड़ के देखूं तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जो सुधार और जो जन जन तक इसका फायदा हुआ है उसको मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूं।
0: जी हाँ, यह अभूतपूर्व पहल रही है और आज भी विश्व में सबसे बड़ी योजना के रूप में मानी जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर आपसे जानना चाहें तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं?
2: जैसे कि प्रोफेसर पॉल ने कहा कि एक आम व्यक्ति के जेब से आज से 12 वर्ष पहले अगर वो 100 रूपये डॉक्टर की इलाज पे या अपनी किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रूपये उसकी जेब से जाते थे, आज ये घट करके 35-40 रूपये के बीच में आ गया। ये एक आमूल परिवर्तन है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर पॉल कह रहे थे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको इस स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिक तौर पर इनको बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होती। यानी कि 2 किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है, उस बीच में एक आयुष्मान मंदिर है
0: जी।
2: तो जिसको हम एक्सेस है या स्वास्थ्य सेवाओं की प्रति जो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी जो सुविधा है वो उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक चीज और है, मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित जो एक पूरा का पूरा अभियान चला है उसके अंतर्गत कई चीजें हुई हैं। और मैं यहाँ पर टीकाकरण क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस देश में 100% जो टीके हैं वो भारतीय दिए जाते हैं
0: जी।
2: कोविड के दौरान जो 228 करोड़ टीके दिए गए वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे, और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयां, इलाज करने के लिए वैक्सीन और किसी भी बीमारी के लिए अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो ये किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
1: हमारे देश में सुविधाओं की कमी रही कई सालों तक, उसके साथ साथ में सिटीजन को अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए जो खर्चा होता था उसका समाधान का तरीका निकाला गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 60 करोड़ हमारे जो नागरिक हैं, 60 करोड़
0: जी,
1: उनको 5 लाख का कवरेज हर साल उनके परिवार के अंदर 5 लाख का कवरेज जो है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए दाखिला जब होता है अस्पताल में तो वो सरकार कवर करती है
0: जी।
1: और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों ने और भी अपने अपने नागरिकों को एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है। अब ये जो सेवाएं दी जा रही हैं ये लगभग 1900 से ज्यादा पैकेजेस

0: की तरह से कि आपको डेंगू का बीमारी हुई तो एक पैकेज डेंगू का है, आपको घुटने के रिप्लेसमेंट की जरूरत है एक पैकेज है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हमारे नागरिक भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको टर्शियरी केयर में हार्ट की सर्जरी, आप नी रिप्लेसमेंट और इवन किडनी ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, एनकेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्लड की बीमारियां, कैंसर, इन सब बीमारियों को उनको कैशलेस, उनको सामने पैसा नहीं देना है और उनको सेवाएं मिल रही हैं 30,000 से ज्यादा अस्पतालों में, जिनमें कि कम से कम 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया एक आम नागरिक के लिए, ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। आयुष्मान भारत पीएमजे के अंतर्गत हर रोज 85,000 से 90,000 व्यक्ति अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, रोज 80,000 से 90,000। अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे दाखिले हो गए हैं, 10 करोड़ से ज्यादा। देखिए कितने लोगों को ये फायदा कैशलेस कवरेज का जो हुआ है, अगर हम देखें कि इससे कितनी बचत हुई है समाज को, देश के नागरिकों को, तो ये आंकड़ा आता है 1,52,000 करोड़ का फायदा जो है वो यहां तक पहुंचा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि इससे मेरे को रीच कैसे बढ़ी, तो जब शुरू हुआ था तो जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी हैं, उनमें लगभग एक 0.7%, less than 1% ही बेनिफिशरीज का फायदा ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर हुआ, आपको जान के खुशी होगी कि आप 2 से 2.5% लोग, मतलब कि 2.5 से 3 गुना बेनिफिशरीज को एक्सेस अब मिल रहे हैं। तो लोग बैठे रहते थे, अब इसको अपनी सेवाओं का को लेके जाते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक स्टडी हमें दिखाती है कि जिनको पीएमजे का कवरेज नहीं है वो टाइम पे पहुंचते हैं 30% लोग सिर्फ, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 90% लोग टाइम पे पहुंच पा रहे हैं सेवा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ताकत है इलाज लेने के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 2024 से इस कार्यक्रम के साथ में 70 और 70 से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को जोड़ दिया गया है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सबके लिए। तो ये 6 करोड़ नागरिक हैं जिनको की एक्स्ट्रा एक आयुष्मान भारत में जगह मिली है। ये लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज परिवारों को बिलोंग करते हैं, और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत वयो योजना जो है पीएमजे की, उसके साथ जोड़ के वयो वंदन योजना में ये समावेश हुआ है। तो जो सबसे नीडी लोग हैं उनको, क्योंकि उस उम्र पे ज्यादा बीमारियां होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो उस समाज को प्रोटेक्ट करना और इस स्कीम के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है और उपलब्धि है। ये इतने बड़े स्केल के ऊपर रोज दाखिले हो रहे हैं और उन सबका इलाज हो रहा है, और इससे गरीब की जेब पे बोझ कम हुआ है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर मिलना शुरू हो गया है।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप लंबे समय से टीकाकरण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं, मिशन इंद्रधनुष और कोविड टीकाकरण अभियान ने भारत के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है?
2: ये जब आप टीकाकरण की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस चीज को सराहा गया है। 2014 में कुल 63% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण होता था और आज ये बढ़कर के 93-94% हो गया है। अभी NFHS का डेटा 2 दिन पहले आया है 2024-25 का, एक्चुअली उसमें डेटा 22-23 का
1: जी।
2: और उसके हिसाब से 88.7% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध रहा। और इसका कारण, और आपने मिशन इंद्रधनुष का जो उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए जिसको टीका नहीं मिला हो उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने पर से नहीं है, इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और यह जो प्रयास था जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खास तौर पे जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे। पूरे के पूरे टीकाकरण में हमारा अब हर बच्चा, हर महिला जो है

0: एक तरीके से हाथ पे लिखा रहता है। और अब इसको आगे ले जाकर के यूएन आईटी प्लेटफॉर्म है, जिससे कि हर एक हमारी रजिस्ट्री बन गई है जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य लाभ जो हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता आई है, क्योंकि अब जब मैं बच्चों के तक पहुंचता हूं, गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता हूं, तो खाली टीकाकरण नहीं है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी वहां तक लेके जाने का प्रयास किया जा रहा। साथ ही साथ जो ये माइक्रो प्लान वाला सिस्टम है, इसका प्रभाव हमारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पे दो बड़ी बीमारियां हैं
1: जी।
0: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है, वहां तक पहुंचाने में भी इसी को क्रम का प्रयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में, उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं पर सुदृढ़ नहीं हुआ है, लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है, वो हमारी सारी की सारी सरकारी जो भी हमारे कार्यक्रम है, अभियान है, उसमें सबसे ज्यादा कवरेज या पहुंच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं, उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है। तो यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से। और अभी देश में 1,70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें आयुष्मान भारत, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके। तो सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही है?
2: आपके सवाल में दो हिस्से हैं। पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा
1: जी।
2: किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं जो होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना, उनकी सोच लेके आए, जो एक लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों की, इन्फेक्शियस बीमारियों, कम्युनिकेबल डिजीज की, वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर, अब ये सेवाएं प्राथमिक सेवाओं में आयुष्मान आरोग्य में निहित हो गई कि हम इनको एक सीमित तरीके से, सीमित इन द सेंस कि पीरियोडिक, इतने साल के बाद हर व्यक्ति का एक चेकअप होगा, हर साल ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर साल शुगर चेक होगी डायबिटीज के लिए, और कैंसर 3 साल में 5 साल जैसा प्रोटोकॉल है, इसमें 3 कैंसर, मुंह का कैंसर, कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लेडीज में, और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को साथ में जोड़ा गया, आई, आंख का इलाज, ईएनटी, कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें। तो 12 पैकेजेस बने
1: जी।
2: शुरू के 5 पैकेजेस 4 पैकेजेस की बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 1,70,000 ये बने, उसमें दो तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है लगभग 30,000 का उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है, एक पीएससी वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 5 या 6 या 4 या 5 सब सेंटर वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाता। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 1,20,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया। हमारी पुरानी टीम थी आशा वर्कर थे एक गांव में लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास एएनएम थे, कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 1,20,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि इतने संख्या में एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया गया, और ये टिपिकली बीएससी पास हमारी नर्सेज होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सब जगह पे टेलीमेडिसिन का प्रावधान हुआ, सब जगह पे 100 से ज्यादा दवाइयां सब सेंटर वाले में 105 था।

0: दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री और पीएचसी वाले में 42 से ज्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को, सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब खत्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, जरूरत होगी तो टेली मेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाएगा, और जो बाकी सेवाएं शुरू से हैं, इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, टीवी कंट्रोल, लेप्रसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चल रही है, उनमें भी ताकत है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्लैनेट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है और ये बहुत दूर तक हमें लेके जाएगा, क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि या तो वैसे ही हम अपने आप को, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, नहीं तो हम डिटेक्ट करें, और प्राइमरी हेल्थ के द्वारा डिटेक्शन भी हो, प्रिवेंशन भी हो, हेल्थ प्रमोशन भी हो, और जरूरत पड़े तो फिर ट्रीटमेंट भी हो, जिसमें फिर पीएमसी जुड़ जाता है।
1: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज की जांच करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो बहुत बड़ी बात है।
0: दूसरी बात आपने कही कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया, बहुत बड़ी बात है
1: जी।
0: ये हिस्टोरिक जब देखा जाएगा तो हिस्ट्री में ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जो भारत का अपना सिस्टम थे, आयुर्वेद हमारा सिद्ध है, हमारे पास यूनानी है, ये सब हमारे भारत में पनपे हुए सिस्टम है, इन सब की जो योग है, वो स्वास्थ्य के लिए भी और स्वास्थ्य से भी ऊपर का है, वो उन सब को एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको ये बजट प्रदान करना, उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और उनको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में जोड़ना, और को जो बढ़ोतरी मिली है वो बहुत बड़ी बात है कि दोनों का समावेश हो, आधुनिक कार्यक्रम, आधुनिक पद्धति का भी हो और ट्रेडिशनल का भी हो, ताकि दोनों मिलके एक व्यक्ति को, एक नागरिक को वो दे पाए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा, स्वास्थ्य रहे, बीमारियां नहीं हो, मन भी अच्छा हो, तन भी अच्छा हो और आत्मा भी अच्छा हो, इन सब का जो जोड़ इंटीग्रेटिव अप्रोच में लेके आए हैं, ये भारत का मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी। और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बड़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं उनकी एक्सेप्टेंस बड़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बड़े हैं, और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड
1: है। बिल्कुल, एक साथ ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरोड़ा, हम जिसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों सरकार जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है, और खासकर जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: जो HPV वाला टीकाकरण है, और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने तीन कैंसर्स के बारे में बताया, एक तो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है, उसी के लिए वैक्सीन है ये
1: जी,
2: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर, और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। तो एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और हुई है हमारे देश में इस पिछले 12-13 साल में, एम्स का संख्या एक से बढ़कर के इस समय 23 एम्स हो गए, जो अपने आप में एक गजब की चीज है। कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए, फॉर एग्जाम्पल झारखंड में देवघर करके एक जगह है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब ऐसी जगह किया है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या पिछड़े इलाकों में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से JNK में दो हैं, और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए, और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को एस्टैब्लिश, जहां से ज्यादा लोगों के पास टर्शियरी केयर, जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं इन सारे में, ये सब नए इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पे बहुत होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो

0: लेरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है, तो उन क्षेत्रों में उन पे विशेष तौर पर ध्यान देकर के उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए। और अब ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आपने कहा, ये हमारी बच्चियों के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है, और ये वैक्सीन इतनी सुरक्षित है, और वैक्सीन मिलने के बाद कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह का कैंसर प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। इनफैक्ट WHO की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि ये वैक्सीन के साथ साथ अगर हम स्क्रीनिंग और इलाज करते हैं तो अगले 15-20 साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कैंसर की तरफ जो है बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। कुछ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता कर रही है, जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं, और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है, जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हो।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य ID जैसी पहल है, वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है?
2: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे की तरक्की की तरह मानना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया और उसके जो डिफरेंट स्वरूप है उसमें एक है कि हमारे पास हर नागरिक का इवेंचुअली एक डिजिटल आइडेंटिटी होगा, उसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, आभा। तो आपको हैरानी होगी 87 करोड़ व्यक्तियों का, नागरिकों का आभा आइडेंटिटी आज हमारे पास अवेलेबल है, 87 करोड़, 145 करोड़ में से। इसका क्या फायदा है कि इस सिस्टम के द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा जो मेरे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो पुराने नए अगले सब जुड़ सकते हैं, और जब किसी ने इसको देखना है और प्रस्तुत करना है और रिकॉर्ड की तरह भी है तो डॉक्टर साहब उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे और से और लोड होते जाएंगे, ये एक इनोवेशन का भी जरिया बनेगा और इसमें बहुत सेवा की ईज जो है, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ, वो अचीव होगी। इसमें फिर जो टेली मेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जैसे मैंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेली मेडिसिन हो गया, हमारे पास ई संजीवनी एक टेली मेडिसिन, रोज हजारों कंसल्टेशन उसके ऊपर होती है, हजारों, और उसमें इतने

0: और जो उसकी वजह से हेल्थ की एक्सेस बढ़ी है
1: इज बाय 12 or 14% points. दिस इज रिमार्केबल बिकॉज दिस इज जिसको कहते हैं बिल्कुल फंसी हुई चीज थी जिसको ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था. और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है. तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग, हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग. लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है. अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं और बाकी बच्चों में ये अनीमिया की समस्या ऐसी है. इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं. लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं और खाने में खासतौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है. तो कुल मिलाकर के और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27%

0: महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में करती, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आज वो बढ़कर के लगभग 95% हो गया है। ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है और इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु, असमय मृत्यु से उसको कम किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, मैटरनल मोर्टेलिटी, वो एकदम नीचे आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य में जो प्रोत्तर विकास हुआ है, उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो। और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक, उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको हम प्राप्त कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सकें जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हमारे पर।
1: बिल्कुल, अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं, कोरोना के टाइम की जब कभी याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस समय जो भारत की रणनीति थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया, दो इट वॉज अ मेजर चैलेंज फॉर अस। सो व्हाट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द COVID-19 पेंडेमिक?
2: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया। एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया। उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में, और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है, बैट

0: मैं अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया। एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया। उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है, बैट से, चमगादड़ से आता है, या बर्ड से आता है, चिकन से आता है। अब इन सब चीजों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं है, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं है, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं है, हम एनवायरमेंट, जंगल, इन सबसे सभी जुड़े हुए। तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को और इन सब डायमेंशंस को जोड़ के एक जो मिशन बनाया गया है, उनके अंतर्गत जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है। तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के अंतर्गत बनाया गया है। हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रांग किया गया है, हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमिया का सिस्टम है उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच करा गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं, उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि पहले से ही वैक्सीन की रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो, ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखें। इसके अलावा जो रिस्पांस है ग्राउंड से, जो रिस्पांस है हमारा, जो IDSP का सिस्टम है, 2 लाख से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है। सिंड्रोमिक अप्रोच ICMR ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया है। वेस्ट वाटर सर्विलेंस भी करा जाए कि सुएज में क्या वायरसेस आ रहे हैं। काफी बड़े तौर पे इन सारे को पिछले लेसन्स को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है, और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायो सिक्योरिटी है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, उसके लिए ये स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर बात करें आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए। तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं?
0: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती है उनको उपलब्ध किया जाता है। देश में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है। इसमें हर रोज 10 लाख से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयां खरीदते हैं
1: जी,
0: किफायती दाम पे मिलती हैं। मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी और कई दवाइयां तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है, बहुत फायदा होता है। अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है। और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जन औषधि केंद्र हैं, ये सब जगह, सब प्रदेशों में, सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ है 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन जो है मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है। तो ये दो काम कर रहे हैं, एक तो गुणवत्ता की दवाइयां मिल रही हैं, दूसरा व्यक्ति को बचत हो रही है, और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है, व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है, और उसका जो जायजा है वो हम रुपयों में नहीं ले सकते। इतना बड़े भले का ये कार्यक्रम है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल। नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इन द स्पेशल

0: Series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants were Dr. V.K. Paul, former member Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, president, AIIMS Bilaspur. Moderator was Priyanka Arora. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे हमारा ये विशेष कार्यक्रम सरकार के 12 साल एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना, दिनांक 8 जून 2026 दिन सोमवार को शाम 5:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में इस बार हमारी चर्चा का विषय होगा श्रोताओं भी आप सुन रहे थे हमारा ये विशेष कार्यक्रम सरकार के 12 साल एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर पर ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना, दिनांक 8 जून 2026 दिन सोमवार को शाम 5:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में इस बार हमारी चर्चा का विषय होगा कब्ज और अपच से जुड़ी समस्याएं और निदान। इस विषय पर श्रोताओं की समस्याओं पर सुझाव देने के लिए उनसे बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ चिकित्सक अयोध्या डॉक्टर राजेंद्र कुमार बनौधा जी। इनसे बातचीत करने के लिए आपको मिलाना होगा आकाशवाणी अयोध्या का स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 7376804090। समय याद रखिएगा, दिनांक 8 जून 2026 को शाम 5:30 से कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। ये एफएम आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रमों को आप न्यूज ऑन एयर के साथ साथ डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सुन रहे हैं। दोपहर के 12:30 हो चुके हैं। पेश है कार्यक्रम लोक रंग।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: सुनत हूँ सखी, सुनत हूँ कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
5: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
4: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
5: और व्हाट्सएप नंबर 8303119911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
6: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
7: हमारी जनगणना हमारा विकास।
8: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कार्यक्रम लोक रंग में आप सभी का स्वागत करता है आपका रेडियो दोस्त सदक। आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की बब्बर निषाद और साथियों के स्वर में गाए इस गीत से, जो बता रहा है कि हमारा गांव शाम की अजूरिया में कैसा लगता है।

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
2: कार्यक्रम लोकरंग में आपका फिर से स्वागत है। अगली आवाज होगी शारदा सिन्हा की इस प्यारे से गीत में,

कार्यक्रम लोकरंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। आइए ये गीत सुनते हैं, श्रीकांत मिश्रा और साथियों के स्वर में, पारंपरिक रचना है।

0: कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम की सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
3: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
2: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
3: जी हाँ, और वो है योग।
2: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
3: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
2: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
3: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
2: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
4: योग करिए, निरोग रहिए।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग, FM 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कार्यक्रम को आप न्यूज ऑन एयर ऐप और akashvani.gov.in पर भी सुन रहे हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि akashvani.gov.in पर आप कार्यक्रम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए तो सुन ही सकते हैं, साथ ही साथ हमारे कार्यक्रमों की पूरी रूपरेखा की जो क्यू शीट होती है ना, वो भी आपको वहां पर मिल जाती है। तो अगर आप अपने सिस्टम पर हैं, कंप्यूटर पर हैं, तो akashvani.gov.in को लॉग इन करके उस पर जाइए और हमारे कार्यक्रमों को देखिए और आकाशवाणी अयोध्या को एंजॉय कीजिए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है आपका पसंदीदा चहेता फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। दोपहर के 1 बजने जा रहे हैं, लीजिए पेश है फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव।
5: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। दोपहर के 1 बजने जा रहे हैं, लीजिए पेश है फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
5: कार्यक्रम कुछ तुमने कहा लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त सदक। और श्रोताओं, आप सभी तो जानते हैं कि

आज का दिन है खास। जी हाँ, आज विश्व पर्यावरण दिवस हम सब मनाते हैं। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज के समय में पर्यावरण की जो महत्ता है और पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने की जो बात हो रही है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे सबके लिए हो चुकी है। जी हाँ, और ये भी हम जानते हैं कि पेड़ लगाना इसमें एक सबसे आसान और सार्थक कार्य है जिससे हम अपने पर्यावरण की अच्छी सुरक्षा कर सकते हैं। और जैसा कि आपका ये जो प्रोग्राम है साथियों, कुछ तुमने कहा फेसबुक के जरिए, हम इसमें लिखते हैं कि आप अपनी पसंद के गानों के साथ अपनी जो बात है ना, जो चर्चा है, शेर है, शायरी है, अपने दिल की बात है, या जिस दिन जो विशेष दिवस होते हैं हमारे, उनके बारे में भी आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। हम बाकायदा उनको शामिल करेंगे आपके मैसेजेस को। आप अपने विचारों को हम तक भेजिए। और इतना ही नहीं, अगर आपने आज पेड़ लगाया हो तो अपने इस पेड़ की तस्वीर, उसकी सेल्फी हमारे इस फेसबुक कमेंट पेज में भेजिए। हम जरूर उसे साझा करेंगे अपने सभी श्रोताओं के साथ। तो आप अभी भी ये काम कर सकते हैं, आज आपने पेड़ लगाया हो तो उसकी तस्वीर हमसे साझा कीजिए, हम उसका डिस्क्रिप्शन अपने इस प्रोग्राम में रखेंगे। आइए कुछ श्रोताओं की फरमाइशों को शामिल करते हैं। अपने पहले गीत के लिए हमें फरमाइश लिख भेजी है, और ये पहला गाना बजेगा, ये जवानी है दीवानी फिल्म से। लिखने वाले श्रोता हमारे विष्णु टेलर जी, दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से। बी एल धाकड़ जी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है, भेरूलाल वातड़िया धाकड़ जी, उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। जाकिर मंसूरी साहब शामिल हो रहे हैं इस प्रोग्राम में, कुछ तुमने कहा में बाजार रोड मुंगी सापुर से। और दिलशाद हुसैन का ये संदेश हम तक पहुंचा है, जगह मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। रविंद्र कुमार राहुल जी शामिल होंगे इस पहले गीत के साथ हमारे प्रोग्राम में, और इन्होंने हमें संदेश भेजा है कस्बा बराना जिला अंबाला हरियाणा से। विनोद कुमार यादव जी शामिल हो रहे हैं इस प्रोग्राम में, इन्होंने हमें संदेश भेजा है इंग्लिश फरका भागलपुर बिहार से। शिव चौहान जी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं बाबा कुटीर रायगढ़ से। विक्रम मालवीय जी को हम शामिल कर रहे हैं गुलबा लोद तहसील आलोट जिला रतलाम से। और इसी कार्यक्रम में, इसी प्रोग्राम में इस पहले गीत के लिए शामिल हो रहे हैं लालगिरी गोस्वामी जी, जो कि शामिल होंगे हमारे कार्यक्रम में रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। तो लीजिए आप सभी के फरमाइशों के साथ प्रोग्राम का ये पहला गीत आप तक।

भाई देखिए, अपने श्रोताओं से हम कहते हैं कि 11 बजे के बाद के जो संदेश होंगे वो हम शामिल नहीं करते हैं, लेकिन आज के लिए आपको छूट दे रहे हैं। आप भेजिए अपने चित्रों को, अपने वृक्षारोपण के चित्र को, या फिर अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जो आपका अपना विचार है वो भी हमसे साझा कर सकते हैं। हम इनवाइट कर रहे हैं आपको, और आज नहीं तो कल से जरूर दिवस विषयों पर आप अपनी बातचीत इस कार्यक्रम में जरूर रखिए गीतों के साथ। दोस्तों आइए और श्रोताओं के नामों को शामिल करते हैं अगले गीत से। पहले रविंद्र कुमार राहुल जी का संदेश हमें मिला है, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से। विनोद कुमार यादव जी शामिल होंगे, ये भागलपुर बिहार से। शिव चौहान जी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है बाबा कुटीर रायगढ़ से। विक्रम मालवीय जी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं और इन्होंने हमें संदेश भेजा है एक बार फिर से जिला रतलाम से। इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में कमल जी शामिल हो रहे हैं और आपने हमें संदेश भेजा रामगढ़ कैंट झारखंड से। इंजीनियर फैजल इमाम का संदेश हम तक पहुंचा है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से, और दो बार आपने मैसेज भेजा है। इसके लिए हम रिक्वेस्ट हमेशा करते हैं कि कोई भी हमारे श्रोता एक से ज्यादा बार मैसेजेस ना भेजें, वरना फिर उसको हमें बैलेंस करने के लिए अगली बार आपको स्किप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी जी का संदेश हमें मिला है और हमारे रेगुलर श्रोता हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। विजय सुरालकर जी का संदेश हम शामिल कर रहे हैं मोताला महाराष्ट्र से। सतीश अनेजा जी शामिल होंगे हमारे नियमित श्रोता, और आप इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं कहां से, चंडीगढ़ से। योगेश सरवा जी का संदेश हम तक पहुंचा है, आपने हमें डौंडी लोहारा जिला बालोद से संदेश भेजा है। भाटपारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू जी शामिल हो रहे हैं इस प्रोग्राम में। राजेश कुमार वर्मा जी का संदेश हम तक पहुंचा है और आपने गोल्डन श्रोता संघ बनाया राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, आपका यह संदेश हम तक पहुंचा है। ओम प्रकाश राय जी शामिल हो रहे हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से। राधेश्याम शर्मा जी का संदेश हम तक पहुंचा है गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से। चलिए आप इतने श्रोताओं की पसंद पर हम इस अगले गाने को आप तक पहुंचाते हैं।

आइए श्रोताओं और नामों को शामिल करते हैं आज के कुछ तुमने कहा प्रोग्राम में, जो कि फेसबुक श्रोताओं के साथ हमारा ये कार्यक्रम होता है। नीलू मेघ जी शामिल हो रही हैं हमारे कार्यक्रम में राजधानी रायपुर से। गजनान येले जी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है, आपने हमें संदेश भेजा है दरियापुर बाबली से। रजाक मोहम्मद जी का संदेश हमें मिला है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से। फरियाद हुसैन अंसारी जी शामिल हो रहे हैं प्रोग्राम में और आपका संदेश हम तक आया है कहां से भाई, कस्बा सिंथल जिला बरेली से। नरेश मल्होत्रा जी, निट्टू जी शामिल हो रहे हैं प्रोग्राम में, बड़े अच्छे गीत की फरमाइश भी आपने भेजी है, कोशिश करते हैं आपकी फरमाइश भी पूरी हो। और जो फरमाइशें हम शामिल कर रहे हैं दोस्तों वो आप सबकी ही पसंद पर हैं। और ये है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा जी हमें संदेश भेज रहे हैं। नारायण लाल साहू जी प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से। मसरूर हसन जी शामिल होंगे प्रोग्राम में इस गाने से पहले सहारनपुर से। आफताब अंसारी जी शामिल हो रहे हैं प्रोग्राम में शेरवानी स्कूल गुंज डुडवारा से। नरसिंह राजपूत जी का संदेश हमें मिला है महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। सुरेश गगनेजा जी, मुझे लगता है आपने दोबारा संदेश भेजा क्या गगनेजा जी, जलालाबाद वेस्ट से आपका संदेश है। सुनील पाठक जी का संदेश शामिल कर रहे हैं हम इस प्रोग्राम में और आपने हमें संदेश भेजा है अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से। और देखिए भाई, उमेश कुमार गौड़ जी ने एक बढ़िया सा पोस्टर बना के हमें भेजा है, फूल तो इसमें दिखा दिए इन्होंने फूल पत्तियां, लेकिन पेड़ भी दिखाते तो बड़ा मजा आता। चलिए बहुत शुक्रिया, एटलीस्ट आपने एक हमें चित्र भेजा और उसमें अपना संदेश भेजा, बहुत शुक्रिया उमेश जी। और वेद प्रकाश मिड्ढा जी का संदेश हम शामिल कर रहे हैं, नाई वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से आपने संदेश भेजा है। रियासत हुसैन सिद्दीकी जी का संदेश है जसपुर उत्तराखंड से। मणिराम पाल जी शामिल हो रहे हैं ग्रामवा पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। और कस्बा उगैती बदाऊं से धीरज गुप्ता जी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। राजेश अकेला जी ने भी एक हमें पोस्टर बना के भेजा है, आकाशवाणी का लोगो बना दिया आपने और अपने रेडियो श्रोता संघ का नाम लिख दिया आपने, ठीक है। पलेरा हाल टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, जैसा कि आप जानते हैं कि हम केवल जो आपकी आईडी होती है उसी नाम को पढ़ते हैं, बाकी नामों को शामिल नहीं करते, फेसबुक श्रोताओं के साथ ये प्रोग्राम होता है, माफी चाहते हुए। फागू राम यादव जी को शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में संबलपुर कांकेर से। तो लीजिए, आप सभी इतने श्रोताओं की पसंद पर प्रोग्राम का ये अगला गीत आप सभी तक पहुंच रहा है।

0: नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
3: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
2: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है घर घर जन जन तक।
3: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
2: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
3: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
2: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या। तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
4: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
2: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
4: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
2: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
4: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
2: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार।
4: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।
5: प्रोग्राम कुछ तुमने कहा, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, FM आकाशवाणी है ये दोस्तों, और कार्यक्रम

को आप akashvani.gov.in पर भी लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सुन सकते हैं। भाई अगला ये गीत किशोर कुमार की आवाज में बजेगा आप सबकी पसंद पर। उमा सिंह का ये संदेश है, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से संजय साहू जी का संदेश है, पोटिया कला दुर्ग से। राजपाल राज जी को हम शामिल कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, आदर्श नगर मालौत पंजाब से। राहुल मनवर जी का ये संदेश है, हम तक पहुंचा है कहां से भाई, सब कुछ आपने लिख दिया। और यवतमाल शाहू नगर से आपने संदेश भेजा है। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा जी का संदेश हम तक पहुंचा है, पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। धीरज गुप्ता जी शामिल हो रहे हैं हमारे प्रोग्राम में और इन्होंने उगैती बदायूं से हमें संदेश भेजा है। संजय ढिंगिया जी शामिल हो रहे हैं हमारे प्रोग्राम में बागपत उत्तर प्रदेश से। शुभ चंद्र बजाज जी का ये संदेश हम तक पहुंचा है कालका से। अरुण कुमार मालवीय दर्द जी का संदेश है, गैबी चौराहा वाराणसी से आप शामिल हो रहे हैं, हमारे नियमित श्रोता हैं। मोहम्मद यासीन अंजान जी का संदेश हम तक पहुंच गया है और बड़ा प्यारा सा गाना, हम कोशिश करते हैं बजाते हैं इसको भी। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से आपने संदेश हमें भेजा है। रविंद्र सिंह छाबड़ा जी शामिल हो रहे हैं अपने मैसेज के जरिए हमारे इस प्रोग्राम में, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। रमेश कुमार जी का संदेश हम तक पहुंच गया है, पटेल नगर मालोट से। चिन्मय महतो जी शामिल हुए हमारे प्रोग्राम में, कदमा जमशेदपुर से। संदीप कुमार जी का संदेश हमें मिल गया है, साहनी पिंगावाला चौक गुराया जालंधर से। सुभाष गुदारा जी का संदेश हमें मिल रहा है और आपने फजिलका पंजाब से हमें संदेश भेजा है। महेंद्र मोदी जी का संदेश रामगढ़ कैंट से। नवी हसन अब्बासी जी का संदेश मरहरा दरवाजा एटा से। धर्मेंद्र छिपा जी शामिल हो रहे हैं अपने मैसेज के जरिए प्रोग्राम कुछ तुमने कहा में और आपने हमें संदेश भेजा है भोपालगढ़ राजस्थान से। बालकृष्ण जी का मैसेज मिल गया है, नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से। रिजवान खान जी शामिल हो जाएंगे हमारे प्रोग्राम में, अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से। रमेश कंबोज जी का ये मैसेज हम तक पहुंचा है, गांव मुरादगढ़ जिला करनवाल हरियाणा से। राघव बघेल जी को हम शामिल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। अशोक कुमार साहू जी का संदेश हम तक पहुंच गया है और फानेश चंदन जी शामिल हो रहे हैं छत्तीसगढ़ से ही। राजकुमार डूडी जी का संदेश हम तक पहुंच गया है, फरासी जिला हिसार से। इसी तरह से हरी बहु बिडवे जी का संदेश हम शामिल करेंगे और आपने हमें भोकर श्रीरामपुर से संदेश भेजा है। तो लीजिए आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर प्रोग्राम का ये गाना।

करेंगे और आपने हमें भोकर श्रीरामपुर से संदेश भेजा है, तो लीजिए आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर प्रोग्राम का ये गाना।

लोहगढ़ ठाकुरावाला से, गांव का नाम है इनके। और एम अफजल ताज जी का संदेश है कोल सिटी बरका काना से। चलिए भाई आप भी शामिल हो रहे हैं। आरसी कांबड़े जी हमारे नियमित श्रोता प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। जवाहर नगर दुर्ग से उत्तम कुमार भगत जी, ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं। और आपको हम शामिल कर रहे हैं पाकुड़ झारखंड से बबलेश पमार जी का संदेश, मैसेज हमारे इस प्रोग्राम में पहुंचा है। आपने हमें संदेश कहां से भेजा आप नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपने कुछ बात जरूर इस प्रोग्राम में लिखी जिसे हम शामिल कर रहे हैं। आप कहते हैं कि अपने अल्फाज को ऊंचा करो, अपनी आवाज को नहीं, क्योंकि बारिश से फूल उगते हैं, बिजली कड़कने से नहीं। बढ़िया भाई, शेर व शायरी के अंदाज में आप हाजिर हुए हैं, बहुत शुक्रिया। बी कमल जी का संदेश हम तक पहुंच गया है मजनू का टिला से। ब्रजेंद्र भगत जी शामिल हो रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम में हजारीबाग झारखंड से। हिरमानी वर्मा जी का संदेश भाटापारा छत्तीसगढ़ से हम तक पहुंच रहा है। गंगा सिंह रावत शामिल हो रहे हैं हमारे प्रोग्राम में रामपुर रोड हल्द्वानी उत्तराखंड से। संतोष नामदेव जी हमारे नियमित श्रोता हैं और आप शामिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम में बघेड़ा दुर्ग से। एसके अलबक्स जी का अल्लाह बख्श आप हैं, आपने आईडी में अलबक्स बना रखा है। तेलंगाना निजामाबाद से आप शामिल हो रहे हैं। नरेन नेताम जी को हम शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में बगबुड़वा पथरिया से। ओम बगड़िया जी शामिल होंगे हमारे इस प्रोग्राम में फजिलका पंजाब से। प्रेम सिंह वराल जी का संदेश हम तक पहुंच गया है और आपने हमें संदेश भेजा है दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से। ढेर सारे नाम लिख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं, नामों की जगह आप अपनी बात, अपने कमेंट्स हमारे इस प्रोग्राम में भेजने की कोशिश करें। साथियों विक्रम सिंह का संदेश हम तक पहुंचा है कलाना राजस्थान से और नमस्कार के साथ आपको भी नमस्कार। नंद कुमार ठाकुर जी शामिल हो रहे हैं हमारे कार्यक्रम में बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। श्री कृष्ण भाटे जी का संदेश हम तक पहुंचा है धाड़ी नांदपुर महाराष्ट्र से। तो लीजिए आप सभी की पसंद पर प्रोग्राम का ये अगला गीत आप तक पहुंचेगा।

भई फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम चल रहा है कुछ तुमने कहा, जिसमें आप अपनी बातचीत भी रखते हैं, अपनी टिप्पणियां भी रखते हैं शेरो शायरी के जरिए, संदेशों के जरिए। और आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज को आपको फॉलो करना होता है, उसके कमेंट बॉक्स में जाना होता है और अपनी पसंद का गाना सुनना होता है। जब हम इसमें फरमाइशों को शामिल करते हैं दोस्तों, तो आपका जो आईडी नेम होता है उसे और आपका पता शामिल करते हैं। अगर आपने कुछ बात लिखी है तो उसे शामिल करते हैं। इसलिए कोशिश करें फरमाइशों के साथ नामों को ना जोड़े बल्कि कुछ बात जरूर जोड़े। और अगला गीत आज के दिवस विशेष को सूट करता है, उसे हमने शामिल किया, हमारे एक श्रोता ने फरमाइश की है। आइए संदेशों को पढ़ते हैं। सोमदेव यादव जी को हम शामिल कर रहे हैं ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसामा जिला बदायूं से। अशोक ढाले जी का ये संदेश हम तक पहुंच गया है और इन्होंने हमें जो संदेश भेजा है कुंभार गली श्री रामपुर से भेजा है। प्रवीण शुक्ला जी शामिल हो रहे हैं माझा तरहा गोंडा से। गोविंद वैष्णव जी का संदेश हम तक पहुंचा है, इन्होंने हमें तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से संदेश भेजा है। और रामचंद माखीजा जी, जिनकी पसंद पर हम अगला गाना भी ये सुनवा रहे हैं लता जी की आवाज में, और आज 5 जून यानी पर्यावरण दिवस को ये सूट करता हुआ भी गाना है कहीं ना कहीं, आपने हमें बनिया पारा तमतरी छत्तीसगढ़ से ये संदेश भेजा है, बहुत शुक्रिया आपका रामचंद माखीजा जी। भवानी सेन जी का संदेश छत्तीसगढ़ बुरसुदा से हम शामिल कर रहे हैं। राजेश वर्मा जी लाल कुर्ती रुड़की कैंट से। कमल सिंह जी मंजनू कटिल्ला से। सुरेश जायसवाल जी जमानिया जिला गाजीपुर से। नंद किशोर घटे जी को हम शामिल कर रहे हैं बीड शहर महाराष्ट्र से। नसीब मोहम्मद जी का संदेश हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से। वासुदेव बुद्ध वड़े जी का संदेश हम शामिल कर रहे हैं बुलगड़ा महाराष्ट्र से। राहुल बम बिस्टे जी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से। भाविष्टि ये लोग लिखते हैं राहुल जी। संजय मार्केंडे जी को हम इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं बड़ा बम चौक खंडवा से। और अगला कमेंट हम तक पहुंचा है राजेंद्र नारंग जी का बटिंडा रोड मंडी डबवाली से। सुरेश चौरसिया जी का मैसेज आया है कमेंट बॉक्स में। और फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा यूपी से इन्होंने संदेश भेजा है। आर कुमार जी का मैसेज हम शामिल कर रहे हैं बटिंडा खेड़ा पंजाब से। प्रकाश निषाद बल्लू जी शामिल होंगे इस प्रोग्राम में जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। रमेश चौहान जी को भी हम शामिल कर रहे हैं, इन्होंने कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से संदेश हमें भेज दिया है। के आर साहू जी को हम शामिल करेंगे देवरी भाटापारा से। बालक राम वर्मा जी का संदेश हम तक पहुंचा ग्राम पंचायत बटेना पाटन दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ से। तुलसी मस्कीन जी को हम शामिल कर रहे हैं और ये गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शारदा दिल्ली से इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। तुलसीदास चुग मस्कीन जी का भी संदेश पंचकुला चंडीगढ़ से मिल गया है। मोहम्मद फरमान जी का संदेश आया है मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। प्रवीण सोनी जी को हम शामिल कर रहे हैं इसी प्रोग्राम में गुजरात गांधीग्राम से। इसी के साथ

माखन वर्मा जी को हम शामिल करेंगे नाथघाट छत्तीसगढ़ से। हुकुम कर्माकर जी का संदेश है। अगला बड़ेड़ी मध्य प्रदेश से राजू टुटेजा जी शामिल हो रहे हैं। गोविंदगढ़ माजी वाला श्री करनपुर राजस्थान से मोहम्मद कलीम अंसारी जी को हम जोड़ रहे हैं इस प्रोग्राम में। गंज डुडवारा से और बिल्लू जी चिडालिया जी शामिल हो रहे हैं। लोहारू हरियाणा से। तो लीजिए आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर लता मंगेशकर जी की आवाज़ में गाया ये गाना।

जी हाँ श्रोताओं, ये अगला गाना आप तक पहुंचेगा हमारे इन श्रोताओं की पसंद के साथ, इनके नामों के साथ शामिल हो रहे हैं प्रोग्राम में हमारे श्रवण कुमार प्रजापति जी, जलालापुर जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। दिनेश वर्मा जी का संदेश हम तक पहुंचा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से। अनिल वर्मा जी शामिल होंगे प्रोग्राम में हमारे सदर बाजार कुरावली से। मोहम्मद रफीक पमार जी का संदेश हम तक पहुंचा है। इस नगमे के साथ इन्हें शामिल कर रहे हैं हम ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से। शालू शर्मा जी का संदेश हम तक पहुंच गया है बरेली कैंट चनेहटी उत्तर प्रदेश से। जसबीर सिंह जी को हम शामिल कर रहे हैं इस प्रोग्राम में आपके संदेश के जरिए। जिला जींद हरियाणा से गुरमीत सिंह मीटा जी शामिल हो रहे हैं साउथ दिल्ली से। मोहम्मद यासीन जी नई बस्ती गंज डुडवारा से हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ अगला संदेश हम तक पहुंचा है शिवाली गप्पा जी का, और आपने हमें संदेश भेजा है कर्नाटक राज्य कलबुर्गी जिले से। सदानंद मंदूरकर जी का मैसेज शामिल हो रहा है प्रोग्राम कुछ तुमने कहा है में, डबकी रोड अकोला से। सुरेश राठौर जी को हम शामिल कर रहे हैं इसी गाने के साथ। गांधीनगर गुजरात से शंभु दयाल जी का मैसेज हम तक पहुंच गया है, कहां से आया भाई, गांव जाखोद से आपने हमें मैसेज किया है। मोहम्मद कलीम जी को हम शामिल कर रहे हैं रेलवे रोड गंज डुडवारा से। मुकेश गौतम जी का संदेश हम तक पहुंच गया है बुद्धनगर खंडवा से, और खिल्लू परवेज जी को हम शामिल कर रहे हैं हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से। ज्ञान भूषण शर्मा जी का ये संदेश हम तक पहुंच गया है रावल करनाल से। संतोष खडसे जी को हम शामिल कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, और इन्होंने कुछ अच्छी सी बात लिखी है। यतलाम विदर्भ महाराष्ट्र से संदेश पहुंचा है, कहते हैं कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि प्यार विश्वास और भावनाओं से बनते हैं। जो लोग हमें समझते हैं और हमारे साथ खड़े रहते हैं वही सच्चे रिश्तेदार होते हैं। रिश्ते खून से नहीं बल्कि दिल से जुड़ते हैं। जो लोग हमें सच्ची मोहब्बत और साथ देते हैं वही हमारे असली रिश्तेदार होते हैं। भाई इन्होंने बड़ी अच्छी परिभाषा गढ़ दी है रिश्तों की। और वैसे भी हम अपनी संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है, और उस परिवार में जो हमें अच्छे से साथ निभाता है, मोहब्बत से हमारे साथ चलता है, सच्चे मन से हमारा रिश्ता निभाता, वो रिश्तेदार है ही भाई। बहुत ठीक बात आपने लिखी है। और कृपाल सिंह परिहार जी का संदेश हमें मिल गया है, गाना तो आपका शामिल नहीं होगा आज, दूसरे गाने के साथ आप जुड़ रहे हैं। मालवा रेडियो श्रोता संघ से आपने हमें संदेश भेजा है आलोट जिला रतलाम से। दोस्तों 200 से ज्यादा मैसेज और गाने हमें बजाने हैं 10-12, तो सबकी फरमाइशें तो मुमकिन नहीं है, लेकिन कोशिश ये होती है कि नामों को जरूर शामिल कर लिया जाए आपके। दातर सिंह जी शामिल हो रहे हैं राजस्थान से। पारेश प्रकाश जी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, प्रकाश बोर गांवकर जी, और आपने हमें संदेश भेजा है छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद से। तो लीजिए आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर प्रोग्राम का ये गाना।

भाई अभी हमारे दिल का आलम तो यही कह रहा है कि और कुछ श्रोताओं के संदेशों को कर लिया जाए शामिल प्रोग्राम में। वक्त अब मुख्तसर सा बचा है, 8 मिनट। राजू कुमार जी को शामिल कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर बिहार से अशोक सिंह जी को इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे, जबलपुर मध्य प्रदेश से बोधराज खोरवाल जी का संदेश हम तक पहुंच गया, उत्तम नगर दिल्ली से असीफ अली ये भाई आईडी बनी है आपकी, आसिफ अली जी है ना, तो आप एक मिला क्यों देते हैं, आसिफ अली क्यों बना रहे हैं उसको, आसिफ को अलग करिए, अली को अलग करिए, आसिफ अली बनेगा। कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत उत्तर प्रदेश से राजू मिगलानी जी का संदेश हम तक पहुंचा है, दुर्गा कॉलोनी हांसी से और विनोद कुमार रॉकस्टार जी का संदेश हम तक पहुंचा है, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से सतेंद्र चौंसलिया जी का ये मैसेज। अगला है ग्राम पजोनिया जिला जालौन से बनवारी लाल कुशवाहा जी शामिल हो रहे हैं प्रोग्राम में, और आकाशवाणी अयोध्या परिवार को प्यार भरा नमस्कार कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार। आप शामिल हो रहे हैं चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से, रुपेश संगाई जी को हम शामिल कर रहे हैं इस मैसेज के जरिए, महाराष्ट्र से आप शामिल हो रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, लक्ष्मण लोखंडे जी का मैसेज हमें मिला है, गाडगे नगर यवत माल महाराष्ट्र से, गगनदीप थांडी जी का मैसेज हम तक पहुंच गया है और आप शामिल हो रहे हैं गांव टोरोवाल नवा शहर पंजाब से, इसी प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं ब्रजेंद्र कुमार जायजान जी, और आपने हमें संदेश भेजा है भोला कॉलोनी घरौंडा जिला करनाल हरियाणा से, अशोक वर्मा जी का संदेश हम तक मिला है, जिला खगरौन सनावद मध्य प्रदेश से सीताराम कागड़ा जी को हम शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में, एकता कॉलोनी रोहतक से शकील अहमद इदरीसी जी शामिल हो रहे हैं इस प्रोग्राम में, बरेली उत्तर प्रदेश से रामशरण जी का मैसेज हमें मिल गया है, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हल्के जसपाल यादव जी का मैसेज है, और आप शामिल हो रहे हैं लोहे डी जिला मुरादाबाद बुंदेलखंड यूपी से संतोष भाकरे जी को मैंने शामिल कर लिया है, अनवर अंसारी जी पंजाब से शामिल हो रहे हैं, दीपक साक्य जी हमारे इस प्रोग्राम

में एटा उत्तर प्रदेश से धीरज भाई शामिल हो रहे हैं। गुजरात पाटन से बाबू भाई का मैसेज है उदयपुर से, और बीके हिंतेड़ा जी असम से, हितेंद्र दास जी हैं ये, असम से हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। बनवारी जयपाल जी का मैसेज हम तक पहुंच गया है और इन्होंने हमें मैसेज जो भेजा है वो कहां से भेजा नहीं लिखा, चलिए कोई बात नहीं, अगली बार जरूर लिखिएगा। इशरत खान जी का मैसेज हम तक पहुंचा है और आपने हमें संदेश भेजा है गनगोला दातागंज से, सैयद यूनुस जी को शामिल कर रहे हैं आप। राज कमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जिला जलान मराठावाड़ा से शामिल हो रहे हैं। चंद्रेश गोहर जी भी हमारे प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं सागर मध्य प्रदेश से। तो जी आप सभी सुनिए अपनी पसंद पर प्रोग्राम का ये गीत।

0: जी हाँ श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के साथ समापन हो रहा है आपके प्यारे से प्रोग्राम कुछ तुमने कहा का। जिन भी श्रोताओं के नाम शामिल नहीं हो पाए उनसे माफी चाहते हैं, अगले प्रोग्राम में जरूर कोशिश होगी उनके नामों को शामिल करने की। फिलहाल इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत।
1: और भाई साहब क्या हाल है?

0: यार हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
1: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
0: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और मौका है।
2: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की।
3: नहीं अछूता हो जिस
2: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
0: अभी आप सुन रहे थे फेसबुक श्रोताओं के साथ हमारा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। FM बैंड का यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है, 101.9 MHz न्यूज ऑन एयर ऐप पर और akashvani.gov.in पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं। दिन के 2 बजे हैं, पेश है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि।
4: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: प्रोग्राम गीतांजलि में इस गाने में पहली आवाज है कैलाश खेर की।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर
1: आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थर जैसा न कोई।
0: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9
1: आकाशवाणी अयोध्या,
0: जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com।
5: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
6: श्रोताओं, आज है विश्व पर्यावरण दिवस और आज आपको एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, एक पेड़ माँ के नाम, जैसा कि संदेश दिया जा रहा है। और आज उत्तर प्रदेश सरकार 5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखकर चल रही है, तो हम सबको इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाग करना है। अगला गाना है प्रोग्राम गीतांजलि का अदनान समी की आवाज में, समीर का लिखा हुआ, अदनान समी का ही म्यूजिक भी है।

अदनान सामी की आवाज में गए इस गीत के साथ खत्म हो रहा है प्रोग्राम गीतांजलि। एफएम बैंड पर ही आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है आपका प्यारा एफएम आकाशवाणी अयोध्या। दिन के 2:15 पर आप सुनेंगे समाचार। फिलहाल अभी सुनिए ये गाना।

0: गैर फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीतांजलि आप सुन रहे थे आकाशवाणी अयोध्या से। कार्यक्रमों को आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन रहे हैं और हमारे akashvani.gov.in लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर भी इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। दोपहर के 2:15 होने जा रहे हैं। हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का उद्घाटन किया। और जापान में पुरुषों के अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों के 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर में एक जनसभा को संबोधित करने से पहले औद्योगिक और बुनियादी ढांचा कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को दमन का दौरा करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन और आधुनिक नमो अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री आज दमन कन्वेंशन सेंटर, निफ्ट परिसर और एक प्रतिष्ठित ब्रिज समेत कई ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। समुद्री विकास की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में प्रधानमंत्री आज केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के लिए भी 885 करोड़ रुपए की बंदरगाह परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत कल्पेनी और कदम द्वीपों पर बहुउद्देश्य जेटियों का विकास किया जाएगा, जिससे स्थानीय मछुआरों को एकीकृत मछली पकड़ने और नाव मरम्मत सुविधाएं मिलने के साथ साथ बड़े यात्री और क्रूज जहाजों के लिए साल भर रुकने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, सूरत।
1: सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों से होने वाले पूंजीगत लाभ और ब्याज से आय को पूरी तरह से कर छूट दे दी है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। सरकार ने इस संबंध में आयकर संशोधन अध्यादेश 2026 जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से सरकारी प्रतिभूतियों पर कराधान कई देशों के समान हो जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इसी तरह के आयकर छूट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को भी दी गई है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत तटस्थ रखा गया है।
3: After a detailed assessment,
4: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
1: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि पॉलीमर आधारित करेंसी नोट का प्रस्ताव बैंक के विचाराधीन है। देश के विभिन्न हिस्सों में बैंक शाखाओं और एटीएम में नोटों की कमी को लेकर कुछ ग्राहकों ने शिकायतें की हैं। इन मुद्दों पर उन्होंने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और यदि कोई कमी है तो उसे तुरंत पूरा कर दिया जाएगा। उद्योग संगठन एसोचैम ने आरबीआई के रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह विकास को गति देगा और उद्योग जगत को मजबूती प्रदान करेगा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल ने कहा कि यह निर्णय आर्थिक प्रगति के साथ साथ मुद्रास्फीति को एक सुरक्षित दायरे में बनाए रखने में मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की डिजिटल बुनियादी ढांचा यात्रा गति पकड़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एयर ट्रंक ने भारत में लगभग 3,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन के भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पारस्परिक हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। एक रिपोर्ट।
5: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए सीमा सुरक्षा को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के पर्यावरणीय योगदान को लेकर कहा कि वर्ष 2019 से सीएपीएफ कर्मियों द्वारा लगभग 6,40,00,000 पौधे लगाए गए हैं।
6: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी सीएपीएफ ने जवानों ने लगभग 6,40,00,000 वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40,00,000 से 60,00,000 वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में सीएपीएफ के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
1: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाया। आकाशवाणी से बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वृक्षों की रक्षा तथा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।
7: माँ का नाम से एक पेड़ लगाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी ऑलवेज एक्सप्रेस एंड ही कॉल्ड द नेशन वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, सो वी आर ऑल ऑब्जर्विंग दिस डे। यस, एंड माँ का नाम से एक

0: लगाएंगे।
1: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कई पर्यावरणीय पहलों का शुभारंभ किया। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पर्यावरण संरक्षण के

0: भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बनकर उभरा है।
1: भारत दुनिया में जो विश्व पर्यावरण संकट है उसमें एनर्जी के क्षेत्र में, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। जैसा अभी एरेना की रिपोर्ट में भी आया है कि सोलर ऊर्जा में हम दूसरे नंबर पे आए हैं, देश में वन क्षेत्र बढ़ रहे हैं। और दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में धूलमुक्त दिल्ली के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। दिल्ली में जो लोकल वनस्पतियां और जो पेड़ है उसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है, सभी एक पेड़ माँ के नाम पे जरूर लगाएं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए हरियाली बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हब एंड स्पोक मॉडल का उपयोग करते हुए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद नेटवर्क के माध्यम से लगभग 100 कारीगरों को अमरीका के बाजारों से जोड़ा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि ये पहल स्थानीय स्तर पर निर्मित हस्तशिल्प को बढ़ावा देती है और वोकल फॉर लोकल के दृष्टिकोण को मजबूत करती है।
2: जो बसंत कुंज में अवस्थित ये मार्केट है, सरकार ने मुझे ये जमीन दी है आर्टिजन के बढ़ावा के लिए, तो हम इसमें आर्टिजन को भी स्टॉल लगा रहे हैं। लोकल फॉर वोकल है और दूसरा एकदम पर्यावरण अनुकूल है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का एक लेख साझा किया है। अपने लेख में श्री यादव ने पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई और जन भागीदारी का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेंद्र यादव ने प्रकृति आधारित समाधानों के माध्यम से इन चुनौतियों से निपटने का अनुरोध किया है, जो टिकाऊ, किफायती और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी लाभ प्रदान करने में सक्षम है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई मंत्रियों ने एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अन्नामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि परमाणु अप्रसार उनकी सरकार के दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य बना हुआ है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भविष्य में किसी भी समझौते के अंतर्गत ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने का मार्ग बताया और यह दावा किया कि कोई भी नया समझौता मौलिक रूप से अलग होगा। ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए अमरीकी हमलों का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ये ठिकाने पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे और उन पर कड़ी निगरानी की जा रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर अमरीकी सैनिकों को निशाना बनाया गया तो तुरंत जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति की ये टिप्पणियां ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए जारी राजनयिक प्रयासों के बीच आई। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलते तक सेंसेक्स 289 अंक फिसलकर 74,071 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक लुढ़ककर 23,317 पर था। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव न करते हुए

0: से 5.2% पर यथावत रखा। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर और विश्व पर्यावरण दिवस आज मनाया जा रहा है। सरकार ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। FM बैंड पर ही आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है।

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: अगला कार्यक्रम सुनो ली सभी सखियन का लता सखी के प्यार भरा नमस्कार। कहो सखी का हाल चाल है? सब हम समझी से सब ठीक है हुए। ये गर्मी के मौसम में सब सखी तनिक ठंडी ठंडी बयार के खातिर बगिया में बैठी हुई हैं और आम के ठंडी ठंडी हवा के साथे साथे खट्टी मीठी स्वाद भी लेते हैं चटनी के। लेकिन सखी देखो आज विश्व पर्यावरण दिवस है, सखियन का सचेत रहे के चाहिए, खास करके अपने सबका विशेष करके साफ सफाई रखे के चाहिए, अपने बहन का चाहिए कि पर्यावरण बचाए के रखें, पेड़ पालो जरूर लगावें। और जैसे कि हम सखी के जन्मदिन हुए, विवाह के सालगिरह हुए या फिर कोनो भी अवसर हुए तो उनका तोहफा में एक वृक्ष जरूर दे के चाहिए, भेंट करे के चाहिए, उपहार में पौधा दे के चाहिए। ऐसे ये होते ना कि अपन वातावरण भी स्वच्छ होते और हरा भरा रहते हैं। आँख का देखो हरियाली कितना फायदेमंद होते है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून यानी कि आज मनावा जाता है। पर्यावरण के संरक्षण के खातिर पूरे विश्व में मनावा जाता है। वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर जागृत लावे के बदे यह दिवस मनावा जाता है। और देखो बहनी हम तो ये कहे थे अपन बहने सजग रहिए, सचेत रहिए, अपन अगल बगल अपन घर द्वार स्वच्छ रखिए तो अपन पर्यावरण स्वच्छ रहबे करे। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम, प्रकृति के सृष्ट के मूल धरोहर है, आइए इस अवसर पर पर्यावरण के संवर्धन और संरक्षण का संकल्प ले। देखा सखी आज हम आप सबके बदे लेके आए हैं एक बदकही जो उनकी ओ भी है आकाशवाणी के 90 वर्ष के अंतर्गत ग्राम मुमताज नगर की महिला श्रोता बहनी से बातचीत किए हैं अपने उष्मा वर्मा बहनी। तो चलो सुना जाएगा।
2: इस समय आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे करने जा रहा है 8 जून को और इस उपलक्ष्य में हम लोग गांव में आए हुए हैं, मुमताज नगर में इस समय हैं और हमारी बहुत सारी बहनें यहां इकट्ठा हैं, बच्चे भी इकट्ठा हैं और बहुत सारे लोग यहां पर इकट्ठा हैं।
3: आप अपना पहले नाम बताएं।
2: गायत्री मौर्या जी हमारे साथ हैं।
3: गायत्री जी सबसे पहले तो हमें यही बताएं कि रेडियो आप सुनती हैं कि नहीं सुनती हैं?
2: सुनती हैं। और पहले सुनती थी कि नहीं सुनती थी? कब से आपने रेडियो सुनना शुरू
4: किया?
3: अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कौन सा कार्यक्रम ऐसा है जो आप सुनती हैं आपको बहुत अच्छा लगता हो? कोई एक चीज, चाहे महिलाओं का, बच्चों का, कोई तो सुनती होंगी? नहीं, कुछ तो गाना तो सुनती होंगी ना।
4: हाँ, महिलाओं को कोनो चीज आवाज कार्यक्रम अच्छा लगा था सुनने में
3: जी। और देखिए हम फिर एक बार कहेंगे कि जो महिलाओं का कार्यक्रम आता है उसे आप जरूर सुने, इसलिए सुने कि उसमें घरेलू चीजें तो बताई ही जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिन पर हम बात नहीं कर पाते हैं किसी से ना, लेकिन जब वो उसको सुनते हैं तो हमको लगता है अच्छा यही समस्या थी, इसको ऐसे हैंडल किया जा सकता है, हमें बिना किसी से कोई सलाह लिए हमें अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है। तो हम आपसे ये कहेंगे आकाशवाणी ने, रेडियो ने अपना 90 साल ऐसे नहीं पूरा किया, बहुत सारे आप जैसे लोग थे जो सुना करते थे और आज भी सुन रहे हैं और तब हम लोग 90 साल पूरा किए हैं। तो हम ये कहेंगे कि आप जितना सुनती थी उससे ज्यादा जो है आकाशवाणी को सुनिए और तब आपको लगेगा कि हाँ हम क्या चीज मिस कर रहे थे, बीच में अगर आपका गैप हुआ हो तो आप उसे जरूर सुनिए। श्रोताओं अब हमसे जुड़ चुकी हैं, हमारे पास में बैठी हुई हैं बहुत प्यारी सी, मैं इनका पहले नाम पूछूं।
5: रोशनी शर्मा
3: जी के हमारे साथ हैं। और रोशनी शर्मा जी हम ये पूछना चाहेंगे कि आपने कभी रेडियो सुना है कि नहीं सुना है?
5: बहुत पहले सुना है, जब हमारे पास स्मार्टफोन नहीं होते थे
3: जी जी,
5: तब हम रेडियो का ही सहारा लेते थे और करंट अफेयर्स वगैरह
3: जी। बहुत अच्छी बात है। एक चीज और कि आपने कहा कि जब ये मोबाइल नहीं हुआ करते थे तब आप रेडियो सुना करती थी, मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि देखिए 101.9 MHz पर आकाशवाणी अयोध्या को आप ट्यून कर सकती हैं और आप कहीं भी बैठ करके न्यूज ऑन AIR ऐप लोड कर लीजिए, आप देश के किसी भी कोने में रहेंगे और आप वहां आकाशवाणी

0: अयोध्या को सर्च करेंगे आपको तुरंत मिलेगा और बहुत ही क्लियरली मिलेगा। ये कि आपने अब रेडियो बंद कर दिया है, मैं कहूंगी कि बिल्कुल मोबाइल तो आपके पास होगा ना, आप वादा करिए हमारे श्रोताओं से कि आप रेडियो जो है मोबाइल पर सुनेंगे।
1: हाँ बिल्कुल सुनेंगे।
0: हाँ और बिल्कुल आप उस ऐप को गूगल पे जाके या प्ले स्टोर पे जाकर
1: डाउनलोड करूंगी और सुनूंगी।
0: बिल्कुल श्रोताओं देखिए, जैसा कि हमारी ये बहन बता रही हैं कि इनको जीएस में फायदा हुआ, तो ये आकाशवाणी है ना जो रेडियो है, ये हर उम्र के लोगों के लिए है और हर चीज की जानकारी देता है। आप जिस भी उम्र के हों आप इस कार्यक्रम को सुने, अगर बच्चे हैं तो बच्चे अपना कार्यक्रम सुने, युवा हैं तो युवा अपना कार्यक्रम सुने, क्योंकि हमारे यहाँ से युवाणी भी होता है, बाल जगत भी होता है और जो नारी जगत होता है इसमें महिलाओं से जुड़ी बहुत सारी बातें की जाती हैं। तो आप इसको जरूर सुने और फिर हमें बताएं कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं। सुखमनो हमारे बीच में बैठी हुई हैं, ये आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता भी हैं और मुझे लगता है कि भाई जिस तरह इनके हाव भाव हैं, जितना अच्छा ये हम सबको बता रही हैं, उससे लगता है कि ये हमारा आकाशवाणी केंद्र अयोध्या जरूर सुनती होंगी। मैम अपना नाम बताइए पहले तो।
2: कौशल्या देवी।
0: कौशल्या जी, कौशल्या जी आप रेडियो सुनती हैं?
2: जी मैम।
0: और तो क्या क्या उसमें आपको अच्छा लगता है?
2: मैम पहली बात तो मुझे बच्चों का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। तो महिलाओं के बारे में जो खान पान के बारे में हम किसी से नहीं कह सकते हैं तो वो जानकारी मिल जाती है। पेड़ पौधों के बारे में जो मतलब बताया जाता है,
0: अच्छा, जी।
2: मतलब खेती बाड़ी के बारे में बताया जाता है कि हम पौधा कैसे लगाए, हम पौधा कैसे सींचे, हम पौधा मतलब क्या दवा डाले, बहुत ढेर सारी सुविधाएं प्राप्त होती है। और जो समाचार सुनते हैं तो देश के सारे मतलब बातों को उनको ज्ञान होता है कि आज ना हुआ, आज वहाँ ये घटना हुआ, तो ये सब का जानकारी मुझे प्राप्त होती है या सरकार की कोई स्कीम है।
0: और आप देखिए आंगनबाड़ी जुड़ी है तो आपको अपनी स्कीम की भी जानकारी,
2: मुझे अपनी स्कीम की ढेर सारी जानकारियाँ मिलती है।
0: बहुत अच्छा। और देखिए अब तो पहले हम लोग रेडियो इधर उधर लेके चलते थे, अब तो मोबाइल में सब कुछ आ गया है ना, तो आप कहाँ सुनती हैं, रेडियो में सुनती हैं या मोबाइल में सुनती हैं?
2: मैं मैडम रेडियो मतलब जिसे मोबाइल में बना है, रेडियो मेरा छोटी मोबाइल है।
0: अच्छा।
2: उसमें रेडियो आता है।
0: अच्छा।
2: इसीलिए मैं रखी हूँ उसको।
0: बहुत
2: रेडियो सुनने के लिए हमारे फ्रेंड है वो दुकान पे ले जाते, रेडियो में ही लगे रहते हैं।
0: कौशल्या बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आप जो है हमारा कार्यक्रम सुनती हैं और इसको ऐसे ही सुनते रहिए। और चूंकि आप उससे जुड़ी हुई हैं तो जो महिलाएं आपके पास आती हैं आप उनको जरूर बताएं कि जो जानकारी वो कहीं से इधर उधर से पूछती है ना, उससे अच्छा है कि वो आकाशवाणी से बात करें।
2: हाँ, सही।
0: तो इधर उधर पूछने से अच्छा है हम एक विश्वसनीय जगह से कि जहां आपको पक्की जानकारी दी जाएगी।
2: हाँ, क्योंकि ये यूट्यूब है तो झूठी चीज बताते हैं, लेकिन रेडियो जो है सारी सच्ची चीज बताता
0: है। सच्ची चीज बताता है। तो आप जो आपके पास हमारी बहनें आएंगी, जो भी पुरुष भी आते हैं तो उनको भी आप इसकी तरफ
2: महीने में बटोरते हैं।
0: अच्छा।
2: तो उसमें जानकारी देते हैं कि आप रेडियो की बात मानिए और रेडियो सुनिए थोड़ी देर।
0: बिल्कुल।
2: आप उस पर थोड़ा गौर करिए, अपने बच्चों को गौर कराइए, ये यूट्यूब छुड़ाइए अपने बच्चों से। जो रेडियो पाता है वो सारी अच्छी चीजें आती है।
0: अच्छी चीजें आती है। बहुत अच्छा। और उसको बहुत जगह से हम लोग ये जानकारी करते हैं कि ये कोई ऐसी बात हम ना बोले कि जो हमारी जो जनता सुन रही है उसके हित में ना। कौशल्या जी आप हमारा कार्यक्रम सुनती हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए। हम इस समय मुमताज नगर में हैं और आकाशवाणी गांव में लोगों के बीच में है और हम बात करना चाहते हैं, हमारी बहन हमारे सामने बैठी हैं, इनसे पूछते हैं कि ये रेडियो सुनती हैं कि नहीं सबसे पहले। लेकिन आप ये बताइए आपका नाम क्या है?
3: सुनीता।
0: सुनीता जी, सुनीता जी आप रेडियो सुनती हैं कि नहीं सुनती?
3: पहले सुना था, बहुत पहले।
0: अच्छा।
3: तो जब से दुकान खोल दिए तब से टाइम नहीं मिला।
0: हाँ
3: अचानक दुकान चलाई थे।
0: अच्छा।
3: तो यही लिए हमें टाइम नहीं रहता है कि सुने का, जैसे सुने टाइम पाए तो मोबाइल नहीं ना पास में।
0: जी। आकाशवाणी पे एक से एक कार्यक्रम आता है, आप उसमें डॉक्टर आते हैं और जो खेती किसानी से संबंधित समस्या होती है उसको बताने के लिए लोग आते हैं, तो आप उसमें कॉल कर सकती हैं, फोन मिला सकती हैं, उस पर बात कर सकती हैं और उस पर अपनी समस्या बता सकती हैं।
3: जी।
0: कुछ घरेलू समस्याएं भी हो तो आप उसको जब किसी से न कर पाए तो आकाशवाणी में तो कोई देख नहीं रहा है,
3: नहीं
0: आवाज सुन नहीं दे रही है,
3: नहीं।
0: तो आप वहाँ पूछ सकती हैं।
3: जी।
0: तो मैं आपसे कहूंगी कि आप जो है आकाशवाणी को अब आज के बाद जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको मोबाइल खाली मिले, आप हमारा कार्यक्रम जरूर सुनेंगे।
3: जी जी।
0: है ना?
3: जी।
0: तो सुनेंगी?
3: हाँ जी सुनेंगी, क्यों नहीं सुनेंगे।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या है?
4: मैनाज बानो।
0: मैनाज जी आप रेडियो सुनती हैं या सुनती थी?
4: पहले सुनते थे।
0: पहले सुनती थी।
4: हाँ।
0: क्या कार्यक्रम उस समय सुनती थी जो आपको अच्छा लगता था?
4: बाल जगत तो अच्छा लगता था।
0: हाँ।
4: और अब जो हमारे लोग यहाँ मोबाइल नहीं है तो हम लोग भूल गए, ट्रांजिस्टर था पहले।
0: हाँ।
2: जब से मोबाइल

0: का जो ट्रांजिस्टर भी बंद हो गया,
1: बंद हो गया था। लेकिन देखिए आप जानती हैं जब ट्रांजिस्टर बंद हुआ तो मोबाइल आ गया, लेकिन मोबाइल पे आप केवल छूने की देरी है ना। एक होता है न्यूज ऑन AIR ऐप होता है, बस उसको आप लोड करेंगी और जैसे उससे बोल के भी कह सकती हैं कि आकाशवाणी अयोध्या, और जैसे आप कहेंगी वैसे ही वो तुरंत आ जाएगा, खुल जाएगा, और आप उसको छुएंगे तुरंत वो जो कार्यक्रम आता रहेगा वो कार्यक्रम आपके मोबाइल पर बजने लगेगा। ट्रांजिस्टर है आपके बीच में, लेकिन पहले से जैसे दुनिया खूब बदली है ना, वैसे ही सब कुछ बदल गया है और सब कुछ मोबाइल पे सिमट आया है। तो हम ये कहेंगे कि जब भी आपको खाली समय मिले आप रेडियो को क्लिक करिए और रेडियो को सुनिए, तो क्योंकि रेडियो पे जो चीजें आती हैं वो हमको इधर उधर नहीं मिल सकती है। रेडियो मतलब रेडियो, और हम 90 साल पूरा करने जा रहे हैं, 90 साल हो गया रेडियो को, तो 8 जून को 90 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि हम लोग उसको सुने हुए हैं, देखे हुए हैं अपने जमाने में, तो ये बहुत खुशी की बात है। और उस रेडियो की आवाज को आप बिल्कुल दबने ना दीजिए, उसको मोबाइल पर सुनिए ताकि आप उससे लाभ उठा पाइए। वादा है आपका?
2: वादा है
1: जी, बिल्कुल सुनिए। हमारे बीच में हमारी बहन उपस्थित हैं, हम इनसे पूछेंगे, पहले अपना नाम बता दीजिए।
3: दशरथा देवी।
1: दशरथा जी, आप रेडियो कब सुनती थी?
3: ये बहुत पहले मायके छोटी से।
1: अच्छा, तो आपके मायके में रेडियो था?
3: बाबू रखे थे।
1: तो क्यों ऐसा हुआ कि आपने रेडियो सुनना छोड़ा?
3: अरे रहबे ना कि खत्म हो गया।
1: अच्छा,
3: जैसे बहुना शादी हो गई।
1: हाँ,
3: तो कहाँ सुनाई,
1: तो यहाँ आ गई तो सुनना
3: बंद। आपकी बच्ची का रहना है।
1: अच्छा,
3: रहना है।
1: हाँ, अच्छा पहले
3: मोबाइल।
1: अच्छा, जब यहाँ आप शादी होके आप आई तो यहाँ रेडियो नहीं था, क्योंकि रेडियो बिजली तो चलता नहीं था, बैटरी चलता था। अच्छा, यहाँ नहीं था। अब आप सुन पाती हैं कि नहीं?
3: मोबाइल में मिल गया।
1: अच्छा,
3: माझी वाला लड़का दूसरी सावत है, खोलत है।
1: अच्छा,
3: आकाशवाणी लगाओ तो
1: हाँ। और देखिए आकाशवाणी में जो आपको जानकारी मिलेगी वो बहुत विश्वसनीय जानकारी रहेगी। जैसे और सारे चैनल चलते हैं, बहुत सारे लोग अपनी खबरें बताते रहते हैं, तो वो पक्की है कि नहीं पक्की है इसका कोई भरोसा नहीं है ना। लेकिन जो रेडियो आपको बताएगा वो पक्के भरोसे के साथ छांट बीन करके तभी बताएगा, है ना। तो वो जो इस पे जानकारी दी जाएगी वो विश्वास रहेगा उस पर। और देखिए जो हमारी बहनों का जो कार्यक्रम होता है वो हर दिन बदल बदल कर आता है, कि जैसे अगर मंगलवार सुनेंगी, बृहस्पतिवार सुनेंगी, शनिवार सुनेंगी, तो 3 दिन जो है वो कार्यक्रम नारी जगत के नाम से आएगा। और जब सोमवार सुनेंगी, बुधवार सुनेंगी, है ना, शुक्रवार को सुनेंगी, तो अंगना आएगा, अवधी भाषा में, हम लोगों की बोलचाल के भाषा में आएगा। तो आप उसको सुनिए और तब आपको लगेगा कि हाँ ये और चीजों से कैसे अलग। तो अब आप सुनेंगी रेडियो, हम ये माने, क्योंकि देखिए मोबाइल पर इसको डाउनलोड करना, न्यूज ऑन AIR कर लोड करिए और उस पर आकाशवाणी अयोध्या को जैसे खोजेंगे, आप अपने बच्चे से कहिएगा जैसे खोजेंगे वो तुरंत आ जाता है, बहुत ज्यादा खोजने बीनने की जरूरत नहीं।
3: छोटी वाली मोबाइल में वैसे आ जाए।
1: हाँ, वैसे ही आ जाता है।
3: जी वाली है।
1: जी,
3: बोलना पड़ेगा तभी आएगा।
1: जी, तो आपके पास छोटी मोबाइल है कि बड़ी मोबाइल है?
3: छोटी बच्चे के पास बड़ी।
1: अच्छा, हम लोग इसीलिए आपके बीच में आए हैं कि आप रेडियो को सुनिए और तब हमें बताइए कि आपको कार्यक्रम कैसा लगता है।
3: अच्छा लगता है।
1: चलिए
3: 10 बजे तक का तो आता है।
1: हाँ, 11 बजे तक हो गया है, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग रेडियो सुनेंगे, ये आप सब लोग हमसे वादा करिए।
4: सुनेंगे तो
1: जी,
4: तो जब ज्ञान रहेगा तभी तो आगे बढ़ेगा।
5: देखिए सर, कितनी बढ़िया से बातचीत भई बहन के बीच में, और उस्मा वर्मा बहन ने कितनी बढ़िया से सब सखियन से बात कही, कितनी सब जो महिला बने रहे कितनी उत्सुक रही। और देखो बहन, ये बारी आया जाए सखियन के बीच में गीत गौनई के, तो हम गौनई लेके आए हैं नए काम में काहे का देरी, मालनी अवस्थी और सखियन के आवाज में गौनई सुना जाए। बोल है सैया मिले लड़कियां, लेकिन कुछ संदेश के बाद अब फिर मिलित है।
6: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
7: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
8: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
9: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
10: RBI कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
11: सुना थे?

0: जी सुनते हो कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
1: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुनते अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
0: हाँ जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
1: और व्हाट्सएप नंबर 8303921911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
2: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
3: देखो बनी हम बढ़िया से गीत सुनी अपने बहन के बीच में लेके आए हैं मालनी अवस्थी और सखियन के आवाज में।

0: देखो भैया गौनई बहनी तो सुना जाए अभी, लेकिन है कि हम लेके आए हैं काव्य पाठ। एकर विषय है पर्यावरण पर आधारित है ही, और कवित्री हैं अंकिता तिवारी, तो चलो सुना जाए।
1: इसकी थीम है प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए। दोस्तों हर वर्ष हम सभी पर्यावरण दिवस मनाते हैं, किंतु क्या हमने ये समझा कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? इस दिवस को मनाने की सफलता हमें तब प्राप्त होगी जब इस उद्देश्य को हम प्राप्त कर लेंगे। आइए कुछ कविताओं के माध्यम से मैं आपसे जुड़ने का चर्चा करने का प्रयास करती हूँ। संपोषणीय जीवन, एक ऐसा जीवन जिसमें हम अपनी प्राकृतिक संसाधनों को उतना ही उपयोग करें जिससे भविष्य में उनके समाप्त होने की संभावना कम रहे। संपोषणीय जीवन का यही सार्वभौमिक पर्याय है, व्यय करो उतना ही जितनी की आय है। संसाधनों का निशेषण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा, विनाश का भयावह मंजर धीरे धीरे गढ़ रहा। अपक्षय की प्रक्रिया चरमोत्कर्ष पर जा रही, संसाधनों की उम्र में कमी आ रही। चलिए जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करें, प्राकृतिक पदार्थों का थोड़ा कम विघटन करें। वैश्विक तपन खुलकर पांव पसार रहा, ओजोन परत का क्षरण भी रुकने से कतरा रहा। कार्य कुशलता की बारीकियां समझ निपुणता लानी होगी। मनोरंजन के साधनों में विश्वसनीयता घटानी होगी। प्रकाश के उपकरण में बदलाव लाएं, बल्ब को हटाकर एलईडी चलाएं। निजी वाहनों की आदत थोड़ी छुड़ाकर देखें, कभी वाहनों की जगह खुद को दौड़ाकर देखें। अध्ययन एवं खेल को रफ्तार पकड़ानी होगी। पुनर्चक्रण की विधि विस्तृत पैमाने पर अपनानी होगी। आज की अनिवार्यता क्या है समझते चले हम, किंतु कल की आवश्यकता का ध्यान भी रखते चले हम। यही है संपोषणीय जीवन, आइए मिलकर जिया जाए। वर्तमान की दरकार को गंभीरता से लिया जाए। हमारी पृथ्वी यदि सुरक्षित रहेगी, स्वच्छ रहेगी, स्वस्थ रहेगी, तो ही हमारा जीवन स्वस्थ रह सकता है।

आओ मिलकर धरा बचाएं। जनमानस की हस्ती गलियां, खेतों में लहराती फलियां, पुलकित धरती की हरियाली देखें, मानो जीवन की खुशहाली देखें। चलकर हम सब वृक्ष लगाएं, आओ मिलकर धरा बचाएं। प्रकृति का सौंदर्य निखारें, चमकाएं भूजल के तारे, शुद्ध हवा और शुद्ध जल हो, सुख समृद्धि भरा कल हो, कोना कोना महका कर प्रदूषण का अस्तित्व मिटाएं, आओ मिलकर धरा बचाएं। बिखरे रंग इंद्रधनुष के, गूंजे वक्तव्य महापुरुष के, वसुंधरा की चमकती लाली हो, भारत माँ की छवि मतवाली हो, छाया से सराबोर हो, पक्षी आसमान में गाएं, आओ मिलकर धरा बचाएं। दोस्तों, पेड़ की कटाई आज बहुत ही जोरों से है। हम फर्नीचर के लिए पेड़ की कटाई तो कर देते हैं, किंतु हम ये नहीं सोच पाते कि हमारे भविष्य में आने वाले समय में हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पेड़ है तो हम हैं। आओ पेड़ लगाएं हम। जल रही है वसुंधरा, दिशाओं में आक्रोश है, रूठी है जल की शीतलता, मारुत का खाली कोश है, पूछ रही मानो तुमसे ये प्रकृति हुई बेचैन सी, हो जैसे व्याकुल बैठी छत पर कोई लड़की रैन सी। क्यों काट दिए बरगद पीपल, क्यों इतना अत्याचार किया, तुम मानो ने खुद ही मिलकर ये मौत चाल तैयार किया। अपनी इन करतूतों पर अब थोड़ा तो शर्माए हम, आओ पेड़ लगाए हम। सूखे हैं नल नदी सरोवर सब, उमस चरम पर तनी हुई, दिनकर भी क्रोधित है देखो, तारों से भी ठनी हुई। ये वृक्ष धरा के जीवन है, तुम इनको मत ललकारो, काटो मत इनकी गर्दन, बिन मौत ने इनको मारो, देखो उन पशु पक्षियों को कुछ दया धर्म का काम करो, उनके जीने और खाने का तुम तनिक तो इंतजाम करो। प्रकृति की गोद में जन्मे हैं, आतंक ना मचाएं हम, आओ पेड़ लगाएं हम। जीवन का श्रृंगार पेड़ है, मानव का आधार पेड़ है, काट दिया जो तुमने इसको, अपना मुकुट तुम काटोगे, खोकर अपना अस्तित्व बताओ, किस कोने में जाओगे। तन जो काटा तुमने तनकर, गिर गए घोंसले तिड़ तिड़ कर, प्रकृति कितना देती है, क्या इसका नहीं है भान तुम्हें। मत भूलो तुम नश्वर हो, फिर किस बल का अभिमान तुम्हें। अरे अब फूलो प्रतिघात, क्यों करते हो वृक्षों पर आघात, जिम्मेदार बनो और पेड़ लगाओ, चलो आओ पर्यावरण बचाओ। साथियों, पर्यावरण का हमारे जीवन से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, या यूं कहें पर्यावरण हमारे जीवन की आधारशिला है। पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो ही हमारा जीवन स्वस्थ रह सकता है। आज कल की इस व्यस्तता में, इस भाग दौड़ में, शायद हम कहीं ना कहीं अपना जीवन जीना भूल गए हैं। आइए आपको एक कविता के माध्यम से जोड़ती हूँ। जीना भूल गए हैं हम, कई हिस्से में बट गए हैं, खुद को क्या क्या सिखा रहे हैं। कई हिस्से में बट गए हैं, खुद को क्या क्या सिखा रहे हैं, ये रिश्तों की जिम्मेदारी साहब हम किश्तों में निभा रहे हैं। आठों पहर है दौड़ भाग, आठों पहर है दौड़ भाग, झूले सा झूल गए हैं हम, ना जाने क्या पाने में जीना भूल गए हैं हम। एक गुब्बारे के खातिर हम जब दिन भर रोते थे, एक हमारा बचपना था, एक छोटे से गुब्बारे के लिए हम सारा दिन रोते थे कि हमको चाहिए। एक गुब्बारे के खातिर हम जब दिन भर रोते थे, ये बात है उस दौर की जब हम बच्चे थे छोटे थे। अब सब कहते हैं हम बड़े हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए, लेकर बस्ता खुद से बड़ा, लेकर बस्ता खुद से बड़ा, जब से स्कूल गए हैं हम, ना जाने क्या पाने में जीना भूल गए हैं हम। जिस दिन बच्चे की पीठ पर वो बड़ा सा बस्ता लाद दिया जाता है, उसी दिन से उसका बचपना समाप्त हो जाता है। इस भागते हुए जीवन में रफ्तार की राहें ठानी है, जीवन तो तेजी से चल ही रहा है, लेकिन हम शायद उससे ज्यादा तेजी से चलने का प्रयास कर रहे हैं।

0: भागते हुए जीवन में रफ्तार की राहें ठानी है, मंजिल का कुछ भी पता नहीं, बस सफर से खींचातानी है। ये सेल्फी वाली मुस्कान भला कब तक ठहरेगी चेहरों पर? आजकल हम जब मोबाइल से फोटो खींचते हैं तो हम अनायास मुस्कुराने का प्रयास करते हैं, और शायद ये मुस्कुराहट हमारी नकली होती है। ये सेल्फी वाली मुस्कान भला कब तक ठहरेगी चेहरों पर? तूफान उठा मन के भीतर, हम तैर रहे हैं लहरों पर, खाली अंतर मन की शाम लिए। पहले गांव में एक शाम होती थी जब दादी, चाची, चाचा सब इकट्ठे होते थे। अभी तो कब दोपहर हुई, कब सुबह हुई, कब शाम हुई, कुछ नहीं पता चलता। खाली अंतर मन की शाम लिए थक कर फूल गए हैं हम, ना जाने क्या पाने में जीना भूल गए हैं हम, ना जाने क्या पाने में जीना भूल गए हैं हम।
1: देखा सके कितनी बढ़िया ये काव्य पाठ रहा अंकिता तिवारी बहनी, कितना बढ़िया से लाइन बाय लाइन सब बहन का एकदम से आगाह की। लेकिन मैं देखो धूप का महीना है ना, सब सखियाँ धूप में काम कर रही थी तो कभी कभी उनका सन बर्न हो जाता है, तो इसे बचे खातिर उनका एलोवेरा जेल धूप से जो उनकी त्वचा का झुलस जाए ना तो बहुत बढ़िया फायदा करत है। और देखो दही और बेसन के पैक लगाए से बढ़िया से चेहरा में चमक आ जाता है, और जहाँ पे लालिमा रहा था ना उनका बहुत ठंडक मिलत है। लेकिन मेरी जो घड़ी है ना कुछ ऐसा इशारा करत है कि अगले कार्यक्रम में नेक नेक बात बत कही और गीत संगीत के साथ फिर हुई मुलाकात। तब तक के लिए सब सखी लता सखी का देवन मत नमस्कार।
2: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
3: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
2: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
3: जी हाँ, और वो है योग।
2: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
3: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
2: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
3: मन को पद्मासन की शांति दीजिए,
2: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
3: योग करिए, निरोग रहिए।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
4: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

अभी बहने सुन रही थी अपना कार्यक्रम अंगना एफएम बैंड पर ही आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रमों को आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर और आकाशवाणी.gov.in पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी सुन रहे हैं। दिन के 3 बज चुके हैं, आइए आपको ले चलते हैं अपने मुंबई केंद्र, जहां आपसे लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों को।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, जब हम किसी से मिलते या बात करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में, उसकी सोच के बारे में पता करने के लिए एक छोटी सी मुलाकात ही काफी होती है। वो एक छोटी सी मुलाकात अक्सर ताउम्र के लिए हमें एक प्यारा सा दोस्त दे जाती है। बेपरवाह अल्हड़ सवालों और जवाबों से परे होती है ये मुलाकात। कई बार तो रोज रोज मिलने वालों से वो दिल की बात नहीं हो पाती जो एक छोटी सी मुलाकात से बने दोस्त से हो जाती है। इन छोटी छोटी मुलाकातों से ही रिश्ते उम्र दराज होते हैं। तो हाँ, मुलाकातों का सिलसिला चलते रहना चाहिए और हर मुलाकात के लम्हों की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी मुलाकातों की यादों से पूरा जीवन खुशबू से भर जाता है। तभी तो हमें भी रहता है ना इस छोटी सी मुलाकात का इंतजार, जो हेलो सहेली के माध्यम से हमें हमारी सखियों से मिलवाती है और दे जाती है यादों में सहेजने वाले ढेर सारे खूबसूरत पल। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर।
1: हेलो।
0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: मैं भावना बोल रही हूँ, आदमपुर बिहार से, हरियाणा से।
0: अच्छा, हरियाणा से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैम मैं घर पे ही अपना बुटीक है मेरा, मैं सिलाई करती हूँ।
0: यानी आपका बढ़िया कपड़ों का है ना?
1: हाँ जी।
0: तो इस समय अच्छा चल रहा है?
1: तो हाँ जी।
0: आप महिलाओं के कपड़े केवल बनाती हैं या सब मिक्स?
1: हाँ जी, महिलाओं के बनाती हूँ मैम, बच्चों के और महिलाओं के, सारी गारमेंट्स बनाती हूँ मैम।
0: बहुत अच्छी बात है, आप अपना खुद का काम कर रही हैं। और बताइए आप आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं सुनना चाहूंगी आज तेरा मेरा साथ है फिल्म का, तेरा मेरा साथ है।
0: बहुत प्यारा। तो चलिए सुनवाते हैं आपको ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रही हैं आप और कहाँ से?
1: मैं सिंह बोल रहे हैं, मनकापुर गोंडा उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं आपसे।
0: जी अच्छा, तो आप बताइए अब कि आप क्या कर रही हैं?
1: मैम हम पढ़ाई तो पूरी कर चुके हैं, ITI कर रहे हैं और मैम घर का काम करते हैं और आपका प्रोग्राम सुनते हैं। रेडियो सुनने का शौक बहुत ज्यादा है।
0: अरे वाह, बहुत ही अच्छा शौक है आपका। और तो आप जो पढ़ाई कर रही हैं उसमें आपको अच्छा पूरा इंटरेस्ट आता है, पूरी दिलचस्पी रहती है उसमें?
1: हाँ मैम रहती है, लेकिन इस समय गर्मी ज्यादा हो रहा है मैम, तो कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा, बस घर पे ही अपना तैयारी कर रहे हैं।
0: तो आपको मिल जाता है समय रेडियो सुनने का?
1: मैम मिल जाता है। मैम आज बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे तो आज आके मेरा कॉल लग गया, मेरा इंतजार खत्म हो गया। बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: बधाई हो आपको बहुत ज्यादा, और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और साथ ही रेडियो भी सुनते रहिए। और आप अपने पसंद का कोई गीत बताइए जो आप सुनना चाहती हैं।
1: मैम मूवी का नाम है इज्जत और गाने की बोल है क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फिक्र छिपी रहे।
0: अच्छा, अरे वाह, बड़ी अच्छा गाना है।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन बोल रहा है?
1: बरगढ़ जिला उड़ीसा से सन प्रभाकर बोल रही हूँ।
0: अरे वाह, उड़ीसा से बोल रही हैं आप।

0: तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: जी मैं तो घर में हूँ, अभी तो शादी नहीं हुई और घर का कामकाज करती हूँ और सभी कार्यक्रम सुनती हूँ आकाशवाणी के, सभी केंद्रों के कार्यक्रम सुनती हूँ।
0: पढ़ाई आपने करी है? पढ़ाई करती हैं?
1: हाँ, पढ़ाई तो खत्म है, कब से मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है।
0: अच्छा, तो बताइए आपने क्या किया है?
1: मैं 10वीं पास हूँ जी।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी अभी अभी तो हमारे जो सिंगर है सुमन कल्याणपुर जी, उनका निधन हो गया है, तो उनकी याद में एक गाना सुनेंगे। उनकी आवाज में तो जो भी उनके जो भी फिल्में हैं, मुझे तो याद नहीं फिल्मों के नाम, तो एक बढ़िया सा गाना उनकी याद में दे दीजिए।
0: बिल्कुल, मैं सुमन कल्याणपुर जी का ही मैं आपको एक गीत सुनवाती हूँ।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप पहले तो अपना नाम बताइए और फिर अपने शहर का नाम।
1: मैं इंदौर से ललिता मंडली।
0: अच्छा ललिता जी, इंदौर से बोल रही हैं, तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं अभी हाउसवाइफ हूँ
0: जी। तो अभी इस समय गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो आप क्या करती हैं गर्मियों से थोड़ा सा राहत पाने के लिए?
1: गर्मियों से राहत पाने के लिए अपने पारंपरिक तरीके, नींबू शरबत।
0: बढ़िया।
1: और दिन में धूप में तो निकलना,
0: ये तो बहुत अच्छा।
1: ज्यादा जरूरत है धूप में निकलना तो फिर डॉक्टर जाना।
0: हाँ, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में हम पति पत्नी और दो बच्चे हैं मेरे।
0: बच्चे छोटे हैं कि बड़े? बच्चे छोटे हैं आपके?
1: बड़े हो गए।
0: बड़े हैं, चलो तब सही है, परेशान नहीं करते होंगे आपको ज्यादा।
1: बड़े हो गए तो ज्यादा परेशान करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, ऐसा है। ऐसा भी होता है कि छोटे बच्चों के पीछे पीछे भागो और बड़े बच्चों के भी पीछे पीछे भागो। जी बिल्कुल। तो आप
1: से बात करके बहुत आनंद आ रहा है, मैम आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: अच्छा जी, तो आप बताइए कि आप जैसे कि अपने जो बच्चे हैं उनको आप जो गर्मियों के दिनों में बढ़िया बढ़िया नींबू के शरबत और बढ़िया बढ़िया चीजें बना बना के देती हैं?
1: देती हूँ, एक ऑफिस आता है तो उससे थोड़ा कम समय दे पाते हैं, वो सुबह 9 बजे निकल जाता है।
0: अच्छा,
1: तो रात को आता है 9 बजे। छोटा वाला रहता है तो हम दोनों माँ बेटे मजे करते हैं घर में।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। क्या नहीं, क्या अच्छा टाइम अपना निकलता होगा आपका। तो आप बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं अनिल कपूर की फिल्म है कसम, उसका शीर्षक गीत सुनना चाहती हूँ। कसम क्या होती है, कसम क्या होती है, जो तोड़ी ना जाए, जो छोड़ी ना जाए।
0: चलिए ठीक है, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप बताइए कौन बोल रही है और कौन से शहर से?
1: मैं रेखा वर्मा बोल रही हूँ, मैं उज्जैन से।
0: अच्छा, रेखा जी बोल रही है उज्जैन से। तो बताइए रेखा जी, आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, एक लड़की है मेरी, एक बेटा है, अभी बेटे की शादी हुई है।
0: अरे वाह, यानी आप भी सासू माँ बन चुकी है ना?
1: जी, मैं अभी 2-3 महीने हुए।
0: अरे वाह, तो आप कैसी सासू माँ है, कड़क वाली की अच्छी वाली?
1: नहीं नहीं नहीं
0: नहीं नहीं, आप अच्छी वाली होंगी, आपकी आवाज से मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है दिन में, मतलब अपने लिए जो समय बचता है उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मैम, हम लोगों को तो घूमना अच्छा लगता है, और शाम की टाइम हम रोज घूमने जाते हैं, मेरे साथ वाली फ्रेंड है बराबरी की।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हम रोज मतलब खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं साथ में घूमने के लिए।
0: चलिए, इतनी अच्छी बात है ना, क्योंकि अपने दोस्त का जब साथ मिल जाता है ना, तो समझिए फिर तो आप थोड़ा वॉक भी हो जाती है इस बहाने आपकी, और आपकी बातें भी हो जाती हैं, तो आपका जो तनाव भी थोड़ा बहुत रहता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। तो बहुत बहुत ही अच्छा आप करती हैं जो ये वॉक करती हैं, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वॉक करती हैं।
1: मैम, अच्छा लगता है उनके साथ, और अब थोड़ा टाइम और मिल जाता है, घर पे बहू आ गई तो टेंशन फ्री है थोड़े से।
0: बिल्कुल, यानी कि आप किसी सास हैं और आप भी किसी की सास हैं।
1: बिल्कुल।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे राजा और रंग मूवी का सुनना है मैम। तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है।
0: अरे वाह, क्या प्यारी सी पसंद है आपकी। तो सुनवाते हैं आपको ये आपका पसंद का गीत।
2: तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आपका नाम पहले और अपने शहर का नाम।
1: मैं बोल रही हूँ भगवती सोलंकी, दिल्ली से।
0: दिल्ली से बोल रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, यानी आप जो चार दीवारें हैं ना उनको घर बनाती हैं।
1: हाँ जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपकी
1: तो संभालना जरूरी है ना, घर में तो सब बाहर ही जाएंगे तो घर को ही कौन संभालेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना आप चार दीवारों को घर बनाती हैं। तो आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में है, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे बेटे, दो बेटे हैं, बहू है, मेरी एक पोती है 6 साल की।
0: अरे वाह, यानी आप सास भी बन चुकी हैं और दादी भी बन चुकी।
1: हाँ जी, दादी भी बन चुकी हूँ
0: जी। तो बताइए आप अपना जो समय रहता है, कोई खाली समय रहता है जो, उसमें आप अपना समय बिताने के लिए क्या करती हैं?
1: सबसे पहले तो मेरा का शौक है म्यूजिक सुनना, सुबह से मेरा रेडियो चालू हो जाता है, रामायण से चालू होता, भूले बिस्सी संगीत सविता, भूले बिस्सी गीत, ये सारा प्रोग्राम चलता रहता, सुन किचन में चलता रहता हूँ, मैं काम करती रहती हूँ।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है ये। संगीत में अगर रुचि है ना आपकी, तो समझिए आपका जीवन बहुत बहुत बहुत शांत है, बहुत अच्छा है।
1: हाँ, और फिर गुनगुनाती भी हूँ और गाने भी सुनती हूँ। फिर मुझे घर का काम करना, साफ सफाई करना मुझे बहुत पसंद है,
0: ये अच्छी चीज है।
1: और हाँ, और दूसरा सबसे और बड़ा है मुझे पौधे लगाना घर में। मैंने अपने आगे पीछे बालकनी में मैंने पेड़ ही करीब कम से कम 30-35 पेड़ लगाए हुए हैं गमलों में सब में।
0: अरे वाह।
1: सबसे ज्यादा तो मैंने गुड़हल लगाया हुआ, मेरे घर में तुलसी इतनी है कि मेरे से भी बड़ी तुलसी का पेड़ है।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए जिस तरीके से पर्यावरण दिवस भी है और आपने इतनी अच्छी बात कही है कि आप पौधे लगा रही हैं, यानी कि सोचिए आप कितना अच्छा कर रही हैं।
1: मेरा पीआर जो जबलपुर का है
0: जी,
1: तो हाँ जबलपुर में है, तो जबलपुर में भी हम बचपन से इतने पौधे लगा के आए कि अब हम बाद में जाते रहे तो वहाँ पर हमें शरीफा इतना पेड़, अमरूद, शरीफा, सहजन की फलियाँ, इतने पौधे में पेड़ मतलब फल लगते रहे कि मुझे देख के खुशी होती थी। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज अपने आसपास हरियाली बना के रखो, जो समाई हमारी जीवन देते बजवा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: गाना सुनूंगी गागो साइड पान का, नाचो तू बंसी बजा। हाँ
0: जी बिल्कुल, सुनवाती हैं आपके पसंद का ये गीत।

सखियों, अब कार्यक्रम हेलो सहेली में हो चला है समय एक अंतराल का, तो मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं यानी कि आरती श्रीवास्तव। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं पूर्णिमा बोल रही हूँ
0: जी।
1: पूर्णिमा सैगम, अभी तो तेलंगाना में रह रही हूँ।
0: अच्छा,
1: गाने सुनती रहती हूँ।
0: आप बताइए क्या करती हैं आप?
2: कुछ भी नहीं, अभी तो सिर्फ मेरी बच्ची को संभालती हूँ।
0: कितना छोटा है आपको बच्चा?
2: अभी 2 साल की हुई है।
0: ओह, इतनी छोटी सी है। तब तो आपको बहुत भाग दौड़ करते रहना पड़ता होगा उसके पीछे।
2: वो ज्यादा नहीं कर पाती पर मैं फिर भी उसके पीछे भागती हूँ।
0: जी बिल्कुल, छोटे बच्चों का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जी।
2: हाँ, समझदार है, ज्यादा परेशान नहीं करती,
0: यानी अच्छी बच्ची है।
2: हाँ।
0: जी तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम बचता है?
2: डांस करना अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है।
0: तो आप अपना डांस करती हैं या ऐसी अपने मतलब भी आप छोड़ रखा है इस समय?
2: अभी ये छोटी है इसलिए छोड़ रखा है, बाकी मैं करती ही हूँ। मैं क्लासिकल डांस टीचर भी रह चुकी हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपने सीखा हुआ यानी कि क्लासिकल?
2: जी, मैंने कथक सीखा हुआ है, भरतनाट्यम भी सीखा हुआ है।
0: अरे अरे वाह, बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मुझे ये जो नृत्य की जो कला होती है ना, ये जो आप सीख लेते हैं तो हमको इतना एकदम तरोताजा रखती, कोई परेशानी हमें एकदम आसपास भी नहीं आती, क्योंकि हम इतने ज्यादा उसमें खो जाते हैं ना, सारी परेशानियों का हल हमें अपने संगीत में मिल जाता है। तो
2: बीमारी सही कर दे डांस और म्यूजिक, तो ऐसी
0: चीज है। जी, एकदम फिट भी रहते हैं उसकी वजह से।
2: हाँ, फिट भी रहते हैं बहुत।
0: जी तो आप बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
2: मैं कभी कभी मूवी का लता मंगेशकर की आवाज में मेरे घर आई एक नन्ही परी।
0: अच्छा, आपके घर एक नन्ही परी आई है। तो उसको सुनाने के लिए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं रत्ना बोल रही हूँ। हाँ, रत्ना सिन्हा।
0: अच्छा रत्ना जी बोल रही हैं, कहाँ से?
1: बाराबंकी से।
0: तो आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, आप क्या करती हैं?
1: जी मैं ऐसे तो हाउस वाइफ हूँ, मगर मेरा म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट काफी रहा है
0: जी। और वैसे तो हाउस वाइफ क्यों है यार, बड़ी गर्व से कही हाउस वाइफ है। क्योंकि हाउस वाइफ का काम बहुत ज्यादा होता है, 24 घंटे का काम होता है।
1: बिल्कुल, बिना रुके बिना थके।
0: बिल्कुल, और काम करती रहती है और सब पूरे फैमिली, पूरा समझ लीजिए सारी फैमिली उनके पर निर्भर होती है।
1: और ऐसा कि पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए।
0: बिल्कुल।
1: जो है
0: आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, दो बेटे है, बहू है, पोती है।
0: बहुत बढ़िया। तब तो आप पोती के साथ खेलते खेलते आपका समय निकल जाता होगा अच्छे से।
1: जी जी जी जी।
0: तो बताइए जी, तो आप बताइए, आपको पेड़ पौधों का शौक है?
1: जी बहुत बहुत पेड़ पौधों का शौक है, मतलब सुबह शाम पेड़ पौधों को निहारना, देखना, पानी वानी डालते हैं।
0: अच्छा अच्छा, आपने लगा रखे हैं?
1: हाँ लगा रखे हैं, और चिड़ियों के लिए दाना है, पानी है, ये सब भी।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। गर्मियों के दिन में सोचिए वो चिड़िया पक्षी उड़ रहे हैं, उनको कहाँ से दाना पानी के लिए आपने उनका इंतजाम किया, बहुत अच्छी बात है।
1: और चिड़ियों की चहचहाट सुबह सुबह बहुत लगती है।
0: वही तो, हम जैसे अगर उनको पानी देते हैं या दाना कुछ उनको खाने के लिए रखते हैं ना, तो वो भी तो बदले में हमें अपनी चहचहाट देती है, अपनी खुशियाँ देती है ना।
1: तो बिल्कुल आती है, सब खेलती है।
0: जब वो चहचहाती है तो हमारे आंगन में एकदम खुशियाँ बिखर जाती है ना?
1: जी जी जी।
0: तो आप बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभिमान फिल्म का गीत है, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी।
0: बहुत अच्छा गीत है ये, और सुनवाते हैं आपको ये आपके पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, तो आप बताइए पहले तो अपना नाम और अपने शहर का नाम।
1: मेरा नाम शीला निको से है।
0: तो आप कहाँ से?
1: मैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट वरोरा महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, चंद्रपुर से बात कर रही हैं आप। तो बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ मैडम।
0: अच्छा,
1: घर में रहती हूँ और दृष्टिहीन हूँ मैं।
0: तो आप बताइए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, जो आपको बहुत
1: गाना सुनना अच्छा लगता है।
0: गाना सुनना अच्छा लगता है आपको, और गाना गाना अच्छा लगता है?
1: हाँ, गाना गाना भी अच्छा लगता है, गाना सुनना भी अच्छा लगता है।
0: तो बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज?
1: मुझे जाकवर सिंह का वो गाना सुनना है, तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है।
0: तुझको ना देखूं तो दिल घबराता है। तो आपको सुनवाते हैं जानवर फिल्म का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं ओडिशा गरम गंजाम जिला से बोल रही हूँ।
0: जी, आप अपना नाम बताइए।
1: ममता दास मेरा नाम।
0: अच्छा, तो आप क्या करती हैं ममता जी?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा, तो और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: घर में मैं और मेरा हस्बैंड और मेरी दो बेटियां हैं।
0: अरे वाह, दो बेटी हैं आपकी, तो बड़ी है कि छोटी है?
1: हाँ, बड़ी हो गई है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग की।
0: अरे वाह,
1: बीएससी नर्सिंग की।
0: बहुत अच्छी बात है, यानी सेवा वाली वो नौकरी कर रही है, वो पढ़ाई कर रही है जिससे कि वो सबकी सेवा कर सके, है ना? जी, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपका खाली समय होता है? तो
1: मुझे सिलाई आती है, तो मैं कभी खाली नहीं रहती, काम खत्म, घर की काम खत्म होने के बाद सिलाई कर लेती।

0: बहुत अच्छी बात है ये, आप अपना ये अपना जो मनपसंद काम है वो आप करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ना हमें, हम सभी को कोई ना कोई शौक होता है, कोई ना कोई हॉबी होती है, लेकिन क्या है ना हम उसको पूरा नहीं कर पाते क्योंकि हम सोचते हैं अरे घर के काम है, ये सब कर लें फिर समय कहाँ मिलता है। लेकिन आपने उस चीज को अच्छे से किया है। तो आप क्या क्या चीजें सिल लेती हैं?
1: ये हो रही है कि आज सखी सहेली तो मेरी फोन लगी। तो जून 5 में मेरी छोटी बेटी की बर्थडे है, जो जून 25 में मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे है।
0: अरे वाह, जून में ही है दोनों बेटियों के बर्थडे।
1: हाँ हाँ, और मेरी बहन की बेटी के जून 4 ही में है।
0: अच्छा,
1: तो कुछ हैप्पी बर्थडे के गीत सुनाए देंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो खूब आगे बढ़े और आपका नाम रोशन करे। तो आपने बताया कि आप सिलाई कर लेती हैं, तो आप क्या क्या सिलती हैं?
1: सलवार ब्लाउज सब सिलाई कर देती हूँ।
0: अच्छा, सारी चीजें आप सिल लेती हैं। तो आपको बाहर के सिले हुए कपड़े खरीदने अच्छे लगते हैं, बाहर से शॉपिंग करती हैं, या अपने घर में आपको बनाना अच्छा लगता है?
1: मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जो सुजाता फिल्म का गीत है ना।
0: सुजाता का कौन सा?
1: हजारों साल।
0: अच्छा ठीक है, तो चलिए सुनवाते हैं आपको पसंद का ये गीत।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी। चलते चलते आपको कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं, जो हैं 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। नंबर फिर से एक बार 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब आप दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए, जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। फोन नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दें, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश ना हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी ना कभी तो कामयाब होते ही हैं। और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल नहीं लगाइए और अपनी सखियों को भी अवसर दीजिए अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक का और संपादन में हमारी सहयोगी बनी नम्रता टिकोड़े और साथ ही विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कह दिया कि उन्होंने कहा है कि माँ को जल्दी खाना खिला दिया करो, माँ के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसीलिए गई हैं शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर। शुगर में जल्दी खाना घूमना फिरना जरूरी है और माँ इस मामले में बेहद लापरवाह है। तुमसे नाराज होती है तो मैं ही कह दिया करूंगा। नाराजगी में क्या कहकर गई है पता है? कह रही थी जो हुक्म, अब तो जैसा आप कहेंगी वैसा ही करना पड़ेगा, भावना ने हंसते हुए कहा और फिर नाटकीय अंदाज में कहने लगी, सोचो जरा क्या क्या सुनना पड़ता है हमें। खैर कैसा रहा आज का दिन? भावना ने संदीप को पानी देते हुए पूछा। रोज की तरह ही था, बहरहाल मेरा एक सरप्राइज फेल हो गया। सोचा था इस बार तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे, शादी को 2 साल हो गए पर तुम्हें कोई सरप्राइज ही नहीं दे पाया। एक पेमेंट मिलने की उम्मीद थी पर वो अब अगले महीने के लिए टल गई, और अगले ही हफ्ते तो तुम्हारा बर्थडे है। पता नहीं क्यों जो सोचता हूँ हो ही नहीं पाता, सैलरी में तो घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता है और तुम्हें ज्यादा खुशी नहीं दे पा रहा, क्या करूं। संदीप ने गहरी सांस ली। अरे ऐसा क्यों कहते हो आप? आप इतना सोचते हो वही काफी है, मुझे तो याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन आ रहा है। आपको तो याद भी था, कई सारे पतियों को तो अपनी पत्नी के जन्मदिन तक याद नहीं रहते। याद है वो दीपेश जी, अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है। भावना हंसकर कहने लगी, बर्थडे फिर मन जाएगा, आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें? तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही बाद में ही सही, समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा? भावना ने आश्चर्य से कहा, मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है सबसे पहले। मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है, पड़ोस में नई किरायेदार आई है ना मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। दो दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई जैसे मेरी बुराई कर रही हूँ और मैं पहुंच गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाजा खोलता हूँ तुम खाना लगाओ। लो मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा।

भावना और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी, और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती हैं? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं, अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे

कितना प्यार करती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं, तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ, मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा, तुम नाराज मत हो मेरी प्रिये, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज आएगी, तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहे तो बुरी लगती है। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है, वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती है, पलकों पर बिठाती है उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है, प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है। अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना, आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था, बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। और तो और, आज तो पूजा भी उन्होंने जल्दी जल्दी कर ली थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ी। मम्मी जी अपने कमरे से तेजी से आई, जैसे वो इस आने वाले का इंतजार ही कर रही थी। दरवाजा खोला, भावना ने देखा मुक्ता। लो, आज तो ये सुबह से ही आ गई। दोनों अंदर कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। भावना का सिर चकरा गया। ऐसी भी क्या बात, मम्मी जी का पूजा पाठ में भी मन नहीं लग रहा, इतनी गपशप की लालसा। हे राम, ये मम्मी जी को जाने क्या होता जा रहा है। उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, उसने भावना से पूछ ही लिया, अब आज क्या हो गया। आज तो मुक्ता सुबह से ही घर आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुन लूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना, या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना। संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हूँ, पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है, संदीप ने चुटकी ली।

मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनकी दुश्मन थोड़े ही हूँ? आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है,

ये मम्मी जी जी लीजिए अपनी जिंदगी, और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा ये स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूँ? आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में? संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा और दोनों खिलखिला पड़े।

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थी, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थी। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी, वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती, फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। भावना को बड़ा बुरा लगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं, मैंने ऐसा क्या किया है। खैर अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी, अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें, मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने ये सोचकर अपने सारे काम निपटा कर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया, आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया, भावना जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतने सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं, देखना तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी, मैंने कहा तो था तुमसे माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाजा, भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी आप इतनी सुबह, हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो, मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें, ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में ली।

कर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया। ठीक है, तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठ ही गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

माँ मेरे स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी, संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं, और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहें और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई, पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था। और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी, सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूँ पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था, एक फूलों का

गुलदस्ता और एक पार्सल दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी। खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल। शायद इसीलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी। और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी। चंदेरी की साड़ी, मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी। इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी। कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए। माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेट कर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

अपना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी तब जाकर ये साड़ी मिली। आंटी को आपको यही गिफ्ट करनी थी। भाभी बहुत लकी हो आप, आंटी को आपकी पसंद ना इतनी पता है, मैं तो हैरान ही हो गई। वैसे साड़ी आपको पसंद तो आई ना? मम्मी जी की ओर देखकर मुक्ता कहने लगी, आंटी देखिए, रंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डर किया था। भाभी वैसे गुलदस्ता कैसा लगा? वो मेरा आइडिया था, बस मैंने उसमें पीले फूल भी जोड़ने के लिए कहा था। खैर आंटी जी, अब तो आप खुश है ना? भाभी आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ, आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए। लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना अब तुम मुझे सिखा देना, साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी? भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी। मम्मी जी ये सरप्राइज आपका था, तो आपने बताया क्यों नहीं? और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने, बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है? मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आई। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे? अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है, एक प्रीति है एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े।

भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सुमन जी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
3: एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत

0: अब कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड बेगमगंज गढ़ेया अयोध्या, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com, ayodhyaakashvani@gmail.com।
4: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवावाणी और मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। उम्मीद है आप सभी बड़े ही उत्साह और ऊर्जा के साथ जुड़ गए होंगे अपने चहेते कार्यक्रम युवावाणी के साथ। दोस्तों, आज कार्यक्रम ज्ञान, जागरूकता और रोचक जानकारियों से भरपूर रहने वाला है। चर्चा सेगमेंट में हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण विषयों पर, पहला विश्व पर्यावरण दिवस, दूसरा अवैध, अनधिकृत और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। इसके बाद सेगमेंट स्थान में चलेंगे टोक्यो की सैर पर और जानेंगे इस आधुनिक, जीवंत और तकनीकी रूप से अग्रणी शहर की कुछ खास बातें। फिर सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर युवा श्रोताओं से उनके विचार और रेडियो से जुड़ी यादें, बातचीत किया है शिवानी श्रीवास्तव ने। कार्यक्रम में आगे होगा शब्दावली का रोचक सेगमेंट, जहां सीखेंगे कुछ नए और उपयोगी शब्द और इन सभी प्रस्तुतियों के बीच आपका मनोरंजन करते रहेंगे मनपसंद गीत संगीत के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ अगले कुछ पलों तक, क्योंकि शुरू हो रहा है आपका फेवरेट, आपका अपना युवावाणी। और हाँ दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर तैयार रहिएगा शब्दावली के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की, यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। ये दिवस हर वर्ष 5 जून को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1972 में आयोजित यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट के बाद हुई थी और पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराना है। दोस्तों, आज दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वनों की कटाई, जैव विविधता के नुकसान और प्लास्टिक कचरे जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। इन समस्याओं का प्रभाव केवल पर्यावरण पर ही नहीं, बल्कि मानव स्वास्थ्य, कृषि, जल संसाधनों और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। जी हाँ, वर्ष 2026 का विश्व पर्यावरण दिवस भी पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ जीवन शैली के संदेश को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। दोस्तों, ये दिन हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है, इसलिए इसका संरक्षण हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। दोस्तों, पर्यावरण की रक्षा के लिए बड़े प्रयासों के साथ साथ छोटे छोटे कदम भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे एक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, पानी और बिजली की बचत करना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना तथा अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना। जब लाखों लोग ऐसे छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो उनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। दोस्तों, युवा वर्ग इस अभियान का सबसे मजबूत आधार बन सकता है। नई सोच, नई तकनीक और सकारात्मक ऊर्जा के साथ युवा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल और समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक दिवस नहीं, बल्कि एक संकल्प है, स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, हरित धरती और सुरक्षित भविष्य का संकल्प। दोस्तों, हम सभी को प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण को अपनी दैनिक आदतों का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, लेकिन हमारे

0: लालच को नहीं। दोस्तों इसी कड़ी में बात करने चल रहे हैं अब अवैध अनधिकृत और अनियमित मछली पकड़ने के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। ये दिवस दोस्तों हर वर्ष 5 जून यानी कि आज के दिन आज की तारीख को मनाया जाता है। इसकी घोषणा यूनाइटेड नेशंस महासभा द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य समुद्री संसाधनों की सुरक्षा तथा अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। दोस्तों दुनिया भर में करोड़ों लोग भोजन और रोजगार के लिए मत्स्य संसाधनों पर निर्भर हैं। जब नियमों की अनदेखी करके अत्यधिक मछली पकड़ ली जाती है तो कई प्रजातियों की संख्या तेजी से घटने लगती है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है। भारत जैसे देश जिसकी लंबी समुद्र तट रेखा और समृद्ध मत्स्य संसाधन है, वहां सतत मत्स्य प्रबंधन का महत्व और भी बढ़ जाता है। जी हाँ, समुद्र केवल आज की जरूरतों को पूरा करने का साधन नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों की धरोहर भी है। तो आइए इस अवसर पर हम ये समझें कि समुद्र और उसके संसाधनों का संरक्षण केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सभी का दायित्व है। दोस्तों स्वस्थ समुद्र, सुरक्षित जैव विविधता और टिकाऊ मत्स्य संसाधन ही भविष्य की खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन की कुंजी है। तो दोस्तों आइए इस चर्चा के बाद सुनते हैं ये वार्ता कृष्ण कुमार त्रिपाठी के साथ। विषय है धरती का आवरण पर्यावरण।
1: आज 5 जून है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। यह केवल एक दिवस नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी की पुकार सुनने का अवसर है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि पेड़ बोल सकते, नदियां अपनी पीड़ा सुना सकती और हवा अपना दर्द बता सकती तो क्या वे हमसे खुश होती? शायद नहीं, क्योंकि जिस धरती ने हमें जीवन दिया उसी धरती को आज हमारी जीवन शैली से सबसे अधिक खतरा है। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है लेकिन प्रकृति पीछे छूटती जा रही है। बड़े बड़े शहर चमक रहे हैं लेकिन आसमान धुंधला होता जा रहा है। सुविधाएं बढ़ रही हैं लेकिन स्वच्छ हवा और शुद्ध पानी कम होते जा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हमें याद दिलाता है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। इस वर्ष दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष चिंता व्यक्त की जा रही है। हाल के वर्षों में प्लास्टिक प्रदूषण, बढ़ता तापमान, जंगलों में आग, विभिन्न देशों में भीषण युद्ध, अनियमित वर्षा और जल संकट जैसी समस्याएं पूरी मानवता के सामने चुनौती बनकर खड़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने पिछले वर्षों में विशेष रूप से बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन अर्थात प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने का आह्वान किया, क्योंकि प्लास्टिक अब समुद्रों तक सीमित नहीं है बल्कि हमारे भोजन, पानी और यहाँ तक कि मानव शरीर तक पहुंच चुका है। सोचिए, जिस प्लास्टिक की बोतल को हम कुछ मिनट प्रयोग करते हैं वही प्लास्टिक सैकड़ों वर्षों तक धरती पर बना रहता है। आज माइक्रोप्लास्टिक समुद्रों में, मछलियों के भीतर, पर्वतों की बर्फ में और वैज्ञानिकों के अनुसार मानव शरीर में भी पाया जा रहा है। साथियों, पर्यावरण की समस्या केवल सरकारों या वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सब की भी जिम्मेदारी है। यदि हम अपने घर और घर के आसपास स्वच्छता रखते हैं तो प्राणवायु की शुद्धता में अंतर प्राप्त होता है। कई लोग सोचते हैं कि एक व्यक्ति क्या बदल सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे कदम से शुरू हुआ है। एक पौधा लगाना छोटा कार्य लग सकता है लेकिन वही पौधा भविष्य में हजारों लोगों को ऑक्सीजन दे सकता है। एक प्लास्टिक बैग का उपयोग न करना छोटी लग सकती है लेकिन करोड़ लोग ऐसा करें तो परिणाम असाधारण होगा। आज आवश्यकता केवल जागरूकता की नहीं बल्कि व्यवहार परिवर्तन की है। हमें अपने जीवन में 5 संकल्प अपनाने होंगे। पहला, जल बचाएं। दूसरा, प्लास्टिक का उपयोग कम करें। तीसरा, अधिक से अधिक पौधारोपण करें। चौथा, ऊर्जा की बचत करें। पांचवा, प्रकृति के प्रति संवेदनशील बने। जब भी हम किसी पेड़ को कटते देखते हैं, किसी नदी को गंदा होते देखते हैं या सड़क पर कचरा फेंकते हैं तब हमें यह समझना चाहिए कि हम केवल पर्यावरण को नहीं बल्कि अपने भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ने सदियों पहले ही प्रकृति को पूजनीय माना था, नदियों को माँ कहा था, पृथ्वी को माता और वृक्षों को देवतुल्य माना गया। अर्थात हमारी परंपराएं हमें प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं बल्कि सह अस्तित्व सिखाती हैं। आज दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष तकनीक की बात कर रही है।

0: लेकिन एक सच्चाई कभी नहीं बदलेगी कि कोई भी मशीन ऑक्सीजन नहीं बना सकती है जिस तरह एक पेड़ बनाता है। वस्तुतः कोई भी तकनीक प्रकृति का पूर्ण विकल्प नहीं बन सकती, इसलिए पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि अस्तित्व का प्रश्न है। कल्पना कीजिए कि वर्ष 2050 में कोई बच्चा अपने दादा दादी से पूछे कि क्या सचमुच कभी नदियों का पानी सीधे पीने योग्य होता था, क्या सचमुच आसमान इतना साफ होता था कि तारे दिखाई देते थे, उस समय हमारा उत्तर क्या होगा। हमारी आज की जिम्मेदारी ही उस प्रश्न का उत्तर तय करेगी। घर में किसी का भी जन्म दिवस हो, वह एक पौधा लगा दे, हम काफी हद तक देखभाल कर लें, फिर देखिए परिवर्तन। प्रत्येक परिवार जल और ऊर्जा की बचत करे तो हमारा देश पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नई मिसाल बन सकता है। जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो केवल एक पौधा नहीं रोपते बल्कि भविष्य में छाया, स्वच्छ वायु और सुमधुर जीवन की आशा बोते हैं। जब हम जल बचाते हैं तो केवल पानी नहीं बचाते बल्कि आने वाली पीढ़ियों की प्यास बुझाने का प्रबंध करते हैं। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं तो वास्तव में हम स्वयं का सम्मान करते हैं। हमें ऐसा विकास चाहिए जो प्रकृति को नष्ट न करे, ऐसा आधुनिक जीवन चाहिए जो पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर चले, और ऐसी सोच चाहिए जो केवल आज नहीं बल्कि आने वाले कल की भी चिंता करे। आइए इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम संकल्प लें कि हम प्रकृति के उपभोक्ता नहीं उसके संरक्षक बनेंगे। हम पृथ्वी से केवल लेंगे नहीं, उसे लौटाएंगे भी, और हम बच्चों को केवल संपत्ति नहीं बल्कि स्वच्छ पर्यावरण की विरासत देंगे। किसी विचारक द्वारा काव्य से कुछ पंक्तियां हैं। मैंने देखा है नदियों को अपनी धारा में डूबते हुए, वृक्षों को अपनी जड़ों के साथ उखड़ते हुए, और आकाश को धुएं की कालिमा में अपना नीलापन खोते हुए। यह केवल प्रकृति का क्षरण नहीं, यह मनुष्य की चेतना का अवसान है। जहां विकास की अंधी परिभाषाओं ने संवेदनाओं के वनों को निर्ममता से काट डाला है, पर्वत आज भी खड़े हैं पर उनके नित स्तब्धता में एक अनकहा आर्तनाद है। समुद्र आज भी लहराता है पर उसकी तरंगों में भविष्य की आशंकाओं का कंपन है। धरती जो कभी जीवन का उत्सव थी आज प्रश्न बनकर खड़ी है। क्या प्रकृति का अर्थ केवल उपभोग है? क्या सभ्यता का उत्कर्ष विनाश की नींव पर संभव है? समय की दहलीज पर खड़ा मानो यदि अब भी नहीं चेतेगा तो इतिहास की अगली पंक्तियां हरे रंग में नहीं राख के रंग में लिखी जाएंगी। आओ हम फिर से सीखें एक वृक्ष के साथ जीना, एक नदी की भाषा समझना, और पृथ्वी को संपत्ति नहीं अपनी साधा विरासत समझना, क्योंकि पर्यावरण कोई विषय नहीं अस्तित्व का आधार है, और इसकी रक्षा केवल दायित्व नहीं मानव होने का संस्कार है।
1: अभी आपने सुनी ये वार्ता। वार्ताकार थे कृष्ण कुमार त्रिपाठी और विषय था धरती का आवरण पर्यावरण। दोस्तों, दुनिया बहुत बड़ी है और हर शहर अपने भीतर इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता की एक अनोखी कहानी समेटे हुए है। हमारे इस विशेष सेगमेंट स्थान में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे शहर की सैर पर जो परंपरा और तकनीक का अद्भुत संगम माना जाता है। जी हाँ, ये शहर है टोक्यो, जहाँ गगनचुंबी इमारतों की चमक के साथ सदियों पुरानी संस्कृति भी सांस लेती है। आइए जानते हैं टोक्यो के बारे में विस्तार से। दोस्तों, टोक्यो जापान की राजधानी है और दुनिया के सबसे बड़े महानगरीय क्षेत्रों में से एक है। ये जापान के मुख्य द्वीप होन्शु के पूर्वी तट पर स्थित है। आज जिसे हम टोक्यो के नाम से जानते हैं उसे पहले एडो कहा जाता था। वर्ष 1868 में जब सम्राट मेजी ने राजधानी को टोक्यो में क्योटो से स्थानांतरित किया तब इसका नाम टोक्यो रखा गया, जिसका अर्थ है पूर्वी राजधानी। टोक्यो केवल जापान का राजनीतिक केंद्र ही नहीं बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीक गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र है। यहाँ विश्व की अनेक बड़ी कंपनियों के मुख्यालय स्थित हैं और इसे वैश्विक वित्तीय केंद्रों में भी गिना जाता है। दोस्तों, टोक्यो की पहचान उसकी अत्याधुनिक तकनीक, अनुशासन और बेहतरीन परिवहन व्यवस्था से है। यहाँ की मेट्रो और रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे व्यस्त और समयनिष्ठ परिवहन तंत्रों में से एक मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, लाखों लोग प्रतिदिन इसका उपयोग करते हैं, फिर भी व्यवस्था बेहद सुचारू रहती है। यदि पर्यटन की बात करें

तो टोक्यो में देखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ स्थित टोक्यो टावर और टोक्यो स्काई ट्री पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी है। स्काई ट्री लगभग 634 मीटर ऊंचा है और वहां से पूरे शहर का शानदार दृश्य दिखाई देता है। टोक्यो में आधुनिकता के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत भी सुरक्षित है। दोस्तों, सेंसोजी शहर के सबसे पुराने और मंदिरों में से एक है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। ये शहर अपनी स्वच्छता और अनुशासन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और नागरिक नियमों का पालन करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। दोस्तों, खान पान की दृष्टि से भी टोक्यो बेहद फेमस है। सुशी, रेमेन और टेम्पुरा जैसे जापानी व्यंजन दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। टोक्यो में हजारों रेस्तरां हैं और इसे उत्कृष्ट भोजन संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, टोक्यो खेलों की दुनिया में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ आयोजित 2020 समर ओलंपिक्स ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। महामारी के कारण ये खेल 2021 में आयोजित हुआ, लेकिन आधिकारिक नाम टोक्यो 2020 ही रहा। मित्रों, आज टोक्यो एक ऐसा शहर है जो हमें सिखाता है कि आधुनिक विकास और सांस्कृतिक मूल्यों को साथ लेकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। यही कारण है कि टोक्यो केवल जापान की राजधानी नहीं बल्कि नवाचार, अनुशासन और प्रगति का वैश्विक प्रतीक बन चुका है। तो दोस्तों, ये थी टोक्यो की रोचक यात्रा। अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म भूल भुलैया से। अगर बात हो सफर की और सफर के बीच में गाना ना हो तो मजा थोड़ा सा अधूरा रहता है। आवाज है केके की, गीत को लिखा है समीर ने और कंपोज किया है प्रीतम ने।

0: दोस्तों वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए युवाणी, लौटते हैं जल्द ही।
1: कहानी नहीं बदली स्टाइल।

0: वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9596242404 और 7800037222।
3: अब आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर युवा श्रोताओं के बातचीत शिवानी श्रीवास्तव के साथ।
4: साथियों चलिए आज चलते हैं स्टूडियो के बाहर और जानते हैं हमारे युवा साथियों से उनकी आकाशवाणी रेडियो से जुड़ी यादें और जानते हैं उनके विचार, क्या सीखते हैं रेडियो से, क्या जानकारियां मिलती हैं, उनकी बातें उनके अंदाज में सुनते हैं।
5: जी आपका नाम?
6: मेरा नाम शुभम मलकानी।
5: जी ठीक है, आप रेडियो सुनना पसंद करते हैं?
6: जी मैं बिल्कुल सुनना पसंद करता हूँ।
5: जी तो आप रेडियो में कौन सा कार्यक्रम सुनना पसंद करते हैं?
6: मैं युववाणी सुनना ज्यादा पसंद करता हूँ, स्पेशली वो 5 बजे से शुरुआत होती है उसकी, तो उसी टाइम मैं खाली होता हूँ और मैं युववाणी पे ज्यादा फोकस करता हूँ। और खासकर वो जब मंगलवार को आता है, मंगलवार का सेगमेंट आता है, तो मुझे वो ज्यादा पसंद आता है। लाइक उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
5: और उन
6: सब और उन सब चीजों से मुझे बहुत सारी जानकारी मिलती है। स्पेशली बहुत सारे खेल्स के बारे में बताया जाता है, गेम्स के बारे में बताया जाता है और नए नए बहुत सारे गाने सुनने के लिए मिलते हैं, बहुत सारी न्यूज सुनने के लिए मिलती है, अलग अलग जगहों के बारे में सुनने मिलता है कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है।
5: जी, जी।
6: तो मुझे बहुत ज्यादा इन सब चीजों में इंटरेस्ट आता है। और सबसे बड़ी चीज है, रेडियो सुनने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि फोन में जितना हम समय व्यर्थ कर देते हैं जिससे जानकारियां नहीं मिलती है, उससे कुछ ज्यादा ही रेडियो में जानकारियां मिल जाती है, तो इसलिए मुझे रेडियो सुनना बहुत पसंद है।
5: जी जी बिल्कुल, बहुत सही बताया आपने। जी मेरा आपसे एक और सवाल है, जैसा कि आपने बताया कि आप 5 बजे फ्री हो जाते हैं, तो क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ कि आप 5 बजे फ्री होते हैं, क्या रेडियो आपके मायने से फ्री टाइम में ही सुनना उचित होता है, या फिर आप कोई भी, मेरे हिसाब से कि आप काम करते वक्त भी रेडियो सुन सकते हैं, तो आपका इस पर क्या कहना है?
6: नहीं नहीं मैं बिल्कुल सुनता हूँ, बस ये रहता है कि मैं ऑफिस से खाली होता हूँ 5 बजे, उसके बाद मैं सुनता हूँ, बट मैं जब भी फ्री रहता हूँ तो मैं स्पेशली रेडियो ऑन करके सुनता हूँ। चाहे मुझे 5 मिनट का समय मिले, 10 मिनट का समय मिले, चाहे जितने मिनट का समय मिले, मैं तो सबसे बड़ी। और काम करके भी हम लोग रेडियो सुन सकते हैं, जैसे कि मैं ऑफिस में रहता हूँ तो अलाउ नहीं रहता है, हम लोग को परमिशन नहीं रहती है सुनने के लिए, तो मैं 5 बजे जब फ्री होता हूँ उसके बाद मैं सुनता हूँ, बट घर पे हमारे पापा मम्मी काम करते करते आराम से सुन लेते हैं।
5: जी जी, मतलब आपका पूरा परिवार सुनता है, जानकर बहुत ही खुशी हुई। तो आपको एक और खुशखबरी मैं दे दूं कि आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे करने वाले हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो और बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आपका पूरा परिवार रेडियो सुनता है। तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी कि आप इसके बारे में यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे?
6: जैसे कि मैंने बताया था कि पहले फोन यूज करने से हमारी टाइम बहुत व्यर्थ जाता है और उतनी जानकारियां हमें नहीं मिल पाती है जितनी रेडियो से मिल जाती है, तो सबसे बड़ी चीज है, मैं अपने यूथ को, अपने आगे आने वाले यूथ को बस इतना बोलना चाहूंगा कि आप फोन से ज्यादा समय, टीवी से ज्यादा समय अपने रेडियो में दीजिए और अपने दोस्तों और परिवार को भी यही सलाह दीजिए कि वो रेडियो सुने।
5: जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका नाम?
7: मेरा नाम रोहन सिंह।
5: जी क्या आप रेडियो सुनना पसंद करते हैं?
7: जी बिल्कुल।
5: जी रेडियो में कौन सा कार्यक्रम सुनता है?
7: मैम मैं तो युववाणी सुनता हूँ।
5: जी तो क्या आप रेडियो फ्री टाइम में सुनते हैं या आप कब सुनना पसंद करते हैं?
7: फ्री टाइम में, काम के टाइम में भी सुनना पसंद करते हैं।
5: जी तो क्या आप अपने यूथ को कुछ बताना चाहेंगे कि जैसे आजकल यूथ फोन ज्यादा ही यूज कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपने यूथ को कुछ संदेश देना चाहेंगे?
7: जी बिल्कुल, ये सोशल मीडिया वगैरह ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए, रेडियो सुनना चाहिए, इससे मन हल्का होता है थोड़ा। घड़ी में ऐसा है कि वैकेंसीज के बारे में बताते हैं
5: जी,
7: और खेल मुझे पसंद है तो उसके बारे में कुछ बातें होती हैं, इसीलिए मैं वही सुनता हूँ।
5: चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद।
8: हाँ मैम बताएं।
5: जी आपका नाम?
8: बद्री विशाल सिंह।
5: जी क्या आप रेडियो

0: सुनते हैं?
1: हाँ, हम रेडियो सुनते हैं
0: जी। रेडियो में आप कौन सा कार्यक्रम सुनना पसंद करते हैं?
1: हेलो अध्याय सुनते हैं
0: जी। तो क्या आप जब भी रेडियो सुनते हैं तो आप किस समय सुनना पसंद करते हैं रेडियो, जैसे सुबह शाम या फिर आपने फ्री टाइम पे सुनते हैं या काम करते वक्त सुनते हैं, आप कब सुनना पसंद करते हैं?
1: तो काम करते वक्त भी सुन लेते हैं, फ्री टाइम शाम को भी सुन लेते हैं
0: जी।
1: अयोध्या के बारे में नई नई जानकारियाँ मिलती रहती है
0: जी जी। तो क्या आप हमारे बाकी के युवाओं को कुछ संदेश देना

0: युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे? वो आजकल मोबाइल ज्यादा ही देखते हैं, तो मोबाइल को छोड़ करके रेडियो सुनना चाहिए उन्हें, क्या कोई संदेश देना चाहेंगे आप?
1: हाँ, आजकल युवाओं को मैं कहना चाहूंगा कि मोबाइल को छोड़ के कुछ समय रेडियो को देना चाहिए। इससे क्या, मोबाइल देखने से लोगों की आंखें खराब होती हैं और लोग उसी में ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। मोबाइल तो ऐसा हो गया है कि लोग अपने को भूल जा रहे हैं।
0: जी बिल्कुल सही बात है। और रेडियो से ये है कि रेडियो सिर्फ हमें सुनना होता है, रेडियो में रेडियो से हमारे आंख पर इफेक्ट नहीं पड़ता और कोई टाइम भी नहीं जाता है, तो इसलिए हमें रेडियो सुनना चाहिए। जी आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: यस मैम।
0: जी आपका नाम?
2: मेरा नाम प्राची है।
0: जी क्या आप रेडियो सुनती हैं?
2: जी हाँ सुनती हूँ।
0: जी आप रेडियो में कौन सा कार्यक्रम सुनना पसंद करती हैं?
2: मैं रेडियो में फरमाइश एक कार्यक्रम आता है जी, मैं वो सुनना पसंद।
0: क्या आप इसमें युवाड़ी कार्यक्रम, कुछ तुमने कहा और भी कई सारे प्रोग्राम आते हैं, बाकी प्रोग्राम सुनती हैं?
2: हाँ जी सुनती तो काफी सारे हूँ, बट जिसे नाम से बहुत कम याद रहते हैं। युवाड़ी भी मैंने सुना है, अच्छा है वो भी।
0: बहुत अच्छी बात है। क्या आप कुछ हमारे युवाओं को बताना चाहेंगी कि जैसा कि आजकल लोग फोन में ज्यादा ही लगे होते हैं, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, इन सब पे ज्यादा ही जो यूज करते हैं, आजकल रेडियो लोग बहुत कम ही सुनना पसंद करते हैं, तो क्या आप अपने यूथ को कुछ कहना चाहेंगी?
2: हाँ जी बिल्कुल, मैं जरूर कहना चाहूंगी। आजकल ये इंस्टाग्राम, फेसबुक पे लोग अपना टाइम और अपनी एनर्जी बहुत वेस्ट कर रहे हैं, अपनी आंखों को बहुत खराब कर रहे हैं। और बहुत बड़ी चीज है कि एक मेंटल पीस चाहिए होता है, जो रेडियो सुनने से लोगों को बहुत अच्छा मिलता है। गाने भी नए पुराने, और पुराने गानों से भी आजकल के बच्चों का पहचान होता है। सो मैं तो लोगों को बोलूंगी कि प्लीज सुनो, सारे हमारे जो भी जनरेशन है, ये प्रेजेंट जनरेशन है, जेंजी है हमारी, प्लीज सुनिए रेडियो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीजें भी मिलेंगी, आपको बहुत ग्राउंड वर्क बातें जानने को मिलेंगी जो हमें शायद मोबाइल पे, इंस्टाग्राम से नहीं पता चलती है। तो प्लीज आप सुने, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मेंटल पीस मिलेगा। क्योंकि भाई मैं तो अपना काम करते करते इधर रेडियो भी चल रहा है, इधर काम भी हो रहा है, दोनों काम हो रहा है।
0: जी एग्जैक्टली ये तो बात है, हम अपना काम करते वक्त भी रेडियो ऐसा सुन सकते हैं।
3: ये थे हमारे युवा साथियों के विचार, उनकी रेडियो के साथ जुड़ी यादें।
4: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर युवा श्रोताओं की बातचीत शिवानी श्रीवास्तव के साथ। दोस्तों अब बारी है शब्दावली की। आज का पहला शब्द है टेनेशियस, स्पेलिंग है TENACIOUS। ये एक एडजेक्टिव है, अर्थ है दृढ़ निश्चय, सिनानिम्स होगा परसिस्टेंट, एंटोनिम्स होगा वीक। सेंटेंस बनाएंगे, हर टेनेसिस एफर्ट्स हेल्प्ड हर अचीव सक्सेस, यानी उसके दृढ़ प्रयासों ने उसे सफलता दिलाई। दूसरा शब्द है एलिवेट, स्पेलिंग है ALLEVIATE। ये एक वर्ब है, अर्थ है कम करना या राहत पहुंचाना, सिनानिम्स है रिलीव, एंटोनिम्स है वॉसन। सेंटेंस बनेगा, द न्यू पॉलिसी में एलिवेट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, यानी नई नीति बेरोजगारी की समस्या को कम कर सकती है। तीसरा है कैंडिड, CANDID, ये एक एडजेक्टिव है, अर्थ है स्पष्टवादी, सिनोनिम्स होगा फ्रैंक और एंटोनिम्स होगा डिसेप्टिव। सेंटेंस बनेगा, शी गेव अ कैंडिड ओपिनियन ड्यूरिंग द डिस्कशन, अर्थ होगा उसने चर्चा के दौरान अपनी स्पष्ट राय व्यक्त की। चौथा शब्द है स्क्रूटिनाइज, SCRUTINIZE, ये एक वर्ब है जिसका अर्थ है गहनता से जांचना, सिनोनिम्स होगा एग्जामिन, एंटोनिम्स होगा इग्नोर। सेंटेंस बनेगा, द साइंटिस्ट स्क्रूटिनाइज्ड द डेटा बिफोर पब्लिशिंग द रिजल्ट्स, यानी वैज्ञानिक ने परिणाम प्रकाशित करने से पहले आंकड़ों की गहन जांच की। दोस्तों आज का हिंदी का यानी कि अंतिम शब्द है दुर्निवार, जिसका अर्थ है जिसे रोका ना जा सके, जो अजेय हो, ये एक विशेषण है, इसके पर्यायवाची हैं अजेय, अपराजेय और अविराम, जबकि इसका विलोम है पराजय। वाक्य प्रयोग करेंगे, ज्ञान प्राप्त करने की उसकी दुर्निवार इच्छा ने उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा दिया। दोस्तों ये थी आज की शब्दावली, इसी के साथ दीजिए अपनी रेडियो मित्र दिशा पांडे को अनुमति। नमस्ते, जय हिंद।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: आपके संदेश,
8: संदेश से आते हैं
7: आपके गीत,
8: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
7: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जुवाड़ी। हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करें।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: कार्यक्रम में आरंभ में लीजिए सुनिए अमरनाथ यादव और साथियों की आवाज में ये लोकगीत।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर
1: आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थर जैसा न कोई।
0: ये है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9
1: आकाशवाणी अयोध्या,
0: जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashwani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कार्यक्रम के अंत में ललन सिंह और साथियों की आवाज में सुनिए ये पूर्वी।

0: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161-877-347।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत FM बैंड पर। हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। 5:48 हुए हैं। अब सुनिए विशेष भेंट वार्ता विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री एन रविंद्र, एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश वन विभाग से आशीष चतुर्वेदी की बातचीत, जो केंद्रित है जलवायु परिवर्तन पर।
3: पूरा विश्व 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है। हर साल एक नई थीम होती है, एक नया विषय होता है, जिससे कि आम जन से लेकर पॉलिसी मेकर से लेकर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इंस्पायर हों, वो कुछ करें पर्यावरण के लिए। इस विषय पर आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, एन रविंद्र साहब, जो उत्तर प्रदेश वन विभाग में एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं।
4: सभी को नमस्कार। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।
3: अगर हम पर्यावरण को देखें तो एक बहुत विशाल विषय है जिसमें बहुत सारी चीजें सम्मिलित हैं, पर इस बार पर्यावरण दिवस पर मुख्य विषय है क्लाइमेट एक्शन। जिस तरह हमारा पर्यावरण बदल रहा है, भारत जैसे देश के लिए ठीक नहीं है। आपका एक लंबा अनुभव है क्लाइमेट चेंज, आप उसको किस तरह से देखते हैं?
4: क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करेंगे, आपने भी कहा कि बचपन में हम लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा या फिर आजकल हम लोग कैसे देखते हैं, इसी को जस्ट कंपेयर करेंगे तो बहुत सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं कि उस समय हम बिना पंखे के रहते थे आराम से, इस तरह के गर्मी की ज्यादा परेशान शायद हमको एहसास नहीं होता था, इस तरह की बात है। अब आजकल देखेंगे तो एक तो हम बिना पंखा तो छोड़ दीजिए एसी की जरूरत महसूस करने की शुरू कर दिए है। तो इस तरह का जब हम करते हैं तो और बाहर जाते हैं तो हम लोग कंप्लेन करना भी शुरू कर दिया कि भाई गर्मी इतनी हो गया कि अनटॉलरेबल हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह की जो बातें है तो ये क्लाइमेट चेंज का धीमी धीमी गति से एक संकेत है। लेकिन कूप का मंडूक तो उसको अगर मान लीजिए धीरे धीरे गर्म करते रहे पानी तो उसको पता नहीं चलता है। अगर बाहर से किसी गर्म पानी में डाल देंगे तो पता चलेगा ये गर्म पानी है। तो उसी तरह का अगर उसी क्षेत्र में हम हैं और धीरे धीरे धीरे कुछ चेंजेस हो रही है, उस चेंजेस को हम लोग उतनी शायद शॉकिंगली नहीं ले पाते हैं। तो धीरे धीरे एडजस्ट हो चुके होंगे इतनी सालों से, लेकिन पर्यावरण भी अपने एक सिग्नल्स देता रहा। तो वो जो सिग्नल्स जो देती है, इस सिग्नल्स को भी हम लोग थोड़ा सा सुनते रहना चाहिए। तो वो सिग्नल्स जैसे आजकल अभी आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा हीट वेव्स है, हाँ। या फिर स्टॉर्म्स है, या फिर आपके ग्लेशियर्स का मेल्टिंग की बात करिए या राइजिंग सी लेवल, इस तरह का बहुत सारे वर्ल्ड ओवर की जो बात करेंगे तो ये सब सिग्नल होने लगा है। तो इस सिग्नल को यदि हम देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वास्तव में क्लाइमेट चेंज बहुत इफेक्टिव चीजें जो हो रही है, और इसके लिए जो हम लोग अगर मान लीजिए धीरे धीरे कोई काम करते हैं, पैसिवली हम लोग इसका रेस्पॉन्स देते हैं तो उतना पर्याप्त नहीं है। अभी हम लोग इतने सालों से थोड़ा सा करके आ रहे, कैसी नहीं है क्लाइमेट चेंज की बातें दशकों से ये भी चली रहे हैं उस तरह का। जैसे पहली बार आपने कहा पर्यावरण दिवस मनाया गया तो उसी समय बताया गया था हमारे पास एक ही प्लेनेट है, इसको बचाना चाहिए। तो 50 साल के बाद भी अगर मान लीजिए आज भी यही पे

0: लड़ाई कर रहे हैं कि हाँ एक ही प्लेनेट है, उसको बचाने की आवश्यकता है। तो हमारा जो पेस है इसको बचाने की या क्लाइमेट चेंज को फाइट करने की, इसको और तेजी से और इंटीग्रेटेड समय के रूप से हम उसको लड़ने की आवश्यकता है। इसमें
1: एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो हो रहे हैं, आपने हीट वेव की बात की, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय रिपोर्ट्स पर देखें, उस पर नजर डालें, तो भारत के जो शहर हैं वो पूरी दुनिया में टॉप करते हैं, पूरी दुनिया के टॉप लिस्ट में है गर्म शहरों के। आप क्योंकि वन से जुड़े हैं, उसके फ्लोरा फौना से जुड़े हैं, वनों में किस तरह का क्लाइमेट चेंज दिखाई पड़ता है?
0: देखिए वनों में वैसे अगर देखा जाए, सीधी बात शहरों में ही देख लीजिएगा, जहाँ पे बगैर पेड़ वाली जगह है और जहाँ पे पेड़ है, पेड़ के नीचे छाया में जब जाएंगे तो आप तुरंत ही 6-7 डिग्री का अंतर वही महसूस कर लेंगे। तो इतना निश्चित रूप से अगर वनावरण है कहीं पे, उतना क्लाइमेट आपका डिफरेंशिएशन आ ही जाता है उसमें। तो इस कारण से हमेशा वन में जहाँ पे भी है थोड़ा सा कंपैरेटिवली कंट्रोल में है, लेकिन वनों की आच्छादन जो है पूरा अगर देश भर में भी देखा जाए हमारा बहुत कम है। इस तरह की स्थिति है, इसको पूरा अगर हम लोगों की लगभग 20% पूरा राष्ट्र का वो है, 21 से 23% हमारा कवर है, और स्टेट में हमारा अभी 9% हो चुका है, 7% से लेकर के बढ़ के 9.2%। तो यहाँ के अगर वनावरण देखा जाए और जो पूरा उत्तर प्रदेश का स्टेट की देखी जाए तो ये वनावरण वैसे कम है, बाकी का इफेक्ट ज्यादा रहता है। तो वन अकेले ही इसको एक जगह से वन भूमि से ही उसको ऑफसेट करने में पर्याप्त नहीं है। हम लोगों को क्या करना चाहिए, अगर इसी को वनावरण को हमको बढ़ाना है हर जगह पे, तो हर जगह अगर जब बढ़ते रहेंगे तो जब इस वनावरण से बढ़ने से तो वहाँ का लोकल जो क्लाइमेट है
1: वो चेंज,
0: ट्री का क्लाइमेट है मान लीजिए, फॉरेस्ट का क्लाइमेट है, वो थोड़ा सा चेंज होता रहेगा, उस चेंज से नेचुरली कुछ इफेक्ट तो आई जाएगा। दिस इज परसेप्टिबल इमीडिएट रिजल्ट्स आई एम टेलिंग। लेकिन अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म की या फिर इनडायरेक्ट बेनिफिट्स की अगर आप देखेंगे, जैसे आपका सूरज की ताप मिलती है नीचे ऊपर से, तो जमीन पर जब आएगा, अगर मान लीजिए बेयर लैंड है तो सीधा सीधा जमीन उसको ऑब्जर्व करेगा, तो जमीन तपने लगेगा, तो फिर वो गर्माहट बढ़ने लगेगी। यही अगी ट्री कवर यदि है या वेजिटेशन कवर है तो वहां पे क्या होगा, वो सब ट्रीज का लीव्स ऑब्जर्व कर, उस एरिया में क्या है, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपिरेशन, तो उसकी वजह से ह्यूमिडिटी बना रहता है, उस ह्यूमिडिटी वजह से हीट है, हीट निकल के चला जाता है वहां से ऊपर वापस, तो हीट वहां नहीं रहती है, उस वजह से उस एरिया थोड़ा सा कूल रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यही एक बेनिफिट है जिसको अगर मान लीजिए इस वनावरण को अगर हम हर जगह बढ़ाने लगे तो इस बेनिफिट की वजह से हम लोग हीट को ऑब्जर्व धीरे धीरे करके उसको ट्रांसपिरेशन की वजह से, उसकी वजह से जो लैंड का हीट है वो कम होता जाएगा, तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
1: हर वर्ष बड़े पैमाने पर करोड़ों की संख्या में पौधरोपण होता है और इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट हर दूसरे साल प्रकाशित होती है, उसमें जो कवरेज एरिया है वो भी बढ़ा है जैसा कि अभी आपने बताया, फिर भी ऐसा क्या आपको लगता है कि कुछ कमी है, उसको और जो है उसकी भरपाई होनी चाहिए, और जिस तरह का परिणाम है वो नहीं आ पा रहा है? अगर क्लाइमेट की बात करें या मॉडरेशन की बात करें, हर साल जो है शहर ज्यादा से ज्यादा तपते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल आप सही बात पर बता रहे हैं, अगर इतनी हमारी उत्तर प्रदेश की जो एरिया है उसमें से हमारा 7-8% हम लोगों ने कवर कर दिया है, उसी में वृद्धि भी हो चुका है, हमारा एरिया हर बार बढ़ता रहा बिकॉज ऑफ और मैसिव प्लांटेशन, जो हमारी सरकार ने इतना जो कमिट करके अपना प्लांटेशन ड्राइव्स चला रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो एरिया है वनाच्छादन की, इसका बढ़ोतरी जरूर हुआ है, और इस बढ़ोतरी में सबकी योगदान हो इसीलिए मैसिव ड्राइव्स चलता रहता है, क्योंकि इस तरह का मैसिव ड्राइव्स चलेगा, हर बंदा प्लांटेशन में इन्वॉल्व होंगे और प्लांटेशन करते रहेंगे, लेकिन इस प्लांटेशन का ये जो भी एरिया है ये कंसिस्टेंटली चलते रहना चाहिए, लगातार चलता रहना चाहिए, हमारा इनग्रेन होना चाहिए कि ये हम प्लांट करेंगे, इसको बचाना भी है और इसको बढ़ाना भी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरिया इस प्राइवेट एरिया अपने एरिया में रहता है, तो उनको बढ़ाने की जिम्मेदारी यदि हर नागरिक अपना अपने ले लेंगे तो उनके अपने लिए भी सुविधा हो जाएगी और क्लाइमेट को वैसे ओवरऑल कंट्रोल करने में सुविधा हो जाएगी। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है, इसी को कंटिन्यूअसली आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, लेकिन आप इसको एक हैबिट बना दीजिएगा, अपना प्लांटेशन लगातार करते।
1: प्लांटेशन की बात करें तो ये तो एक स्पेसिफिक सीजन में होता है, बरसात में ही हो सकता है।
0: प्लांटेशन के लिए बरसात सबसे फेवरेबल क्लाइमेट होती है क्योंकि पानी की सिंचाई नेचुरली हो जाती है उसमें, तो उसकी वजह से। बट अदरवाइज आपका सिंचाई का साधन है तो आप थोड़ा सा उसको एक्सटेंड भी कर सकते।

0: सकते हैं, लोग कर भी रहे उसी।
1: बात क्लाइमेट चेंज और इस प्लैनेट को बचाने की है, क्योंकि हमारे पास नो प्लैनेट बी।
0: पहली बात तो हमको कार्बन इमिशंस में थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, समहाउ दी अदर। तो कार्बन इमिशंस कैसे कंट्रोल में ले आए, इसके लिए हमको एक अपनी प्लान ले आना पड़ेगा। यूज ऑफ व्हीकल्स को कम करके पूल्ड व्हीकल्स में हमको ज्यादा चलना चाहिए, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस तरह का यूज कर ले। और दूसरी बात, जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे बहुत सारे प्लास्टिक्स है या फिर इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, उसकी वजह से यदि हम ज्यादा से ज्यादा वुड का यूज कर ले। वुड क्या है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होती है उसका, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बाद उसका ट्रैप होती है वुड उसी में। अगर उस वुड को हम यूज करेंगे तो इट दैट कार्बन सिक्वेस्टर्ड उसी के अंदर ट्रैप्ड रहेगा, तो ट्रैप रहेगा तो फिर रिलीज नहीं होगा
1: वातावरण में।
0: तो जब वातावरण में रिलीज नहीं होगा, कार्बन इज वन ऑफ द मेजर ग्रीन हाउस गैसेस, तो उसमें ट्रैप रहेगा तो हमारा ग्रीन हाउस गैस भी कंट्रोल में रहेगा, तो हीट बढ़ना भी कम हो जाएगा, एक चीज ये हो जाएगा। दूसरा चीज, हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन वाली टेक्निक से, जैसे आमतौर पर सभी लोग सारा बताते हैं कि लाइट ऑफ करना चाहिए, एसी कम करिए,
1: छोटी छोटी बातें,
0: एसी इस तरह का, तो लाइफ स्टाइल चेंजेस, मिशन लाइफ हमारी एक चलती है पूरा, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये प्रोग्राम है, तो मिशन लाइफ में यही बताया जाता है कि लाइफ स्टाइल चेंजेस आप अपनाइए, ताकि हम लोग हमारे एनवायरमेंट को बचाने में हम लोग थोड़ा सा अपनी योगदान जाने अनजाने देते रहेंगे इस तरह का, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसके तीसरी बात, वही जो हमारा मैसिव प्लांटेशन ड्राइव्स है, उसमें एक्टिवली भाग लीजिएगा, क्योंकि सबसे आसान तरीका इसको अगर बीट करना है कि पेड़ लगाइए, वनावरण बढ़ाइए, और उसका वृक्षादन जब बढ़ेगा तो हमारा टेम्परेचर एज इट इज कंट्रोल में आने की कोशिश करेगा।
1: बहुत अच्छे संदेश आपने हमारे युवाओं को दिए, और निश्चित तौर पर हमें एक ये ऐसा दिवस है जिससे हर किसी की जिंदगी जुड़ी है, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन के इर्द गिर्द इसकी थीम है। एंड रविंद्र साहब ने बताया कि हम छोटी छोटी आदतों से अपने पर्यावरण को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो इस समय भीषण हीट है, भीषण गर्मी है, उससे कुछ हद तक निजात भी पा सकते हैं, और आने वाले जो हमारी जनरेशन है, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल कंजम्पशन की बात करते हैं, तो सर के मैसेज में भी सस्टेनेबल कंजम्पशन कहीं था कि डेवलपमेंट के साथ अब कंजम्पशन भी, हमें उसकी तरफ भी देखना होगा, सोचना होगा। सर आप आए और विश्व पर्यावरण दिवस पर इतना अच्छा संदेश दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: अभी आप विशेष भेंट वार्ता विश्व पर्यावरण दिवस पर श्री एन रविंद्र, एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश वन विभाग से आशीष चतुर्वेदी की बातचीत सुन रहे थे, जो केंद्रित थी जलवायु परिवर्तन पर। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को है, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समाचार के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होंगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास

0: कर रहा है। इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इसे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं एक और आवश्यक सूचना सुनिए। दिनांक 8 जून 2026 दिन सोमवार, समय 5:30 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में इस बार चर्चा का विषय है कब्ज और अपच से जुड़ी समस्याएं और निदान। इस विषय पर श्रोताओं की समस्याओं पर सुझाव देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र कुमार बनौधा। इनसे बातचीत करने के लिए आपको मिलाना होगा आकाशवाणी का टेलीफोन नंबर 7376804090। समय याद रखिएगा 8 जून 2026 को शाम 5:30 से। सूचना समाप्त हुई। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। श्रोताओं अब वक्त है कार्यक्रम शाम सुहानी में फिल्म संगीत का, बस एक छोटा सा अंतराल।
1: अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट हैं।
2: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें, गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध न करें।
1: चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल न करें, और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुनें।
2: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
1: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आके अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
2: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
1: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
0: कार्यक्रम शाम सुहानी सुनने वाले सभी श्रोताओं को विवेकानंद का प्यार भरा नमस्कार। मोहम्मद रफी की आवाज में कार्यक्रम का यह पहला गीत आरजू फिल्म से, गीत है हसरत जयपुरी का और संगीत शंकर जयकिशन का।

आज दो फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज में गीत था हसरत जयपुरी का और संगीत शंकर जयकिशन का। और अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज फिल्म है आपकी कसम, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इसी गीत के साथ दीजिए विवेकानंद को कार्यक्रम शाम सुहानी से इजाजत। सुंदरी आकाशवाणी अयोध्या। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम सुहानी। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 6:20 होने को हैं। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: समर्पितम् अस्ति। श्रीशाहः सीमप्रबन्धनस्य तु दृढीकरणाय स्थानीय नागरिक प्रशासनेन सह उन्नत प्रौद्योगिक्याः एकीकरणं कर्तुं स्मार्ट् बॉर्डर रणनीतिम् इति उद्घाटितवान्।
1: जनसांख्यिकी का परिवर्तन चाहे त्रिपुरा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, जनसांख्यिकी का परिवर्तन हम सीमा के छिद्रों के माध्यम से नहीं होने देंगे, ये हमारा अटल विश्वास है और अटल संकल्प भी है। ये जनसांख्यिकी के परिवर्तन को रोकने के लिए बाड़ लगाई गई है।
0: अद्य विश्व पर्यावरण दिवस समग्रे विश्वे आमात्यते। पृथिव्यां जीवनस्य संरक्षणाय पर्यावरण जागरूकतायाश्च संवर्धनार्थं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रमस्य अंतर्गतं अयं दिवसः प्रतिवर्षं आयोज्यते। प्रशासनेन दिल्ल्यां 18 नमो ऑक्सीजन पार्क इति उद्यानानि उद्घाटितानि। अस्मिन् अवसरे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाहः, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहश्च देशवासिभ्यः शुभासंसाः प्रदत्तवन्तः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् मातुः नाम्ना एकः वृक्षः इति अभियानं वनक्षेत्रवृत्तौ महत्वपूर्णं योगदानं दत्तवत्। तेन उक्तं यत् अयं दिवसः पर्यावरण संरक्षण सतत विकासम च प्रति अस्माकं प्रतिबद्धतायाः प्रतीकः अस्ति। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगनः अद्य नवदिल्ली नगरस्य ऑल इंडिया रेडियो परिसरे एक पेड़ मां के नाम अभियानस्य भागरूपेण एकं वृक्षं रोपितवान्। आकाशवाण्या सह संभाषमाणः डॉक्टर मुरुगनः नागरिकेभ्यः आह्वानं कृतवान् यत् ते पर्यावरणस्य रक्षणस्य प्रतिज्ञां कुर्वन्तु। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् आगामिनोः द्वित्रि दिवसयोः मध्ये मध्य अरब सागरस्य केषुचित् अधिकेषु भागेषु समग्रेपि गोवा प्रदेशे, महाराष्ट्रस्य, आंध्र प्रदेशस्य, कर्नाटकस्य च केषुचित् भागेषु, तमिलनाडु राज्यस्य अवशिष्टेषु भागेषु तथा पूर्वोत्तर राज्यानां केषुचित् भागेषु दक्षिण पश्चिम प्रावृतः आगमनाय परिस्थितयः अनुकूलाः सन्ति। पुरुषाणां आ 18 वयस्यः एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंक अंतरालेन पराजितम्। जापान इदं अपरतः महिलानां अंडर 18 एशिया कप प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम् इति वार्ताः।
2: एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अध्यक्ष से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के।
3: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
4: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
2: राजेश श्रीवास्तव और साथियों की आवाज में सुनिए ये लोकगीत।

एन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682705721।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के, FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं।

एफएम बैंड पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
1: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
0: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
1: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
1: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
2: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
3: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
2: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत, बालकनी या घर

0: के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
1: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
0: ध्यान रहे, मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है। बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
1: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
0: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।
2: जय हिंद। देखा पंचो, आज अपने सभी विश्व पर्यावरण दिवस मनाई थी, तो सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस के आप सबका हार्दिक शुभकामना। और एक बात बताई ना, एक बात हमें यादें आई है, पेड़ लगाओ भविष्य बचाओ। कहा गया है ना कि आज अपने सभी 5 जून का विश्व पर्यावरण दिवस मनाई थी। रेडियो अपने सबका बोले सिखावत है, तो पेड़ अपने सबका सांस लिए सिखावत है। ये बात जान लिया अपने आप। और एक बात और आपका बता दी ना कि रेडियो कहा था कि हमारा आवाज हवा में रहा था, तो एक बात यह आप याद रखा कि अगर आपके आवाज हवा में रहा था ना, तो पंच भैया का विशेष ध्यान दिए की जरूरत यह है कि पेड़ हवा का साफ करत है ना, पते वाली बात। तो अपने सबका ये सब विशेष जोन बात यह है, ये बहुत ध्यान में रखे वाली है। काहे से ना, पंच भैया जान लिए कि हर वर्ष 5 जून का विश्व पर्यावरण दिवस अपने सभी मनाई थी। यह का उद्देश्य लोगन का पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करब और प्रकृति के प्रति अपन जिम्मेदारी के एहसास करा हुआ है। स्वच्छ पर्यावरण न केवल अपने स्वास्थ्य की तय आवश्यक है, बल्कि आ वाली पीढ़ी का ना उनके भविष्य का सुरक्षित करे के ई नींव आए। आज बढ़त प्रदूषण, जंगल के कटाई, जल स्रोत के क्षरण, जलवायु परिवर्तन, ऐसे तमाम समस्या है ना जोन पूरी दुनिया के सामने चुनौती बन के खड़ी है। एक बात आपका कही, सबसे पहले आप जान लिया कि जोन बढ़त तापमान है, अनियमित वर्षा, प्राकृतिक आपदा अपने सब कई संकेत देती है ना कि अगर अपने सब समय रहते पर्यावरण की रक्षा ना करब तो एक गंभीर परिणाम अपने सबका भुगते का पड़े। और पर्यावरण संरक्षण की तय बड़ा बड़ा प्रयास के साथ साथ छोटे छोटे व्यक्तिगत कदम भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभावत है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगावे चाहिए, जल संरक्षण करे के चाहिए। एक बात आपका और कहा भाई, जो उन बाप दादा सब कह रहे ना, अपने सब प्लास्टिक के उपयोग कम करी। और जो उन बाप दादा लेके झोला घरे से जात रहे बाजार, आज वह प्रथा का चलावे के जरूरत है। यानी स्वच्छता का अपने जीवन का हिस्सा बनाई, ऊर्जा के बचत, प्राकृतिक संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग, ये सब पर्यावरण संरक्षण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभावत है। पंच भैया आपका यह बताई ना कि पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। काहे से, संतुलित उर्वरक के प्रयोग, जैविक खाद जो न अपने सभी बनाई थी, तो जैविक खेती का बढ़ावा दी, माटी की उर्वरता बनाए रखता है, न केवल उत्पादन बढ़ाई बल्कि पर्यावरण का भी सुरक्षित रखा के ताई एक कदम अपने सभी आगे बढ़ाई। तो आओ आज ये विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सभी ये संकल्प ली कि प्रकृति की रक्षा हम ही करबे, एक पेड़ अवश्य लगाऊबे और अपने आसपास के वातावरण का स्वच्छ और हरित रखे में अपन योगदान देवे। कहे सब कहा गवा है ना, स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन के आधार है। तो पंच भैया आप अपन बात ही जानिन गवा कि आज सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी परिवार या आकाशवाणी अयोध्या आपसे एक बात कहते ना कि अपने सबका अगर भविष्य बचाव का है तो एक पेड़ जरूर लगा का है। कहा गवा है ना, वृक्ष कबो न फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। और एक बात ये अपने आप याद रखे रहे कि जवन आज आप पौबा वह काल कटबा। ये न सोचा कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हुए, ये अपने मन में याद रखे रहा कि जवन बोबा वह कटबा। ये लिए अपने सबका बढ़िया से बढ़िया काम करे का है और खूब पेड़ लगा का है, खूब हरियाली फैला का। एक बात और हमें याद आई ना कि अब इन बात के तापमान बहुत बढ़ाता है, तो सोचे में खेती कैसे हुई, जायद फसल के प्रबंधन कैसे करिए। पंच भैया ये बढ़त तापमान में काव काव कह सकते, यह अपने खेती एक टाइम बहुत फायदेमंद है। आपदा में अवसर कहूँ पढ़े रहना हम आपका बताई कि अगर क्यों तुम्हें कोनो चीज लाए मारता है, माना ईटा फेंक के मारी तो तू ईटा फेंक के ना मारा, वो ईटवा जोड़ के अपन घर बना लिया ना, वह माँ अवसर खोजा तो कैसे अवसर है। ऐसे कुछ बताते हैं डॉक्टर राजकुमार भैया जो सेवानिवृत्त हैं अपने आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से। इनसे बतवाते हैं अपने दिलीप कुमार मौर्य भैया, चला सुना जाए।
3: ये शायद गर्मी के मौसम चलत बा और दिन ब दिन तापमान जौन है बढ़त जात बा, तो ये समय जौन पंचे अपने खेती में

0: जायद के फसल ले है, जैसे उर्द भय, मूंग भय, जोन्हरी भय, बाजरा भय, तमाम मेयर के फसल अपने खेती बाड़ी में है। तो यह समय के जायद की फसल में जौन है बढ़त तापमान में अपने फसल का कैसे बचावा जाए, यह विषय है कि बढ़ते तापमान में जायद फसलों का प्रबंधन कैसे किन जाए। एक बतावे बदे अपने पंचायती में आवा है डॉक्टर राजकुमार भैया, जो उनकी सेवानिवृत्त मृदा वैज्ञानिक आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले पंचायती में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले अपने पंचन का ही बताएं डॉक्टर साहब कि जायद फसल हुआ का है, कब लीन जात है।
1: किसान भाइयों, जायद फसल जो सामान्यतः रबी और खरीफ मौसम के बीच में अप्रैल से जुलाई माह में उगाई जाती है
0: जी,
1: और जिसमें प्रायः मक्का, बाजरा, चरी, उर्द, मूंग, मूंगफली, गन्ना, मेंथा, इस तरीके से कुछ सब्जियां और चारा वाली फसलें। और इस मौसम में चूंकि तापक्रम जो है 43 से 48 डिग्री तक पहुंच जाता है
0: जी,
1: और जो कि जून का महीना चल रहा है, तो किसान भाई कम से कम ये खेती ले चुके होंगे, तो उस पर इस तापक्रम का प्रभाव ना पड़े और फसल नुकसान ना हो, इसी पर मैं आज कुछ आप लोगों को अपनी बातें चर्चा मतलब उसमें रखना चाहूंगा।
0: सबसे पहले ये बताएं कि यह जो फसल है जायद फसल वाली, जो तमाम मेरे के अपने पंचन के खेते में फसल है, तो उनका जब तापमान धीरे धीरे देखो दिन ब दिन बढ़त भाई, तो विशेष रूप से का ध्यान रखना जरूरी है उन्हें।
1: किसान भाइयों, ऐसा है कि जैसे तापमान बढ़ रहा है और आप फसल अपने खेत में बोए हुए हैं तो उसमें या बोने जा रहे हैं, चूंकि दोनों तरीका हो सकता है, तो पहली बात यह है कि जो अगर बोने जा रहे हैं तो बीजों का अंकुरण पर दर कम हो जाएगा, फसलों की अगर बो चुके हैं तो उसकी बढ़वार रुक जाती है, फूल जो मुरझाकर गिर जाते हैं ज्यादा तापमान से, प्रकाश संश्लेषण अनियमित हो जाता है कि मतलब जो उनकी श्वसन दर है वो बढ़ जाती है, जिससे फसल और दाना बनना बिल्कुल कम हो जाता है और हमारा उपज एकदम घट जाता है, उत्पादन और उत्पाद की गुणवत्ता और उसका जो क्वालिटी है वो भी घट जाती है। तो ये जो तापमान बढ़ रहा है, इस परिस्थिति में किसान भाइयों को क्या करना है, इससे बचने के लिए हम कुछ उपाय आप लोगों को बताना चाहेंगे आज।
0: अच्छा, ये समय जोन फसल जैसे उर्द भय, मूंग भय, जोन्हरी भय, ये सब अपने पंचायत खेतन में बोए बैठाई है, तो उनका बचाव इतना पहले क्या करें वो का बताओ।
1: किसान भाइयों, पहले तो ये है कि तापमान बढ़ रहा है तो इसमें मिट्टी में वो नमी बिल्कुल बनाए रखें, बार बार जो है हल्की सिंचाई करें और खेत को पूरी तरह सूखने ना दें, सुबह जल्दी या शाम को सिंचाई करना बेहतर होता है, और इसके बाद वो मल्चिंग भी अपनाएं, तो जैसे फसल अवशेष है, गेहूं का भूसा, धान, पुआल, सूखी घास, सरसों भूसा, और जैविक खाद अगर बनाए हुए हैं या कहीं से लाए हुए हैं खरीद करके, तो उससे भी मिट्टी के ऊपर ढक दें, तो उससे नमी संरक्षित रहेगी और जो है उड़ नहीं पाएगी और बढ़ते तापक्रम का प्रभाव फसल पे कम होगा। और किसान भाइयों, इसमें बहुत देखने वाली बात है कि आप लोग संतुलित उर्वरक का प्रबंधन करें, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है तो इसमें बहुत अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग ना करें, फसल बोई हुई है उसमें आप टपक सिंचाई या फोलियर स्प्रे से जलीय उर्वरक से पत्तियों पर छिड़काव करें, जो कि बढ़ते तापक्रम के प्रभाव को कम करते हैं। अब हम आप जो है कुछ उर्वरक का बताएंगे जिससे कि मतलब फसलों को आप बढ़ते तापक्रम से बचा सकते हैं। जैसे पोटेशियम सल्फेट है, इसका 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में पौधों में जो है पानी का सल्फेट बना करके छिड़काव कर दें, तो ये जो है उसके पानी का संतुलन पौधों में बनाए रखेगा
0: जी।
1: और इस तरीके से जो है वो है बोरान है, 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में बना करके छिड़क दें उसके ऊपर, तो फूल जो है झड़ रहा है जो आपके फसल का वो रुक जाएगा, रुकता है। इसी तरीके से पोटेशियम नाइट्रेट आता है, जिसका 1% घोल 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसका बना करके और फसल में जो है इसका छिड़काव कर दें, तो इसमें जो है जो उसका वास्तुशन का जो बढ़ जाता है पौधों का, उसको वो संतुलित और मेंटेन रखेगा। इसी तरीके से एक आती है खाद कैल्शियम नाइट्रेट, ये भी इसकी मात्रा भी 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में बना करके घोल बना लें और फसल में जो है इसको छिड़क दें, तो फसल में जो है तापक्रम की जो गर्मी, बढ़ते तापक्रम की जो गर्मी है उसको सहने की क्षमता प्रदान करेगा ये। किसान भाइयों, जो भी हमने उर्वरक आपको बताया, इसको जो है फोलियर स्प्रे से करते समय एक बात का ध्यान रखें, जितने भी उर्वरक है एक उर्वरक को एक बार में छिड़काव करें
0: जी,
1: उसको मिला करके कभी उसको खेत में ना डालें। और ये जो हमने बताया, जो इसके पहले बताया कि फसलों की बढ़वार, फूल में जाकर गिर जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण अनियमित हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों में जो हमने उर्वरक का नाम बताया, इसको जो मात्रा बताई उसको जो है प्रति लीटर पानी में बना करके और एक एक उर्वरक एक दूसरे दिन तीसरे दिन इस तरीके से उसको छिड़क दें,

0: और शाम के समय छिड़के या सुबह छिड़के तो आपको बढ़ते तापक्रम का प्रभाव पौधों पर कम पड़ेगा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये चीज जो है उर्वरक आप जो छिड़कते हैं अपने पंचन का बताओ तो, ये सिंचाई से पहले या सिंचाई के बाद कितना दिन पे करें?
0: नमी होना चाहिए।
1: अच्छा,
0: खेत में नमी होना चाहिए और शाम को डालें या सुबह डालें, मतलब बहुत ज्यादा धूप में डालें। और इस उर्वरक को डालते समय और उसमें कोई जो इस तरीके से शैम्पू आता है या जो है या इजी आता है ये उसमें डाल दें तो ज्यादा वो उत्प्रेरक का काम करेगा और वो पत्तियों पर चिपक लेगा तो उससे जो है उसमें जो है उस सोखने की क्षमता उसमें पौधे में बढ़ जाएगी, देर तक उसमें स्थिर रहेगा तो ज्यादा काम करेगा। इसमें जो और भी कुछ बात आपको बताएं कि किसान भाइयों जैसे खरपतवार प्रबंधन करें, क्योंकि जो खरपतवार उसमें आपका मेन फसल के अलावा जो उसमें उगे होते हैं वो नमी को सोख लेते हैं, फर्टिलाइजर को ले लेते हैं, तो मेन जो आपका फसल है उससे कंपटीशन बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कहें कि गर्मी में बार बार सिंचाई की जरूरत पड़ा था और जितना सिंचाई हुआ तो हिसाब से खरपतवार भी हुआ था।
0: बिल्कुल, तो वो जो है उसको नमी को जो है सोख लेंगे जो कि मेन पौधे को मिलना चाहिए। तो इसलिए जो किसान भाइयों को चाहिए कि उसमें खरपतवार का जो है निकाल दें जो मुख्य फसल से, और अपने खेत को नियमित रूप से उसको देखते रहें, निगरानी करते रहें कि फूल गिर रहा है, कि पौधा मुरझा रहा है, कि पानी उड़ रहा है, कि क्या हो रहा है, इसमें देखते रहेंगे तो इनको जागरूक रहेंगे तो ये उपाय करके और फसल उत्पादन की बढ़ा सकते हैं अपना। वो ज्यादातर कोशिश करें कि जैविक खाद डालें, कंपोस्ट खाद या जैविक खाद जो हमने मल्चिंग बताया है उसको उपयोग करके ये जो है जो नमी को संरक्षित करके और अपना उत्पादन ये बढ़ा सकते हैं।
1: एक साथ साथ डॉक्टर साहब, जैसे बुआई के पहले से ही अगर पंचे यह ध्यान रखें कि ऐसा खेते में बुआई करें कि जल निकासी की व्यवस्था भी हुए, कहें कि बीच में देखो पानी भी बरस गया है, तेज वर्षा है तो हाँ। पानी भर गया तो जो ने खेते में मान लो उर्द है पंचे बोए है, ज्यादा पानी हो गए तो ओका बचा रखता है क्या करें इस समय पे?
0: ज्यादा पानी हो गया हो तो उसमें इस तरीके से नाली बनावा कि उस नाली के द्वारा पानी निकल जाए या ढलान युक्त जो है वो रहे तो पानी निकल जाए, इसलिए कि मतलब उसमें स्टोरेज ना होने पावे पानी। और जो है जो हमने बताया कि टपक सिंचाई या फोलियर स्प्रे या इस तरीके से पानी बार बार, जैसे ज़्यादा पानी भी ना लगे और आपका जो है पौधों को मिलता भी रहे, तो सिंचाई जो नमी मेंटेन करने के लिए फर्टिलाइजर को संतुलित डालें और जो है जो हमने बताया उसको उसी तरीके से उपयोग करें तो करके अपना नमी संरक्षित करके और पौधों का जो गर्मी के कारण जो उनके लाइफ है उसको बचा करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाई
1: जी। अच्छा एक बात और डॉक्टर साहब, जैसे पानी बरसा है खेते में उर्द जोन है खूब बढ़िया फली आई गई रही, कुछ पाक रहा कुछ ना पाक रहा तो बंचे होकर कुछ तूड़िन कैसो कई के बचाइन होकर, लेकिन आगे जोन बाय अब पौधा ठीक है वहीं कोनो दिक्कत ना भवा है तो वो सुरक्षित रहा है और फूल बढ़िया आवे फल बढ़िया आवे करता है कौन उर्वरक का इस्तेमाल करें?
0: उसके लिए यही किसान भाई करेंगे कि जैसे नाइट्रोजन है तो उसमें ज्यादा नाइट्रोजन ना डालें, लेकिन जो हमने बताया कि ये पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम नाइट्रेट है या जो कैल्शियम नाइट्रेट है इसका जो हमने मात्रा बताया कि 1% का घोल, मतलब 1 ग्राम प्रति लीटर
1: जी,
0: 2% का भी बना रहे 2 ग्राम, ज्यादा मात्रा उसमें ना बढ़ावे और नाइट्रोजन ज्यादा ना डालें उसमें। लेकिन ये है कि फलत उसमें चूंकि एक बार तुड़ाई कर चुके हैं तो फलत दोबारा और बढ़ाने के लिए उसमें नमी जब वो मेंटेन रखेंगे
1: जी
0: तो फलत आती रहेगी और जुलाई में जब बरसात होगी उससे पहले उसमें फलत तुड़ाई करके और अच्छी उपज ले सकते हैं किसान भाई।
1: बिल्कुल पंचे ये ध्यान में रहा है कि ज्यादा खाद दे दे से या ज्यादा पानी दे दे से अपन उपज ना बढ़े, संतुलित मात्रा में हो चाहिए,
0: मात्रा में उर्वरक डालें, मल्चिंग करें, संतुलित मात्रा में उर्वरक डालें
1: जी,
0: खाद का प्रयोग करें और इस तरीके से संरक्षित नमी को बचाने का ही प्रयास करें तभी जो है अच्छी फसल पैदा हो, क्योंकि टेम्परेचर 48-49 तक पहुंच जाता है
1: जी,
0: तो उसमें जो नमी है इनकी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वो ऊपर चला जा रहा है, पौधों को मिल ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए जो है वो प्रिकॉशन बताया सावधानी पूर्वक ले और ले करके जो है किसान भाई अच्छा उत्पादन प्राप्त करें।
1: और एक साथ चला चलाओ का अपने पंचन का बताओ चलिए कि ताकि उनके फसल जो है सुरक्षित रहे और बढ़िया पैदावार हो।
0: हम यही बताना चाहेंगे कि चूंकि जून का महीना ये चल रहा है और तापमान जो है 45.5 डिग्री के करीब करीब पहुंच चुका है
1: जी,
0: तो फसलों में जो सही तरीका अपना करके पानी पोषण और तापमान तीनों का संतुलन जो है बनाए रखें, बढ़ते तापक्रम का प्रभाव जायद फसल पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा।
1: देखो भैया कितनी बढ़िया जानकारी अपने डॉक्टर राजकुमार भैया जो उनकी सेवानिवृत्त मृदा वैज्ञानिक आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से, डॉक्टर साहब हमारे पंचायती में आए के अपने पंचन ताई इतना बढ़िया बढ़िया जानकारी बताए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: का पंचो ये तो रहे डॉक्टर राजकुमार भैया और इनसे बतवाते दिलीप कुमार मौर्य कि बढ़ते तापमान में जायद फसलों का प्रबंधन कैसे पंच भैया।

और एक बात में पंच भैया और आवत ना, देखा कुछ चीज ऐसी है जोन कबो भुलाए ना भूलत। जैसे केहू तोरे साथे बैठा हुए मुहे पर खूब बढ़िया चापलूसी करत हुए और तोरे लग से हटे और तुरंत कहे कि भैया हो मारा इनके कैसे मनाइन क्यों ना है ना। अरे तो यह सुन के तो बहुत खराब लागत है। दूसर चीज कौनो बात तू जानत हुआ और तोहरे मुहे पे आए के मनाई बतावे कि भैया फलाने तो यस कहत रहे हो तुम्हें सच्चाई पता है तो लागत है कि मनाई की यार कई रूप है। एक कहते आस्तीन में सांप जेका अपने सबका पहचाने के जरूरत यह है। मनाई कहा था ना कि दुश्मन भले मिल जाए लेकिन मतलबी यार ना मिले छी। काहे से मतलबी यार किसके जो दम लगा के किसके, यानी के काम हो गया तो फिर तू कबो न पूछे। ये ले सन मनाई से का रह चाहिए सावधान। अब पुरानी सब कहे हैं एकदम जाने रहा कि दूधे जरी बिलार माठो फूक के पियत है तो बुद्धिया भैया बादाम खाए से ना आवत ठोकर खाए से आवत है। और मने कहा था ना या तो लई के सिखबा या तो दई के सिखबा। अब तोरे ऊपर रहा है कि पुरानियन के बात मान के सीख लिया बा कि तुह बाजार में जावा। काहे से काहे बोवा एक बात हमें याद आई गे ना कि जेकरे पाँव न फटी बेवाई ऊ का जाने पीर पर आई है कि नहीं। तो यही ले तोरे समझे कब आए जब ऊंट पहाड़ के नीचे आई लेकिन ऐसे गौ नहीं लेके आई। चला मजा लीन जाए। शशिकांत मिश्र उनके साथी का आवाज में ये प्रेरणा गीत।

पंचो देखा ये तो रहे शशिकांत मिश्रा उनके साथी भैया, लेकिन एक बात आपका बताई खास के की है शायद गर्मी बढ़ी है ना, जैसे बताएं कि आपदा में अपने सबका अवसर ढूंढा एक समय आए तो यह शायद जोन पंच भैया के खेत खाली है तो हमें गर्मी के जोताई हम कह दिए काहे काहे काहे से गर्मी अपने चरम पर है, खूब बढ़िया गर्मी पड़ती है और फसल कटाई के बाद यही समय गर्मी जब पड़त है तो अपने सबका खेत में अगर जोताई करी थी तो बहुत लाभप्रद होते है। सोचा कैसे आपके मन में बात जरूर आते कि कहीं खेत जोत के छोड़ दी तो यही ले ओका जोत के छोड़ जरूरत है ना कि मिट्टी में छुपा जो उन कीट है उनका अंडा है जो उन रोग पैदा करे वाले जीवाणु है फपूंद है ये तेज धूप के संपर्क में जैसे आवते ना पूरी तरीके मर जाते यानी नष्ट हो जाते जैसे अगली फसल में कीट और रोग के प्रकोप कम हो जाते। साथ ही खेत में उगे वाले जो खर पतवार हैं पंच भैया याद रखिया वो नहु नियंत्रित हो जाते यही लिए अपने सबका गर्मी की जोताई में मिट्टी भुरभुरी हो जाते अगर गर्मी की जोताई की तो बढ़िया माटी भुरभुरी हो जाए वर्षा के पानी की मात्रा जो भूमि में कम जात रहा ना खूब बढ़िया से समाहित हुए जैसे अपन जो जल स्तर है वो बढ़ावे में मदद मिले और फसल के जड़ के ना बहुत बढ़िया से विकास हुए। गर्मी के जोताई की अगर बात करी तो पंच भैया का कैसे करे चाहिए ये अपने आप याद रखे रहा कि अगर फसल काट लिया तो ओकरे बाद ओके गहरी जुताई मिट्टी पलटे वाले हल से या डिस्क प्लाउ से करे चाहिए। जुताई के बाद खेत का कुछ दिन तक खुला छोड़े चाहिए ताकि तेज धूप मिट्टी के निचली परत तक पहुंच सके और अपने जितना भी तुहार आवश्यकता हुए ओकरे अनुसार में पाटा लगाए के खेत का बढ़िया समतल बनाए दिए चाहिए। ये लिए अपने सबका एक बात चलत चलत विशेष तरीके से बताऊं

कि गर्मी की जुताई एक सरल लेकिन अत्यंत उपयोगी कृषि काम है जो मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार लाए के बेहतर उत्पादन प्राप्त करे में बहुत सहायक होते है। तो ये पंच भैया मार जान गए और एक बात हुई है कोई निश्चित रूप से यह तरीके से अपने पंच भैया गर्मी के जुताई जोन पंच भैया ना के होंगे फटाफट कर लेंगे। लेकिन एक बात और आपका बता दी कि आकाशवाणी अयोध्या पे अपने से भाई ना यह शायद सोची थी कि भैया मंडी से का भाव मिला हुए अब मौसम का जानकारी तो सबसे पहले अयोध्या मंडी से जोन थोक भाव मिला रहा अपने सबका कुंटल में वो आपका बतावत चली। चावल का मन रहा 3060 रुपए प्रति कुंटल, गेहूं दड़ा रहा 2585 रुपए प्रति कुंटल, मक्का पीली रही 2400 रुपए प्रति कुंटल और उड़द दाल काली रही 9200 रुपए प्रति कुंटल, चना देसी 6400, मसूर 7150, अरहर दाल 10950, आलू सफेद 7095, प्याज लाल 1250, टमाटर 1400, लहसुन 7050, तरोई 1200, खीरा 2000, बैगन 2000, हरी मिर्च 3200, कद्दू 1200, अदरक 8000, शिमला मिर्च 2670, भिंडी 1500, लौकी 1600, करेला 1250, केला पक्का 2790, नींबू 7400, पपीता 2790, सेब 11850, अनार 7600, गुड़बट्टी 5125 और चीनी भाव रहा 4130 रुपया प्रति क्विंटल। ये तो रहा जो हमें अयोध्या मंडी से आज थोक भाव मिला रहा कुंटल में। लेकिन एक बात आपका और बता दी, आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के मौसम विज्ञान विभाग से जो हमें जानकारी मौसम के मिली है वो मिली है अधिकतम तापमान 38 डिग्री जो सामान्य से 1.5 डिग्री कम है, न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री यो सामान्य से 2.2 डिग्री ज्यादा है, सापेक्षिक आर्द्रता जो अधिकतम रही वो रही 83% और सापेक्षिक आर्द्रता जो न्यूनतम रही वो रही 50%, हवा की गति रही 3.1 किलोमीटर प्रति घंटा, हवा के जो दिशा रही वो रही उत्तरी पश्चिमी, वर्षा तो आज नहीं भय और आने वाले 24 घंटा के बारे में अनुमान है ना कि अपना यहाँ हल्के से मध्यम बादल छावा रही, वर्षा ना हुई और हवा सामान्य गति से पूर्वा चले के संभावना है, पूर्वा पछुआ दोनों चल सका था एले पंच भैया का सतर्क रहेगा। ये तो रहा आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के मौसम विभाग से जो हमें मौसम का जानकारी मिली रही। काल पंच भैया सोचत हुई काव रहे तो काल रही किसान वाणी कार्यक्रम और पंच भैया अपन नुमा प्रोग्राम सुनबे करिए सब बाजार भाव गीत गौनाई बात बत कहीं सब रही। लेकिन देखा अपन समय कहता है ना कि चला जाए घरे क्वारी तो यह वादा के साथ फिर कहियो यही कार्यक्रम कृषि जगत में आपसे फिर मुलाकात हुई। तब तक किता है हमें यानी रामू का दी अनुमति। जय हिंद।

श्रोताओं, आइए आपको बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ देर बाद यानी 7:30 पर आप सुनेंगे पॉडकास्ट श्रृंखला के अंतर्गत प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। मेहमान होंगे आकाश गुप्ता। रात 8:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत गुंजन और 9:15 से कार्यक्रम महफिले गजल। 9:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हमारी कल की प्रसारण सभा में सुबह 7:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। 7:30 से कार्यक्रम अमृत कलश। 8:15 से कार्यक्रम होगा सुरसंगम, जबकि दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या आप सुन सकेंगे 8:00।

0: 30 मिनट से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे घर की गंगा नाटिका, लेखक हैं कृष्ण स्वरूप सक्सेना और निर्देशक प्रकाश सक्सेना। सुबह 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत, 9:30 से कार्यक्रम बातें आसपास की और 12:30 से अवधि लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। दोपहर 1 बजे से सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। दोपहर 1:30 से कार्यक्रम होगा कुछ तुमने कहा। 2 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतांजलि और दोपहर 2:30 से महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत, जिसमें आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली। जी हां श्रोताओं, कल है शनिवार और कल यानी शनिवार को हम प्रसारित करते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली। विषय होगा ईंधन बचाने में क्या क्या विकल्प अपनाती हैं आप। कार्यक्रम विवाणी का समय होगा शाम 5 बजे। योग और एकाग्रता विषय पर होगी चर्चा। हमारी धरोहर में जानेंगे महाबलीपुरम के स्मारक समूह के बारे में। रेडियो रिपोर्ट में सुनेंगे कलेक्ट्रेट अयोध्या में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह विषय पर आयोजित बातचीत और आर्थिक जगत में एनपीए के बारे में भी जानेंगे। शाम 5:30 से कार्यक्रम लोक संगीत, शाम 6:10 से कार्यक्रम फिल्म संगीत। शाम सुहानी लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वरगांव के आप सुन सकेंगे 6:30 से। 6:45 से कार्यक्रम होगा किसानवाड़ी, मोटे अनाजों की खेती विषय पर होगी चर्चा। आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के सस्य विज्ञान विभाग के सह प्राध्यापक डॉक्टर श्याम वीर सिंह की वार्ता आप सुनेंगे। धान की उन्नत प्रजातियां एवं नर्सरी डालने के वैज्ञानिक खेती। भेंट करता है प्रभाकर शुक्ला। बाजार भाव और मौसम का हाल तो होगा ही। 8:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें होगी अभिनेता सुनील दत्त पर चर्चा। 9:15 से कार्यक्रम महफिल गजल और 9:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। श्रोताओं, तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। अब से कुछ देर बाद यानी 7:20 से आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। समाचार के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम महाभियान का किया आगाज, कहा पौधरोपण और जल संरक्षण कर जनता भी निभाए जिम्मेदारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में वायुयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ, कहा वायु प्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है बड़ा कदम। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज हुआ समापन, अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया बल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बृहद पौधरोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम महाअभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ पौधरोपण लक्ष्य के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम पौधरोपण महाअभियान 2026 के लोगों का भी अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें और पेड़ लगाकर प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प लें।
1: 5 संकल्प हम सबको इस अवसर पर लेने

0: होंगे। एक हर नागरिक एक पेड़ माँ के नाम पर अवश्य लगाएगा, कम से कम एक पेड़, यह हर नागरिक का दायित्व है। दूसरा, पेड़ लगाना ही नहीं, उसकी सुरक्षा का दायित्व भी लेना है, हर एक गोर से उसे बचाना है। तीसरा, जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। चौथा संकल्प होना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह रोके, उससे भी हमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान के साथ हमें वो करना पड़ेगा। और अंतिम जो संकल्प है वह प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना।
1: कार्यक्रम में विश्व बैंक के सहयोग से 2741 करोड़ रुपए की लागत वाली उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंध परियोजना का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही श्रावस्ती स्थित गुलेरा केन नाला को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विश्व बैंक और प्रदेश सरकार के बीच एमओयू का हस्तांतरण हुआ। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ की कुकरेल रेंज में पौधरोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महर्षि चरक औषधि वन की भी स्थापना की। यहां उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे। दौरे के पहले दिन उन्होंने बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ किया। ये पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गन्ने के मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी की गई है और बायो इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ना आधारित बायो प्लास्टिक के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम होगा।
2: जब हम गन्ने से बायो प्लास्टिक बनाएंगे तो हमारी निर्भरता विदेशों पर कम होगी और हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनेंगे। साथियों, पीएलए दुनिया के सबसे सस्ते बायो प्लास्टिक में से एक है और जब यह डिस्पोज होगा तो यह कचरा नहीं खाद बनेगा, फर्टिलाइजर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएगा, यानी कि हर तरीके से फायदा ही है, कहीं से कोई नुकसान नहीं।
1: बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुराहाताल को देश का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और आर्द्र भूमि सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। श्री योगी ने कहा कि ये उपलब्धि विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुराहाताल प्रदेश का 13वां रामसर साइट है। लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने सुराहाताल के रामसर साइट बनने का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर में 294 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की पहचान निवेश और सुरक्षा के माहौल के लिए हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आज हर जनपद के समग्र विकास के लिए काम कर रही है।
0: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। वाराणसी में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज समापन हो गया। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका

0: सऊदी अरब समेत 11 देशों ने हिस्सा लिया। संस्कृति मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव अमिता प्रसाद सरभाई ने बताया कि आज बैठक में भारत की मूल्यवान धरोहरों को वापस लाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, विकास और संस्कृति के समन्वय के साथ आगे बढ़ने को लेकर भी चर्चा की गई।
1: हमेशा यही कोशिश रही है सरकार की और स्पेशली संस्कृति मंत्रालय की कि तो हमारे जो भी स्टोलन आर्टिफैक्ट्स हैं या जो स्मगल करके ले गए जाए गए या उसके पहले कॉलोनियल टाइम्स में ले जाए गए उनको कैसे वापस लाया जाए क्योंकि वो हमारी धरोहर, तो उसी के ऊपर चर्चा हुई है और कैसे डेवलपमेंट और कल्चर साथ साथ हो, विरोधाभास ना हो उसमें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर आज से विशेष अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान के तहत प्रदेश में भी आज से 21 जून तक जनपदों के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद स्थापित करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में वृक्षारोपण कर समेकित जन कल्याण और जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने 5 जून से 21 जून के बीच में कार्यक्रम निर्धारित किया है। आज एक पेड़ माँ के नाम, तो आज यही कहूंगा 12 वर्ष नहीं, इसी तरह 2047 जो उनका सपना है कि 2047 में हमारा विश्व में देश हमारा बहुत आगे रहे, पूरी दुनिया को दिशा दे और आगे बढ़े और गरीबों की सेवा करते रहे।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में अकादमी सम्मान समारोह में वर्ष 2021 से 24 तक के लिए चयनित कलाकारों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित इस समारोह में 51 विशिष्ट कलाकारों को संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ये सम्मान प्रदान किए गए। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में आंधी बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही पूर्वी जनपदों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान का किया आगाज। कहा पौधरोपण और जल संरक्षण कर जनता भी निभाए जिम्मेदारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ। कहा बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में है बड़ा कदम। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुराहताल प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का आज हुआ समापन। अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया बल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। श्रोताओं आप सुनिए पॉडकास्ट श्रृंखला के अंतर्गत प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। मेहमान है आकाश गुप्ता।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं अमित कुमार सिंह।
3: बस्ती के आकाश गुप्ता आज मेरे साथ हैं। इन्होंने अपने सात साथियों के साथ जो कर दिखाया उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इनके नाम और इनके कार्यों की चर्चा करके आज इनको पूरे विश्व के पटल पे स्थापित किया, जिसकी प्रशंसा बस्ती ही नहीं पूरे देश में की जा रही है। आकाश गुप्ता जी जो बस्ती जनपद के लजघटा गाँव के निवासी है और ये छात्र है, इनके साथ जितने भी लोग उस अभियान में लगे हुए हैं सभी किसी न किसी विद्यालय में 8वीं 9वीं 10वीं और ग्यारहवीं के छात्र हैं। आकाश गुप्ता जी आपका स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: मनोरमा नदी सफाई अभियान को कब आपने शुरू किया और कहां से प्रेरणा मिली आप?
4: हमने अपनी मनोरमा नदी की सफाई का अभियान 67 दिन पहले शुरू किया। जब हमने ये शुरू किया तो हमारी नदी इतनी गंदी थी कि उसमें कचरा और उसके बाद ढेर सारी पूजा की सामग्रियां उसमें पड़ी हुई। किसी के यहाँ पे कार्यक्रम होता था तो वे लोग आकर अपना जो भी बाद का सामान होता था उसमें लाके नदी में फेंक देते थे, जिस वजह से हमारी नदी का स्थिति ऐसा हो गया था कि उसमें कोई भी जानवर पानी पीता नहीं था क्योंकि उसकी हालात ही

0: सी थी और कोई भी आदमी उस वहां पर नहाता भी नहीं था। तो हमने सोचा कि आज से 10 साल पहले जब हमारी नदी इतनी साफ थी, जहां पर सब लोग नहाते थे, जानवर पानी पी रहे थे, आखिर आज के टाइम पे वो हाल क्यों नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर ये हमारी नदी है तो इसे साफ करने का कर्तव्य भी हमारा है। तो हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और अपनी नदी सफाई का अभियान शुरू किया। पहले दिन हमें नहीं लगा था कि हम लोग इस नदी को इतना आगे साफ कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी नदी का अभियान का सफाई जारी रखा और आज हमारी नदी कुछ ऐसी दिखने लगी है जहां पर जानवर आकर इसमें पानी भी पीते हैं और यहां पर लोग आकर नहाते भी हैं और हमारी बहुत प्रशंसाएं भी करते हैं।
1: आकाश जी, यह अभियान शुरू करने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि इतने गंदी नदी है, आप कैसे इसको साफ करोगे, या आपका मनोबल भी एक बार कमजोर हुआ होगा कि मैं जो है कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसी प्रेरणा आपको आई कहाँ से और गांव के लोगों का क्या सहयोग और सपोर्ट रहा आपके साथ?
0: जब हम लोगों ने ये कार्य स्टार्ट किया था तो हमारे गांव के जो लोग थे उन्होंने कहा ये साफ तुम लोग नहीं कर पाएगे क्योंकि ये नदी बहुत गंदी है, इसको साफ करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही साफ करेंगे लेकिन हर एक दिन काम करेंगे। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना हम लोग नदी अपना साफ कर लेंगे और लोगों का भी सपोर्ट नहीं रहता था, क्योंकि गांव का कोई भी हमें सपोर्ट करने नहीं आता था, कोई भी नहीं कहने आता था कि हम भी तुम्हारे साथ काम करेंगे और तुम्हारी मदद करके नदी की सफाई को आगे जारी रखेंगे।
1: आप जब उस समय नदी की स्थिति या उसकी हालात देखे तो कैसा लगा?
0: पहले के टाइम पे नदी की स्थिति बहुत ही खराब थी, तो हम लोग आते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे हम सभी लोग, तो हम सोचते थे कि अगर हमारी नदी इतनी गंदी, हम लोग अगर यहाँ बैठते हैं, बदबू आ रही है, तो इसको साफ करके हम लोग यहाँ पर सुकून से बैठेंगे। तो हम लोगों ने इसकी सफाई का काम शुरू किया और इसको साफ किया।
1: करीब 2 महीने चले इस अभियान में, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या मिली?
0: सबसे बड़ी चुनौती ये रही हमारी नदी में कि हम लोगों ने इसको साफ पूरा किया, 30 से 40 दिन तक हमने इसको लगातार साफ किया, लेकिन फिर 10 दिनों के अंदर इसके अंदर काइया जमा होने लगी और वो काइया धीरे धीरे सड़ने लगी और जिससे बहुत ज्यादा समस्या हमें होने लगी। फिर उसको साफ किया हम लोगों ने और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे कि आकर वो पूजा की सामग्रियां वापस में डाल रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से बहुत सारी कांच की बोतल्स और वो भी टूटे फूटे हालात में मिली। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स का हाथ कट गया, पैर कट गया और यही सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि लोग आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं, उसके बाद सहयोग भी नहीं करते, उसको साफ भी नहीं करते।
1: इस अभियान में गांव के लोग और भी लोगों का क्या सहयोग रहा?
0: गांव के लोग आते थे, हमें कहते थे कि हाँ तुम अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक कोई भी गांव वाला हमारे साथ नदी में नहीं था। अब आप सोच सकते हैं, कहने की बात अलग होती है, करने की बात अलग होती है। अगर आप हमारे साथ में चलकर नदी की सफाई करते हैं तब तो हम मानेंगे आप हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि हम साथी लोग जब से शुरू किए हैं तब से अभी तक काम कर रहे हैं।
1: क्या इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का कोई सहयोग आपके साथ रहा?
0: हमने एक वीडियो बनाई थी योगी जी को लेकर कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने इसको शेयर किया जिस वजह से हमारी एक दिन में वीडियोस 1 करोड़ लोगों ने देख लिया और योगी जी ने उसको वीडियो देखा भी। और योगी जी से पहले मोदी जी ने मन की बात में हमारी जिक्र किया कि मैं और मेरे 7 लोगों की टीम ने मिलकर अपनी मनोरमा नदी की सफाई का पहल किया है।
1: सफाई अभियान के बाद अब तक मनोरमा नदी को आप देखते हैं तो क्या लगता है?
0: सफाई के बाद मनोरमा नदी हमारी इतनी साफ लगती है कि ये तो एक जैसे लगता है कि चमत्कार टाइप का, लेकिन ये चमत्कार नहीं, ये हमारी 67 से 68 दिनों की मेहनत है जो कि हमने लगातार की है।
1: आपको अभी क्या लगता है, इसमें और कुछ करने की जरूरत है?
0: जी, अभी हमारा काम तो जारी रहेगा जब तक कि हम लोग अपनी मनोरमा नदी का पूरा गांव का हिस्सा जब तक साफ नहीं कर लेते तब तक तो हमारा काम जारी रहेगा, उसके आगे भी सोचेंगे। लेकिन हम चाहेंगे इसमें हमारी सरकार भी मदद करे, क्योंकि हम कुछ युवाओं के बस का ये पूरा नदी साफ करना नहीं है।
1: जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में आपका नाम लिए तो आपको कैसा महसूस हुआ?
0: हम लोग उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के छोटे से गांव लजघटा में रहते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक पटल पे हम लोगों की बात की, हमारे नाम का जिक्र किया, हमारी टीम का जिक्र किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी सफाई का अभियान भी अब लोग देख रहे हैं।
1: इसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा सराहना मिलने के बाद आप पर, आपकी टीम पर क्या प्रभाव पड़ा? ऐसा भी आपको लगता है कि ये जिम्मेदारियां और बढ़ गई?
0: हाँ, जिम्मेदारियां बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि अब जो हम लोग सफाई का काम करते थे 2 से 3 घंटा, अब हम लोगों ने ट्राई किया इसको और बढ़ाने का और हम लोग अब धीरे धीरे और नदी को और आगे बढ़ते हुए साफ कर रहे हैं। और लक्ष्य तो यही है कि जितना हो सके हम लोग नदी को साफ रखे जिससे कि जानवरों को और आम आदमी को परेशानी ना हो।
1: आज देश में पर्यावरण संरक्षण और पुनर्जीवन को लेकर काम करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: हम यही कहना चाहेंगे जो भी नेचर ने हमें दिया है वैसे ही हमको उसको संतुलित रखना है, कि चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे नहर हो, चाहे झरना हो, आप लोग उसको ऐसे सुरक्षित रखिए कि उसमें गंदगी ना फैले ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे तकलीफ ना हो।
1: आकाश जी, आपने जिस तरह से साबित किया कि बदलाव के लिए बड़े पद या बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं बल्कि इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यह कहानी अपने गांव

0: पर्यावरण के लिए कुछ सकारात्मक करने की प्रेरणा देगी।
1: अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशीन या फिर कोई बड़े यंत्र की जरूरत नहीं है। आप अपने हाथों से पहले ट्राई कीजिए उसको साफ करने का। जब आप अपने हाथों से साफ करेंगे थोड़ा बहुत हिस्सा साफ होगा, फिर आपका मन करेगा कुछ और ट्राई किया जाए। धीरे धीरे आप लोग और आगे तक सफाई करें। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास सिर्फ हाथ और पैर थे, हम लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया उसमें नाव बनाने का, जिसमें हम लोग थोड़ा नाव बना भी गए थे लेकिन बीच में टूट गया। ऐसे ऐसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया, तब जाके हमारी नदी इतनी साफ हो पाई। क्योंकि आप लोग जब किसी चीज को स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे उसकी आगे की रास्ताएं खुलते जाएंगे।
0: क्या ये आपको उपकरण से जिसकी चर्चा मन की बात में मोदी जी ने किया, ये युवा जो है पर्यावरण या जल संरक्षण को लेकर के जागरूक है, इनके पास फावड़ा और जाल और ये ग्लव्स लेकर के ये नदी के सफाई अभियान को कर रहे हैं, क्या इस सफाई अभियान में आपको किसी ने कोई किसी तरह का सहयोग किया उसमें?
1: हम लोग जब वीडियो डालते गए उसके बाद लोगों ने इतना सपोर्ट किया, हमने उसमें अपना QR डाला जिसमें लोगों ने काफी सपोर्ट दिया, जिससे हम लोगों ने बूट्स मंगाए, ग्लव्स मंगाए और बहुत सारी चीजों को मंगाए। और बहुत सारे लोग हमारे एड्रेस पे कुछ सामान भी भेज देते हैं जिससे हमारी मदद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा काम चलता रहा।
0: आपने कहा कि जब से हमने इस अभियान को शुरू किया तब से हम लोगों ने YouTube, Instagram और Facebook के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जोड़ा और इस अभियान को और सफल बनाने के लिए, नदी के सफाई के लिए हमने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े। कितने लोग इससे प्रेरित हुए?
1: जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे तो 0 फॉलोअर थे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर बात की जाए तो हमारे इंस्टाग्राम पे 63,000 फॉलोअर हो चुके हैं, फेसबुक पे 50,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और यूट्यूब पे 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहा, लोगों ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया जिसे हम लोग आज इतना ज्यादा सफल हो पाए।
0: आप जिस तरह यह कार्य करके साबित किए बदलाव के लिए बड़े इरादों की जरूरत है, वह वास्तव में प्रेरणादायक है। आकाश जी, इसके बाद आपका क्या मिशन होगा?
1: अभी जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो हम लोग नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बरसात का मौसम आने वाला है तो नदी का पानी काफी ज्यादा रहेगा जिसके अंदर हल्के उसको सफाई नहीं की जा सकेगी। तो हम लोग कोशिश करेंगे नदी के किनारे का जितना भी फील्ड है उसको हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, जितना हो सके पीपल, बरगद, पाकड़, जामुन ये सब पेड़ बैठाएंगे।
0: इंस्टाग्राम और फेसबुक के तहत लोगों को जोड़ करके क्या लगता है आपको कि क्या इससे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, क्या इससे आगे और भी आपको काम करने के लिए और भी लोगों का साथ मिलेगा?
1: निश्चित सी बात है सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा और जब तक ये नदी सफाई नहीं होगी पूरी तब तक ये काम चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर वृक्षारोपण भी होगा, हमारी नदी का भी घाट भी बनना है, हमारी नदी पर अभी जहाँ बरगद पेड़ है वहाँ चबूतरा भी बनना है और जब तक ये बन नहीं जाएगा तब तक ये कार्य चलता रहेगा। जब हमने इसको पहले दिन से स्टार्ट किया था तब से लेकर अभी तक हमें काफी ज्यादा लोग जाने लगे हैं, जैसे कि अभी विधायक जी ने कल परसों में आकर हमारे साथ मिलकर नदी की सफाई किया, जिसके लिए हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं क्योंकि अब ये अभियान जो है हमारा बहुत आगे तक जाने वाला है और साफ सफाई का काम तो चलता रहेगा।
0: समाज में कुछ नया करने का आपने एक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में मनोरमा नदी की सफाई के लिए प्रयासरत आकाश गुप्ता के साथ विशेष बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे अमित कुमार सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: अभी आप पॉडकास्ट श्रृंखला के अंतर्गत प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ सुन रहे थे। मेहमान थे आकाश गुप्ता। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम इंद्रधनुष में आप सुनेंगे गुलदस्ता। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं चंद गजलें। तो पहले समाज फरमाइए बेगम अख्तर की आवाज में

बेगम अख्तर की आवाज में अभी आपने ये गजल सुनी और आइए अब सुनते हैं डॉक्टर राही मासूम रजा का ये कलाम। कलाकार हैं

गुलदस्ता के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे चंद गजलें और अब इंद्रधनुष कार्यक्रम खत्म होता है। ये था आज का इंद्रधनुष कार्यक्रम।

0: दुनिया में समस्याओं का क्या कहना, एक से बढ़कर एक होती हैं। फिर समस्याएं देश विदेश की अलग होती हैं, गांव और शहर की अलग होती हैं, परिवार की अलग होती हैं, व्यक्ति व्यक्ति की अलग होती हैं, यहाँ तक कि पति पत्नी की समस्याएं भी कुछ अलग ही होती हैं। तो इन्हीं समस्याओं की कुछ वानगी आपको पेश करता हूं। जी हाँ, इनसे मिलिए। आप एक ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी से परेशान हैं और बेचारे किस्मत को कोस रहे हैं।
1: हे भगवान, लगता है आज फिर सब्जी जल रही है। अभी अभी तो रसोई में थी, कहाँ चली गई? अब मैंने कहा, अरे भाग्यवान कहाँ चली गई? देखो सब्जी जलकर खाक हो गई है ही नहीं, पता नहीं कहाँ सोई है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। इस महंगाई में रोज कुछ न कुछ जला कर बर्बाद कर देती है। कभी सब्जी जल रही है तो कभी दाल। बा जाए ऐसी पत्नी से।
2: क्या हो गया? क्यों जी, घर को मछली बाजार बना दिया है?
1: और सुनो, मैं ही घर को मछली बाजार बना रहा हूँ। अरे देवी जी, तुम्हारी सब्जी जलकर खाक हो गई, कहाँ चली गई थी?
2: मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं कहीं चली जाऊँ, दिन रात घर में कोल्हू की बैल की तरह चलती रहती।
1: हाँ हाँ, तुम ही तो एक अजूबा की पत्नी हो जो घर का काम करती हो। मैं ही बैठे बैठे मस्ती मारा करता हूँ।
2: पर जनाब, अभी आप तो घर में ही थे, फिर सब्जी जल कैसे गई?
1: चूल्हे पर चढ़ी थी इसलिए जल गई, और कैसे जलेगी?
2: अगर आप चीखने और चिल्लाने के बजाय जरा सब्जी ही उतार लेते तो आपकी शान नहीं बिगड़ जाती।
1: लो और सुनो, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है। अपने तो पलंग पर लेटी थी और मैं बाथरूम से

0: कर रसोई में आकर सब्जी उतार लेता। क्यों?
1: आप तो हमेशा यही कहते हैं कि मैं पलंग पर सोई रहती हूँ और घर का सारा काम आप ही तो कर देते हैं। ठीक है, मेरी तो किस्मत ही फूटी है।
0: अरे किस्मत तो मेरी फूटी है श्रीमती जी कि आज फिर मुझे जली सब्जी ही खानी पड़ेगी। हे भगवान,
1: क्या करूं जी, अब और सब्जी तो घर में है नहीं जो फिर से बना दूं। आपने खुद ही सब्जी जलाई है तो मैं क्या करूं?
0: हाँ, और सुनो, मैंने ही सब्जी जला दी, पर ये क्यों नहीं कहती कि मैं सो गई थी?
1: हाँ हाँ, मैं तो सोई ही रहती हूँ, हमेशा आप यही कहते हैं। अरे वो तो निगोरी जरा सी आंख लग गई थी।
2: देख लिया आपने, पत्नी बेचारी नींद से ही परेशान है, जब तब इनकी आंखें लग जाती हैं। आखिर बेचारी करे भी तो क्या, अपनी आदत से लाचार जो है। बेचारे पति को तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। खैर छोड़िए साहब, ये तो इनकी अपनी समस्या थी, पर ये तो सज्जन ट्रेन में बैठे हैं, ये भी किसी से कम नहीं है। जरा सा मौका मिला कि खर्राटे नेले लग जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि कहाँ जाना है इन्हें। भाई साहब, जब आप सफर में निकलते हैं तो इतना ख्याल तो रखना ही पड़ेगा कि कौन सी जगह उतरनी है, अगर नहीं तो आप भी इन्हीं की तरह ही परेशान होंगे।
0: ये कौन सा स्टेशन है भाई साहब?
3: अभी दिल्ली दूर है भाई साहब, इतनी यहाँ से सोइए।
0: अरे नहीं भाई साहब, मुझे दिल्ली नहीं जाना है, मुझे तो कानपुर ही उतरना है।
3: कानपुर? कानपुर तो चार स्टेशन पीछे ही छूट चुका है, अब आप अगले स्टेशन पर उतर जाइए।
0: पर कानपुर छूट कैसे सकता है, ट्रेन तो इतनी फास्ट नहीं है।
3: ट्रेन तो फास्ट नहीं है, पर आपकी नींद तो बहुत फास्ट है जनाब।
0: वाह साहब, आप मजाक करते हैं, यह तो आपसे हुआ नहीं कि मुझे कानपुर में ही जगह दे और अभी हंस रहे हैं।
3: हंसू नहीं तो क्या करूं, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ा ही था कि साहब को कानपुर में उतरना है तो कानपुर पर उतार दूं।
0: छोड़िए साहब, आप जैसों के मैं मुंह नहीं लगता।
3: खबरदार,
0: तमीज ही नहीं है।
3: खबरदार, जो तमीज की बात कही, तेरे खुद तमीज नहीं है तो दूसरे को क्या तमीज दिखाएगा?
0: देखो मैं तुमसे मुंह नहीं लगता, चुप हो जाओ वरना मैं सबक सिखा दूंगा।
3: तुम्हारी क्या मजाक, तुम मुझे सबक दिखाओगे? तुम आया था झापड़ दो
0: झापड़ मारोगे?
4: आप लोग आपस में झगड़ते ही रहेंगे या आप भी उतरेंगे? और आगे जाने का इरादा है क्या?
0: हाँ साहब, कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो दूसरों की परेशानी में मजाक उड़ाते हैं।
3: फिर तुम जवान संभाल कर बातें करो, नहीं तो ट्रेन से फेर दूंगा।
4: छोड़िए साहब, आप ही चुप हो जाइए, इन्हें दूसरों से उलझने के पहले अपनी गलती खुद ही मान लेनी।
0: वाह साहब, आप भी खूब बोलते हैं, मेरी क्या गलती है, जरा सी आंख ही तो लग गई।
2: जी हाँ, देख लिया आपने कैसे कैसे लोग होते हैं, गलती खुद करते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। ऐसे लोग खुद तो परेशान होते ही हैं, दूसरों को भी परेशानी में डाल देते हैं। बेचारे की हालत तो देख ही ली आपने, सोने के चक्कर में कानपुर से चार स्टेशन आगे निकल गई है बेचारे। साथ के यात्रियों से तो झगड़ा हुआ ही, अब स्टेशन पर भी टिकट के अधिक पैसे लगेंगे इन्हें, और वापस तो टिकट कटाकर आएंगे ही। सोने वालों की कहानी भी बड़ी निराली होती है भाई साहब। ट्रेन में सोना या सभा या सिनेमा भवनों में झपकी ले लेना तो अक्सर होता रहता है, पर दफ्तर में सोने की बात आपने कभी भी सुनी नहीं होगी। तो लीजिए जनाब, दफ्तर के ये बड़े बाबू हैं, जरा आप इनसे मिलिए।
5: नमस्कार। मैंने कहा बड़ा बाबू नमस्कार, तबीयत तो आपकी ठीक है ना?
6: क्या
5: तबीयत तो आपकी ठीक है ना बड़ा बाबू?
6: आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आप सेल ले लीजिए।
5: बड़ा बाबू मैं कॉन्ट्रैक्टर चंद्र प्रकाश हूँ, मेरे बिल का क्या हुआ?
6: आपका बिल मैंने बड़ा साहब को भेज दिया।
5: पर मेरा बिल बड़ा साहब के पास क्यों भेज दिया? वहाँ से तो पास होकर परसों ही आ गया था, आज तो चेक देने की बात है ना?
6: बड़ा साहब ही देंगे, मेरे पास चेक कहाँ है भाई?
5: कमाल का दफ्तर है, दिन में भी लोग खर्राटे मारते हैं। ठीक है, चलता हूँ मैं बड़ा साहब से ही शिकायत करता हूँ। बाहर दफ्तर
7: क्या कहा बड़ा बाबू ने, चेक मेरे पास है? नहीं तो मेरे पास तो कोई कागज वागज नहीं है, कल ही मैंने आपका चेक साइन करके बड़ा बाबू के पास भिजवा दिया था।
5: पर सर वे तो कह रहे हैं

0: के पास चेक है।
1: क्या कहा? मैंने कहा ना आपसे मेरे पास नहीं है।
0: सर वो तो सो रहे हैं दफ्तर में।
1: व्हाट? क्या कहा? दफ्तर में आज भी सो रहे हैं? वे अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। चलिए चलिए मैं खुद देखता हूँ, आइए। माला बाबू, चंद्र प्रकाश जी का चेक इनको दे दीजिए।
2: हाँ तो दिया साहब, आपसे यहाँ कोई चेक वेक नहीं है।
1: आप तो होश में है बड़ा बाबू, मैंने कल ही चेक साइन करके आपके पास भेज दिया था।
2: सर, आप?
1: हाँ हाँ बड़ा बाबू मैं। आप अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे, आज से आप घर जाकर चैन से सोइए, मैं अभी आपको सस्पेंड करता हूँ।
2: सॉरी सर, इस बार मुझे माफ कर दीजिए सर, फिर आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी।
1: नो नो, आई विल डिसमिस यू। आप हमेशा यही कहते हैं लेकिन दफ्तर में सोने से बाज नहीं आते। दिस इज वेरी बैड बड़ा बाबू।
2: सर मैं सोया नहीं था सर।
1: व्हाट? मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ।
2: नहीं सर, वो तो जरा सी आंख लग गई।
3: ये थे दफ्तर के बड़ा बाबू। आखिर ये बेचारे करे भी तो क्या। छोड़िए साहब, हमें क्या मतलब उनसे, ये हेडेक तो उनके बॉस का है। फिर ये तो कुछ भी बात नहीं, अब जो नमूना आपको मैं पेश करने जा रहा हूँ ये भी कमाल ही है कमाल। अगर इंसान जाग रहा हो तो आंखें लग भी सकती हैं, पर सोए हुए की आंखें खुली रहे और वो चलता भी रहे तो बात कुछ बनती नहीं। पर आप खुद ही देख लीजिए, ये सज्जन अपने ही घर में कैसे फंस गए हैं।
4: जी सुनते हैं। ओहो, सुनिए ना सुनिए ना। अरे अभी अभी तो सोए थे, कहाँ चले गए? ओह, बाथरूम की बत्ती चल रही है। आप बाथरूम में कब से बैठे हैं जी? अरे रे, वो देखिए दरवाजा खुला है। हाँ, अरे अरे महावीर महावीर, लगता है चोर भागा जा रहा है। देखो चोर चोर, पकड़ो पकड़ो।
5: जय बजरंग बली के, जय बजरंग बली के। कहाँ मालकिन, किधर चोर है? अरे आप चुप रही मालकिन, चुप रही। अभी उस बदमाश को हम पकड़ के लाते हैं।
4: पकड़ो, जाओ जाओ जल्दी जल्दी। अरे चोर
5: पकड़ो, पकड़ लिया। अब क्या बताओ बच्चों, मेरे ही घर में चोरी करने के लिए सुझा था, मालूम नहीं। मेरा नाम बजरंगबली, बजरंगबली,
6: बजरंगबली,
5: तेरी गर्दन तोड़ दूँ। हाँ
6: छोड़ दो,
5: अरे गर्दन
6: छोड़ दूँ भाई।
5: अरे तो तुझे प्यार करूँ, तू है कौन, कौन है तू? और कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, तो क्या तू मेरा मालिक है क्या?
6: मुझे
4: अरे अरे सुनते हैं जी। ओहो सुनिए तो, बाथरूम से निकले तो बाहर देखिए चोरी हो रही है घर में। आप सोए हुए हैं, मैंने क्या करें, कपड़े क्या कीजिएगा? अजी उठिए उठिए उठिए, महावीर पकड़ो पकड़ो।
5: ये लीजिए मालिक।
4: हाँ बड़ा आया है चोरी करने
5: के लिए। पकड़ा गया। हमारी आता क्या था, हमारी सुनी ना।
4: हाँ
5: आता था, मुझे जोर दो।
4: अभी
5: मैं जोर नहीं हूँ, लगता है कि तू मेरा मालिक हो क्या?
6: अरे चलो,
5: नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ।
4: बड़ा आया है गाली देने वाला, बड़ा गाली देने वाला। ला महावीर, झाड़ू दे तो।
5: अब ले
4: आया,
5: अब ले
6: आया, मालिक हूँ। अरे चोर नहीं
5: हूँ मालकिन, मैं बत्ती जला के देखती हूँ।
4: जला जी, ये तो आप ही है।
5: मालिक है,
4: आप तो हमारे मालिक है जी। राम क्या हुआ महावीर, तुझे अपने मालिक को मार दिया? नहीं आई, तेरा हाथ नहीं गल गया? अरे महावीर राम, हे भगवान, तू अभी निकल जा मेरे घर से, अब तू चला जा।
5: मालकिन मालकिन, आपने जो कहा था कि घर में चोर आया है, मुझसे बड़ा भारी पाप हो गया मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए मालकिन।
4: चोट आई,
5: क्यों बिगड़ती हो? गलती तो मेरी थी।
4: चलिए चलिए,
5: नींद में ही बाहर निकल गया बजरंग बली।
4: ये लीजिए पानी पी लीजिए।
5: बजरंग बली, बजरंग बली,
4: हे भगवान, आप भी धन्य हैं।

0: सोच रही थी कि बाथरूम में आपकी आँख
1: है। तो देखा आपने कैसे कैसे नमूने हैं मेरे पास, सोने वालों की कमी नहीं है।
2: जरा सी आंख लग गई। गिरेंद्र प्रसाद की लिखी और निर्देशित झलकी अभी आप सुन रहे थे। ये झलकी हमारे आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रस्तुति थी। अब आज का हवा महल।

0: प्रिय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गुंजन।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
4: हेलो
5: सुनो, टेलीफोन नंबर।
6: माय नंबर इज
7: 7376804090। लाइव हेलो अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।

किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाज में भी हम सुन रहे थे रविंद्र जैन का लिखा हुआ गीत। संगीत भी रविंद्र जैन का ही था। फिल्म थी तपस्या। और अब लीजिए सुनिए पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज में इंदिवर का लिखा हुआ गीत। संगीत है बेजू शाह का। फिल्म है मोहरा।

पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज में भी आप सुन रहे थे इंदीवर का लिखा हुआ गीत। संगीत था बेदू शाह का, फिल्म थी मोहरा। और अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज, गीत मजरू का, संगीत लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल का, फिल्म है धरती कहे पुकार के।

0: धरती कहे पुकार के। इस फिल्म का गीत अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। गीत था मजरू का, संगीत लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल का। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, और आज मैं हूं आपके साथ विवेकानंद।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।

0: सुनिए।
1: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाती और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

0: सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।
1: कार्यक्रम गीत गुंजन में आप सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल का, फिल्म है हम चोली।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में भी हम सुन रहे थे आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म हम जोली। और अब लीजिए सुनिए शब्बीर और अनुराधा की आवाज, जावेद अख्तर का गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म है मिस्टर इंडिया।

0: अल्लाह
1: झूठे हैं तेरे बच्चे बच्चे तेरे बच्चे।
2: शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल सहित साथियों की आवाज में भी हम सुन रहे थे कार्यक्रम में ये गीत, और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम गीत गुंजन। दीजिए विवेकानंद को इजाजत, सुनते रहिए आकाशवाणी अध्याय।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ

0: प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87 लाख 77

0: हजार करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमरीका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
2: The negotiating team which came from
3: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमरीकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: Partnership that we have with Nepal.
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो

0: रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9.

0: During the next 2 days, coastal Andhra Pradesh and Yanam can experience heat wave conditions tomorrow, and Odisha may witness hot and humid weather conditions. Over to sports. In hockey, India defeated Pakistan 5-3 in the semi-final of the Men's Under-18 Asia Cup in Kakamegahara, Japan, to set up a title clash against the hosts. In a high-scoring contest, India held its nerve against its arch-rival to seal its place in the final. Japan booked its place in the final with a commanding 8-1 win over Malaysia in the first semi-final. Meanwhile, Indian women's team made an exit from the Under-19 Asia Cup, losing to China in penalty shootouts in the semi-final today. In the Surf Football Women's Championship, India will face Bangladesh in the final at Margao, Goa tomorrow. The match will be played from 6:30 p.m. IST. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26, following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under-18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final in Japan. And that is all in the news at 9. Good night.
1: FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अध्याय केंद्र से बोल रहे हैं 9:15 हुए हैं प्रस्तुत है कार्यक्रम महफिल गजल
2: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग अयोध्या फोन 9267988901
3: जिंदगी बहुत कीमती है उससे तो सस्ता ही है
4: मैं आशुतोष राणा मैंने जाना फिर ये माना नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा जानो फिर मानो
5: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी
6: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
5: अब ECHS से इम्पैनल्ड आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज
6: आयुष्मान भारत योजना पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
5: कैशलेस इलाज आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मछली मंडी नियामा अयोध्या कॉल करें 6386907006
1: कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए मेहंदी हसन की आवाज

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075721।
3: आंखों के पर्दे की समस्या, मोतियाबिंद, लेजर चिकित्सा या मोटे चश्मों से छुटकारा, 20 वर्षों से आपका अपना सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियामा फैजाबाद अयोध्या। आंखों की सभी समस्याओं का आधुनिक और बेहतर उपचार, हजारों आंखों को नई रोशनी देने वाले प्रख्यात नेत्र सर्जन डॉक्टर गजेंद्र पाल द्वारा संचालित सुनयन आई हॉस्पिटल, निकट वीमार्ट नियामा फैजाबाद अयोध्या। फोन करें 9838100840।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिल गजल। FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
5: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोकरंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोकरंग कार्यक्रम।
6: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय, 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या, आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
7: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ है धरती की जान, वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें, पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।

0: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपनी संस्कृति की छाप।
1: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
0: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
1: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा।
3: जी हाँ श्रोताओं, मन का रेडियो बजने दीजिए। शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सजीव फोन इन हेलो अयोध्या। स्वीकार करिए विवेकानंद का नमस्कार और हाँ, मिलाते रहिए फोन। हमें पता है आप लगातार फोन मिला रहे हैं, बहुत से फोन कॉल्स आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। जी हाँ, बंद नहीं है। फिलहाल आपको बताएं कि हमारे साथ कंट्रोल रूम से हैं अश्विनी शुक्ला। तो कॉल मिलाते रहिए और एक कॉल फिर आ ही गई, बात करते हैं इनसे। हेलो
4: हेलो, नमस्कार।
3: नमस्कार, कहाँ से फोन लगा?

0: लगाए हैं।
1: हेलो।
0: हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं? अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: आवाज नहीं आती है साहब, कड़की आती है।
0: अब आ रही है कि नहीं आ रही? अभी भी?
1: हाँ।
0: अब आई? हेलो
1: साहब, आप तबियत पानी ठीक है साहब?
0: अरे एकदम बढ़िया, मेरा तबियत पानी एकदम ठीक है। कहाँ से बोल रहे हैं ये तो बताइए।
1: ठाकुर प्रसाद यादव, केशवपुर से।
0: केशवपुर से?
1: हाँ।
0: अच्छा,
1: बस्ती।
0: अच्छा, बस्ती में है ये।
1: हाँ।
0: अच्छा, और अपना नाम क्या बताया आप?
1: ठाकुर प्रसाद।
0: अच्छा ठाकुर प्रसाद जी, क्या करते हैं?
1: हाँ। खेती किसानी करते हैं साहब।
0: अच्छा, और समय निकाल लेते हैं आकाशवाणी का प्रोग्राम सुनने का?
1: हम तो बराबर सुनते हैं।
0: अरे वाह, तो आज आज कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: आज सुनेंगे एक फूल दो माली, तो सूरज है या चंदा।
0: अच्छा, एक फूल दो माली हम सुनवाएंगे आपको। हाँ। और आप अकेले प्रोग्राम सुनते हैं कि और भी लोग आपके साथ सुनते हैं?
1: नहीं, घर है, पूरा सब सुनते हैं, पूरे घर भर सुनते हैं।
0: अरे वाह, तो अच्छा सबसे अच्छा प्रोग्राम कौन सा लगता है आपको?
1: हमसे सबसे अच्छा तो यही लगता है, के बाद और सब प्रोग्राम अच्छा लगता है।
0: लेकिन अगर कहा जाए कि अच्छा ठीक है, ये तो हेलो अयोध्या तो है ही अच्छा, इसके अलावा और कौन सा प्रोग्राम अच्छा है? इसके अलावा और कौन सा अच्छा है?
1: इसके अलावा तो और ये आंगनबाड़ी है, और ये सब आता है, जैसे मेरे भजन आती है, सब कुछ आता है, ये सब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है।
0: क्या बात है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपकी पसंद का गीत हम प्ले करें, सुनवाएं आपको?
1: हाँ।
0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ, हम आपको गाना सुना रहे हैं, सुनिए।
1: हाँ, तो हम पूरे घर भर हम सब सुनते हैं बराबर, बहुत दिन से सुनते हैं, सब हम 30 साल हो गया।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ। फिर कॉल करिएगा।
1: ठीक, नमस्कार।
0: नमस्कार श्रोताओं, ये थे आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर, आप भी हो सकते हैं। नंबर नंबर वही है 73 76 80 40 90। मिलाते रहिए फोन।

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। जी हाँ, एक कॉल आ रही है। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, आपकी कॉल लग गई। कहाँ से फोन लगाए हैं?
1: घनश्यामपुर जिला गोंडा से लगाए हैं सर।
0: कहाँ से? गोंडा से। अच्छा, अपना नाम भी बताइए।
1: मनोज विश्वकर्मा।
0: मनोज जी, क्या करते हैं?
1: और बस कुछ नहीं, घर पर बैठे रहते हैं, काम करते हैं।
0: अच्छा, अरे कुछ तो करते होंगे हुजूर।
1: हाँ सर, काम करते हैं शहर में।
0: तो
1: कारपेंटर का।
0: अच्छा, कारपेंटर का काम। भाई हम कहे कुछ तो करते हैं, आप कह रहे हैं बैठे रहते हैं, ऐसे कैसे बैठे रहते हैं?
1: नहीं नहीं सर, तो घर पे आए हैं जल्दी में।
0: अच्छा अच्छा, कहीं और काम करते हैं क्या?
1: मैं वही शहर में काम करते हैं, हैदराबाद में कारपेंटर का।
0: अच्छा, तो इस समय आए हुए हैं तो प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो अच्छा, गोंडा में इस समय मौसम कैसा है?
1: सर मौसम तो अच्छा है फिलहाल, कभी कभी बारिश होती है।
0: लेकिन इस समय तो नहीं हो रही है ना, दो दिन से एक बंद है कि हुई?
1: नहीं, अभी कल में हुआ बारिश, थोड़ा सा बारिश हुआ है।
0: कब?
1: कल में हुआ था शाम को।
0: अच्छा, कल शाम को हुई थी बारिश।
1: यस सर।
0: अच्छा, तो मौसम पे क्या कोई फर्क पड़ा इस बारिश का?
1: नहीं नहीं, ज्यादा नहीं फर्क पड़ा, थोड़ा सा। गर्मी ज्यादा हो रही है ना सर।
0: हाँ गर्मी तो है, बिल्कुल सही बात है। कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे मनोज जी?
1: सर राजा हिंदुस्तानी का सुना दीजिए।
0: तो आप अकेले प्रोग्राम सुनते हैं, और भी लोग हैं आपके साथ?
1: नहीं, सभी लोग सुन रहे हैं, मम्मी पापा भाई सभी लोग।
0: वाह क्या बात है, सब लोग सुन रहे हैं।
1: यस सर।
0: तो राजा हिंदुस्तानी को कौन सा गाना सुनवा दें?
1: राजा हिंदुस्तानी का कई सा गाना सुनवा दीजिए सर।
0: हाँ, इसके सभी गाने अच्छे हैं ना?
1: यस सर।
0: ठीक है, तो आपकी पसंद का गीत हम प्ले कर रहे हैं।
1: ओके सर।
0: श्रोताओं जी
1: नमस्ते।
0: श्रोताओं मिलाते रहिए फोन और फिर करिए हमसे बातें, सुनिए अपनी पसंद के गीत। लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या, जी हाँ शुरू हो चुका है, चल रहा है। नंबर वही है 73 76 80 40 90।

0: जी हाँ, एक कॉलर हमारी जिंदगी में भी आ गए हैं, सजीव फुरिन कार्यक्रम हेलो अयोध्या में। हेलो हेलो
1: जी सर, नमस्कार। ग्रामा पोस्ट पर जय सिंह सुल्तानपुर रमेश बोल रहे हैं।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात रही कि आप जो है फोन लगते ही सब कुछ बता दिए।
1: जी सर,
0: पलिया
1: ग्रामा पोस्ट पर जय सिंह सुल्तानपुर रमेश।
0: अच्छा, सुल्तानपुर से बोल रहे हैं। अपना नाम बताइए।
1: रमेश बोल रहे हैं सर।
0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ, अपना नाम
1: रमेश।
0: अच्छा अच्छा अच्छा रमेश। असल में रमेश जी, एक दिक्कत यह है कि आपके पास रेडियो बज रहा है, बगल में ट्रांजिस्टर है, उसकी वजह से आवाज
1: जी आज है
0: ना, तो उसको थोड़ा सा अपने से दूर कर दीजिए। हमें लग रहा है कर भी दिया। हाँ, ये ठीक है। अब आप और हम बात करेंगे और बाकी लोग सुनेंगे।
1: जी सर,
0: है ना। तो रमेश जी, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: सुना दीजिए सर, जिगर का।
0: जिगर का? अच्छा, तो क्या करते हैं आप?
1: जी सर, मैं किराना स्टोर चलाता सर।
0: अरे वाह, तो इस समय गर्मी। अच्छा अच्छा, तो इस समय गर्मी में सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है, क्या आपके?
1: इस गर्मी में सबसे ज्यादा इस वक्त नीलों की बिक्री ज्यादा है।
0: ठीक है, बढ़िया है। तो दिन भर सुबह दुकान पे कै बजे पहुँच जाते हैं आप?
1: घर ही है ना पूरा, जैसे की घर।
0: अच्छा, घर
1: पर।
0: अच्छा, घर पर ही है तो क्या? नहीं, फिर भी आप कै बजे दुकान पर उपलब्ध हो जाते हैं?
1: सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक।
0: क्या बात है। तो अगर मान लीजिए कोई 9 बजे या 10 बजे पहुंचा घर है आपका और खटखटाया कि भैया चीनी चाहिए, तो क्या करते हैं, देंगे कि नहीं?
1: तो अगर कोई किसी को इमरजेंसी है तो सामान तुरंत मिलेगा।
0: वही वही हम वही हम सोच रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, और घर पर है तब तो जरूरी है ना। तो जिगर फिल्म का कौन सा गाना आपको सुनवा दें?
1: कोई भी गाना सुना दीजिए, सब गाने उसमें अच्छे हैं।
0: ठीक है, तो आपकी पसंद के लिए हम एक गीत प्ले करते हैं, फिर सुनिए उसको।
1: जी सर, अब सुबह सुल्तानपुर में हल्की बारिश भी हो रही है।
0: इस समय हो रही है?
1: हाँ, इस समय बस थोड़ा थोड़ा इसे।
0: अच्छा, झीसी टाइप की थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, तो फिर भी मौसम में थोड़ा सा बदलाव तो आया होगा ना?
1: जी जी जी।
0: हाँ, कुछ तो ठंडापन, जब हवाएं चलेंगी तो थोड़ा कुछ अच्छा हो जाएगा। चलिए, बढ़िया है। और आपकी पसंद का गीत हम फिर प्ले कर रहे हैं, उसे सुनिए।
1: ओके सर, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: जी हाँ श्रोताओं, लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या, एक कॉल आ रही है। हेलो।
1: हाँ सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: साक्षी बात कर रही हूँ, अंबर को मंत्री बोल रही।
0: साक्षी?
1: स्वाति सिंह।
0: स्वाति?
1: हाँ सर।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हो आप?
1: सर अंबरपुर मनकापुर गोंडा से।
0: अच्छा, अंबरपुर गोंडा, तो दूर से बोल रहे हो आप। तो पहली बार कॉल लगी कि इसके पहले भी कॉल लगी है आपकी?
1: ये आपकी आवाज ही नहीं आ रही है सर।
0: हाँ, ये समस्या मैं समझ रहा हूँ, मुझे भी कुछ लोग बार बार ये बात बोल रहे हैं। पहले कॉलर ने भी कहा था, अभी आई आवाज?
1: आज आ रही है।
0: अच्छा, तो हम कह रहे हैं कि आप पहली बार कॉल लगी है कि इसके पहले भी कॉल लगी थी आपकी?
1: नहीं सर, कॉल मेरी लगती रहती है और आपसे, लेकिन फर्स्ट बार बात हुई थी। और जब फर्स्ट बार बात हुई तो अमर जी सर से बात हुई थी, फिर इस बार आपसे बात हो रही है, कॉल तो मेरी लगती रहती है सर।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। तो अच्छा, जो लोग कहते हैं कि फोन नहीं लगता, उनको क्या कहेंगे आप?
1: नहीं सर, लगाएंगे, कोशिश करेंगे तो लगेगा, आज नहीं किसी ना किसी दिन तो लगेगा ही, प्रयास करने पे तो सफलता मिलती है।
0: बिल्कुल सही बात है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
1: नहीं होती।
0: ठीक है, तो कौन सी फिल्म का गीत सुनिएगा आज?
1: सर फिल्म का नाम है जीने की राह। और गाने के बोल है, एक वन जा रहा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक वन जा रहा गाए, ओ जी वाला गाना सुना है।
0: ठीक है, तो आपकी पसंद का गीत हमने प्ले कर दिया, सुनिए।
1: ये गाना आपको, अमर जी सर को, अपने और सभी श्रोताओं को और अपने परिवार वालों को डेडिकेट कर रही हूँ सर।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सभी की ओर से।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते। जी हाँ श्रोताओं, मिलाते रहिए 73-76-80-40-90। जी हाँ, लाइव फोन इन प्रोग्राम।

0: जी हाँ, नंबर वही है 7376-8040-90 और ये है लाइव फोन इन प्रोग्राम आकाशवाणी अयोध्या से चल रहा है। नाम है हेलो अयोध्या। हेलो जी। हेलो
1: सर नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहा है और कहाँ से?
1: सर पेटीएम लाइट वाले हरिपुर जलालाबाद से बोल रहे हैं।
0: हरिपुर जलालाबाद तो बहुत दूर नहीं है?
1: जी जी, रायपुर मेला के पास।
0: अरे वही तो, अपना नाम क्या बताए?
1: पेटीएम लाइट वाले हरिपुर जलालाबाद।
0: अरे वाह, तो क्या कुछ खास है आपके पास आज, बताएंगे हमको कुछ?
1: जी कहा सुबह 4 बार फोन लगा, फोन है नहीं उठा।
0: अरे ना उठा होगा हुजूर, तो एमा को काहे को हाथ हो आप ना उठा
1: ना
0: हो आप। आपकी बार तो हमसे तो बात होत बा है
1: ना? आए ना सर, बात तो होते रहे।
0: तब तो हमसे हो रही, यही में खुश हो एक रहा आपका
1: एकदम खुश अंदर।
0: तो और क्या है आपके साथ, और भी लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं कि आप अकेले सुन रहे हैं?
1: जी
0: अकेले आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की, और भी लोग सुन रहे हैं?
1: श्रीमती मेरी है, हमारे बस बाकी सब सो रहे हैं।
0: अरे तो यही अच्छा है कि श्रीमती और श्री सुन रहे हैं।
1: जी जी।
0: तो कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आज?
1: शोला और शबनम।
0: मैं बहुत जोरदार गाना पसंद कर रहे हैं हमें लग रहा है। क्यों
1: जी?
0: देखते हैं हम आपकी पसंद का गीत है कि नहीं हमारे पास। तो और बताइए अपने बारे में कुछ खास। हेलो
1: जी।
0: हाँ हम कहे कुछ और बताइए अपने बारे में कुछ खास।
1: अरे कमन जी बताइए सर, बताओ अपने बारे में क्या बताइए।

0: अरे कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो, कोई अच्छी बात है, कुछ बढ़िया मौसम मौसम
1: अच्छा
0: कुछ
1: लागत भाई, पानी चमकत भाई, हम उठहरी थन आम देखे जाए सन।
0: अच्छा, सोला और सबनम तो नहीं मिल रही हमको, मैं ढूंढ रहा हूँ।
1: सोला और सबनम गोविंदा वाली,
0: हाँ देख तो रहा हूँ, बस मिल तो नहीं रही है आज हमें लग रहा है। ये लगता है नहीं है हमारे पास आज। क्या और बताइए, कुछ आपके घर में और बच्चे वगैरह?
1: बाकी सब हमारे तो बच्चे हैं लेकिन सब सो रहे हैं।
0: अच्छा, तो जो है केवल आप, मतलब श्री और श्रीमती जगे हैं बस?
1: नहीं तो बच्चा बेटा जाग रहा, बाकी बेटियां सो रही, तो सबसे हैं।
0: अच्छा, तो शोला और सबनम तो नहीं दिख रही है, और कोई फिल्म आप बताइए तो हम आपको सुनवा दें, या पिक्चर का नाम बताए, वो गाने
1: स्वर्ग का गाना सुना दिया, स्वर्ग
0: के
1: का
0: स्वर्ग।
1: जी।
0: बहुत जटिल जटिल पूछत हो भाई, बतावत हो मैं स्वर्ग के कौन सा गाना।
1: तुम सजना घर जाओगी,
0: आपकी बात भी जैसे शोला और सबनम पसंद के हो, ऐसे यहू पसंद कर लिया हो, अच्छा नाला है? हम कह रहे हैं जैसे वो शोला और सबनम, वैसे यहू वाला अच्छा वाला गीत पसंद कर लियो आप।
1: नहीं मिला
0: मेल गवाई तो मेल गवा बजे अब भाई। ठीक है,
1: ठीक बात सर,
0: हाँ
1: बोल
0: ठीक
1: रही।
0: ठीक है, तो आपकी पसंद का गीत हम प्ले कर रहे हैं, सुनिए। श्रोताओं, मिलाते रहिए फोन और फिर करिए हमसे बातें, और उसके बाद सुनिए अपनी पसंद के गीत लाइव फोन इन प्रोग्राम। हेलो अयोध्या।

लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। जी हां श्रोताओं, मिलाते रहिए फोन, वही नंबर है 7378 80 40 90। मिलते हैं एक छोटे

0: से अंतराल के बाद।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
3: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
2: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
4: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
5: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
5: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
7: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
8: सुनत हो सखी, सुनत हो कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
9: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
8: हाँ, जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
9: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
10: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
0: लाइफ ऑन इन प्रोग्राम। हेलो अयोध्या, एक कॉल आ रहा है। हेलो जी।
11: हेलो,
0: हाँ जी, आपकी कॉल।
11: हेलो नमस्कार सर।
0: नमस्कार
11: सर, मैं गांव लिहे दिगर तालुका जामनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र से दिनेश सवान बात कर रहा हूँ।
0: बहुत दूर से आपकी कॉल लगी है।
11: हाँ सर, बहुत दूर से कॉल लगी है।
0: तो क्या करते हैं
11: सर? मैं इलेक्ट्रॉनिक का मोटर वायरिंग का काम करता हूँ।
0: तो सबसे ज्यादा मेहनत किस इलेक्ट्रॉनिक के वायरिंग में होती है?
11: वायरिंग जो जल जाती है ना सर, वो सीलिंग फैन होता है, कूलर फैन होता है, वो अगर उसकी वायरिंग जल जाती है तो उसको रिपेयर करके नया तार डाल के बना कर देते है वायरिंग।
0: अच्छा, तो सीलिंग फैन और टेबल फैन दोनों सब में ना, जहाँ भी जरूरत पड़ती होगी। हाँ, वायरिंग की
11: सीलिंग फैन और कूलर पंखा और अपने थ्री फीस मोटर, सिंगल फीस मोटर, ये सब बनाते है सर।
0: अच्छा, तो सबसे ज्यादा मेहनत किस में लगती है, कौन से मोटर को, मोटर की वायरिंग में लगती है?
11: ज्यादा मोनो ब्लैक मोटर में लगती है, जो ऊपर वाली मोटर होती है ना। उसमें ज्यादा मेहनत लगती है, और जो पानी पानी के अंदर जो पानबुड़ी चलती है उसमें मेहनत ज्यादा नहीं लगती है।
0: अच्छा अच्छा, मतलब जो एक तरह से जो बिजली के उपकरण हैं उसमें मेहनत ज्यादा होगी, जो पानी में डूबे रहते हैं उसमें नहीं होती, यही ना?
11: उसमें नहीं लगते सर।
0: सही है। तो आज कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे
11: सर? मेला फिल्म का है, कमरिया लचकेरे।
0: मेला?
11: हाँ मेला।
0: अच्छा, कमरिया।
11: हाँ कमरिया लचकेरे।
0: गाना ये होगा तो जरूर, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि इसके बोल से है या नहीं। तो ये
11: अच्छा,
0: तो
11: नहीं मिल पा रहा है।
0: नहीं, मेला फिल्म का, मेला फिल्म तो है हमारे पास, लेकिन अब कमरिया लचके की याद नहीं, लचकेगी नहीं लचकेगी। वैसे और आप बताइए कि इसके अलावा और क्या काम करते हैं?
11: बस इसके अलावा बस कुछ नहीं सर, और इतना उतना भी खाली टाइम रहता है तो खेती बाड़ी में चले जाते हैं।
0: तो
11: और इसके अलावा रेडियो सुनना पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, तो कितने वक्त से सुन रहे हैं रेडियो?
11: मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ सर, आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम रोजाना आता है और सुबह भी आता है, और फेसबुक के जरिए फरमाइश वाला वो भी अच्छा लगता है।
0: अच्छा, तो आज पहली बार कॉल लगी है, किसके पहले भी आपकी बात हो चुकी है?
11: नहीं सर, मेरा 3-4 बार कॉल लगी है।
0: अरे वाह, क्या बात है, ये तो अच्छी बात है कि एक तो इतनी दूर से आप कॉल करते हैं और आपकी कॉल लगती है, और यहाँ आसपास वाले श्रोता हमसे कहते हैं कि मिलाते रहते हैं, फोन मिलता ही नहीं है।
11: नहीं सर, आपका केंद्र में तो जल्दी लग जाता है कॉल, बहुत केंद्र में लगता नहीं है, बहुत बिजी जाता है।
0: अच्छा है।
11: और हम सब जगह मिलाते रहते हैं सर।
0: हाँ हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है, फोन मिलाते रहते हैं तभी लगता है।
11: हाँ मतलब जल्दी जल्दी काटो, जल्दी जल्दी डायल करो तो लग जाता है।
0: सही, वहाँ का मौसम कैसा है ये भी कुछ बताइए, क्योंकि बहुत दूर से आपकी कॉल।
11: मौसम तो बहुत ज्यादा गर्मी है सर यहाँ पे, बहुत ज्यादा डायर है।
0: अच्छा, क्या बारिश वगैरह नहीं हो रही है?
11: नहीं बारिश वगैरह नहीं हुई अभी।
0: अच्छा,
11: ज्यादा धूप पड़ रही है और ज्यादा गर्मी होती है।
0: तो इस वजह से, धूप की वजह से गर्मी ज्यादा है।
11: हाँ सर।
0: चलिए बढ़िया है, आपसे बात करके अच्छा लगा, और आपकी पसंद का गीत हम प्ले कर रहे हैं, सुनिए।
11: शुक्रिया सर, नमस्कार।
0: नमस्कार। श्रोताओं मिलाते रहिए फोन। जी हाँ, नंबर नंबर वही है, नंबर वही है। लेकिन एक चीज हम आपको बता दें कि जो घड़ी है ना, टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक बढ़ रही है बहुत तेजी से, और इस समय 10:10 नहीं नहीं अब तो 10:10 जी पक्के हो गए। मिलाते रहिए फोन।
6: दिल मेरा धड़के रे।

0: जी हाँ, लाइव फोनिंग प्रोग्राम हेलो अयोध्या में एक कॉल आ गई। हेलो हेलो
1: सर,
0: जी जी नमस्ते। कहाँ से फोन लगाए हैं?
1: सर, हमको गाना सुनना
0: था। गाना हम आपको सुनवाएंगे। कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: तीसरी कसम पिक्चर का सजन दे झूठ।

0: मत बोलो।
1: ये तो अच्छी बात है, गाना हम आपको सुनाएंगे, लेकिन कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो,
0: तो
1: हाँ हम कह रहे कहाँ से बोल रहे हैं आप, अपना नाम बताइए।
0: सर हम गाजीपुर जिला अयोध्या से बोल रहे हैं।
1: अच्छा, और आपका नाम क्या है?
0: सर मेरा नाम अथर्व पांडे है।
1: अच्छा अथर्व, एक चीज बताएं, आप बगल में रेडियो भी ऑन कर रखे हैं क्या?
0: क्या सर?
1: आपके आसपास ट्रांजिस्टर रेडियो भी बज रहा है क्या?
0: नो सर।
1: नहीं तो बड़ी आवाज क्यों है पीछे आपके?
0: सर रेडियो नहीं बज रहा है, कुछ नहीं बज रहा है हमारे बगल।
1: तो आवाज क्यों आ रही है आपके अलावा पीछे? हमें लगता है और भी
0: जा रहे दूर थोड़ा सा।
1: हाँ
0: सर बताइए।
1: हाँ अब सही हुआ। तो अथर्व जी क्या करते हो आप?
0: सर हम 9th क्लास में पढ़ते हैं।
1: अरे वाह, तो इस समय तो छुट्टी है। हेलो,
0: क्या सर?
1: हम कह रहे हैं इस समय तो छुट्टी है ना?
0: यस सर।
1: हाँ तो क्या पढ़ाई हो रही है कि बंद है? हेलो,
0: छुट्टी वाली गर्मी की छुट्टी चल रही है।
1: हाँ हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि गर्मी की छुट्टी में भी पढ़ाई हो रही है कि पढ़ाई बंद है एकदम?
0: पढ़ाई चल रही है।
1: होमवर्क हो रहा है?
0: यस सर।
1: जो स्कूल से मिला है वो कि अपना वाला?
0: सर होमवर्क मिला है।
1: अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। तो क्या बनेंगे बड़े होकर, कुछ सोचा है कि नहीं?
0: अभी नहीं सोचा।
1: अरे क्यों नहीं सोचा भाई, सोचिए उसको, और सोचिए ही नहीं, इरादे बना लीजिए पक्के, है ना? हाँ चलिए ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। हम आपकी पसंद का गीत प्ले कर रहे हैं, सुनिए।

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या, कॉलर से कहते हैं हेलो।
1: हेलो
0: जी।
1: हेलो।
0: हाँ, आपकी कॉल लग गई। कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: हेलो सर, आप कैसे हो?
0: बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। आप कैसे हो?
1: सर, मैं अयोध्या से बोल रही हूँ।
0: नाम?
1: मंजरी मिश्रा।
0: जो छोटी देव का

0: Ali.
1: हाँ
0: सही ना?
1: हेलो सर,
0: हाँ कहाँ से? अयोध्या में कहाँ से?
1: आपकी आवाज नहीं आ रही है।
0: हाँ ऐसा नहीं है, आवाज जा रही है, आप बात नहीं करना।
1: अब आ रही है।
0: हाँ अब आ रही है। तो कहाँ से, अयोध्या में कहाँ से बोल रहे हो आप?
1: तब से लोग का गाना सुनवाई हो ना,
0: अच्छा ठीक है, तो गाना तो हम सुनवाएंगे। तो आपकी कॉल तो बराबर लगती रहती है ना?
1: जी हाँ सर, मैं बराबर सुनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है।
0: और
1: पहले अयोध्या सुनती हूँ, उसके बाद उमंग भी सुनती हूँ, उमंग बहुत अच्छा लगता है मुझे।
0: अच्छा, उमंग
1: जी हाँ।
0: अच्छा और
1: हेलो अयोध्या सुनती हूँ।
0: और कौन सा प्रोग्राम?
1: और बाकी सखी सहेली सुन लेती हूँ।
0: सखी सहेली? और
1: मतलब प्रोग्राम तो सभी अच्छे आते हैं,
0: सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं,
1: हमको सुनने की आदत भी है।
0: तो आप क्या करते हो?
1: सर काम तो कुछ नहीं करती, मैं घर में रहती हूँ। हाँ घर की जिम्मेदारियाँ है सर थोड़ा, इसीलिए घर में रहती हूँ, और दोपहर में समय निकाल कर अपनी माँ की सेवा में चली जाती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपसे हमारी एक बार पहले बात हुई थी और आपने
1: दोबारा आपसे बात हो रही है।
0: और उस बार आपने कुछ बताया नहीं था, लेकिन पता तो हमें चल गया था। और
1: कभी आइए।
0: हाँ बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल आएंगे आना। लेकिन बस
1: माता के मंदिर में आइए कभी दर्शन करने।
0: नहीं, माता जी के मंदिर में तो हम आते ही रहते हैं, बस आपसे भेंट नहीं होती है। होगी अब की बार,
1: आइए सर।
0: बिल्कुल होगी। तो
1: 2 बजे से 5-6 बजे तक मैं रहती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, तो आपसे भेंट होगी। और सुनते रहिए इसी तरह आकाशवाणी।
1: सर क्या करना है, पूजा पाठ करिए, गाने सुनिए, घर के काम को देखिए, सही है।
0: हाँ और क्या, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही
1: और करना क्या है।
0: हाँ ऐसे ही जिंदा दिल बने रहे तभी अच्छा है।
1: हाँ सर आइए कभी सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। तो आपकी पसंद
1: का अमरजीत सर किधर हैं?
0: हैं, अमरजीत सर भी हैं, बिल्कुल हैं।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: उनसे तो ऐसी 2 बार बात हुई थी।
0: हाँ नहीं है, वो सुनते रहिए, उनसे बात होती रहेगी, फिर बात होगी जल्दी ही। ठीक है,
1: बहुत अच्छा बात करते हैं आप लोग सर, बहुत हाँ, पसंद आता हमें।
0: ठीक है, शुक्रिया आपका। आपकी पसंद का गीत हमने प्ले कर दिया।
1: आप लोग बात इतनी अच्छी करते हैं सर, गाना सुनने में आनंद आ जाता है।
0: क्या बात है, तो सुनिए, ये भी सुनिए, मैंने प्ले कर दिया, सुनिए।
1: सर सर वाकई में सर इतनी अच्छी बातें करते हैं ना, गाना सुनने में बहुत आनंद आता है।
0: जी ठीक है, सुनिए।
1: अच्छा सर, प्रेम रोग का गाना सुनवाइए।
0: बज गया,
1: और ने खिलाया फूल।
0: बज गया ये गाना, प्ले हो रहा है, बज रहा है सर। जी ठीक है, ओके।

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या, एक कॉल आ गई। हेलो, ओ ये कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन एक कॉल और आ गई। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, लेकिन अपने से रेडियो दूर कर दें
1: जी। नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है और कहाँ से?
1: जी मैं अयोध्या से श्वेता बोल रही हूँ।
0: अच्छा श्वेता, आप क्या करते हो?
1: कुछ नहीं, बैठे हैं।
0: इस समय ना, वैसे करते क्या हो आप?
1: बस घर के काम, खाना, झाड़ू बर्तन।
0: ये भी कोई मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ा काम होता है।
1: सही बात।
0: कौन सी फिल्म?
1: और सर आप ठीक हो?
0: हम बढ़िया हैं, एकदम ठीक हैं। कौन सी फिल्म का गीत सुनिएगा?
1: क्या सर?
0: फिल्म कौन सी, मतलब कौन सा गाना सुनेंगे, किस फिल्म का?
1: ओ पायलिया।
0: पायलिया, हो कौन सा
1: पायलिया? क्या सर?
0: हेलो, हाँ हम कह रहे कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे, तो आपने बताया पायलिया वाला ना?
1: हाँ,
0: ठीक है। तो आप अकेले प्रोग्राम सुनते हो और भी लोग आपके साथ सुनते हैं?
1: और अभी कितने देर से कॉल लगा रहे हैं, इतने देर के बाद दो बार कॉल लग गया, आप उठाए नहीं?
0: अरे हाँ, हो सकता है नहीं उठाए हो, मुझसे में गाना बजता रहा होगा, तो कोई जो कॉलर फोन किया पहले से उसको भी तो सुनना था ना।
1: जी सर। और तीसरी बार कॉल लगाई से उठ गया।
0: हाँ यही बात है कि आप कोशिश करते रहे इसलिए आपकी कॉल लग गई। ठीक है, तो आपकी पसंद का गीत प्ले करते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है।
1: जी ठीक है, ठीक है। नमस्ते
0: क्योंकि, हाँ नमस्ते, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो समाप्ति पर है। श्रोताओं, ये है लाइव फोन इन प्रोग्राम।

श्रोताओं, फिलहाल आज का हेलो अयोध्या का सफर हुआ पूरा। दीजिए विवेकानंद को इजाजत। सुनते रहिए आकाशवाणी अयोध्या। अपनाओं और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। आज हमारे साथ कंट्रोल रूम से थे अश्वनी शुक्ला। फिलहाल आज का नमस्कार।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ।
1: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
0: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से

0: करता है जो आपको फिर से आपसे मिलाता है।
1: जी हाँ, और वो है योग।
0: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
1: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
0: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
1: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
0: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
1: योग करिए, निरोग रहिए।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सजीव फनिन हेलो अध्याय। हम आकाशवाणी के अध्याय केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। रात की 11 बजने को है, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के

पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।